FM 104.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। आज गुरुवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 14वीं तिथि, तदनुसार दिनांक 4 जून वर्ष 2026, प्रातः के 5:58 हुए हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा आरंभ होती है।

0: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। आज शाम वे विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शिवाजी माझी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमानन ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रक और बस को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने कहा कि योजना के अंतर्गत लगभग 2 लाख ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदली जाएंगी।
2: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए एक लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर इलाके में कल एक गेस्ट हाउस में आग लगने की घटना में 21 लोगों की मौत हुई है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। पुलिस ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। उसने बताया कि इमारत के मालिक लवगेश बजाज को हिरासत में ले लिया गया है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा है कि

0: घटना के मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाली प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप 2026 में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। भारत ने सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से मुकाबला होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है विचार बिंदु। आज के विचार का विषय है आप ठगे सुख उपजे।
2: कबीर दास जी ने कहा है, कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। व्यवहारतः बिल्कुल उल्टी बात है। दुनिया तो दूसरों को ठगने के व्यापार में लगी हुई है। दूसरों को अधिक से अधिक ठग कर स्वयं अधिक से अधिक सुख पाना चाहती है। दूसरों को ठग कर सुख पाना ही अपना उद्देश्य समझती है। सीधी दृष्टि से ऊपर ऊपर देखें तो यही सत्य प्रतीत होता है। दूसरों को ठग कर हम अधिक से अधिक धन और भौतिक वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं, जिन्हें हम अपने सुख का साधन समझते हैं। लेकिन ठगी के व्यापार में उलझे व्यक्ति से पूछें कि धन की अकल्पनीय प्राप्ति करने के पश्चात भी क्या उसे सुख मिल पा रहा है? उत्तर नहीं होता है। क्षणिक या सीमित सुख भले ही प्राप्त हो जाता है, किंतु वो सुख नहीं प्राप्त होता जिसकी कल्पना में ठगी का व्यापार किया गया होता है। कारण क्या है? कारण सर्वथा स्पष्ट है कि यदि ध्यान से विचार किया जाए, सुख प्राप्त करने के लिए जो ठगी हम दूसरों से करते हैं, उसके परिणाम स्वरूप हमारे हृदय और मस्तिष्क में अवचेतन रूप में पश्चाताप या अपराध भाव अवश्य रहता है। जो भौतिक सुख प्राप्त करने के उपरांत भी हमें सुख का अनुभव देने में बाधक होता है, एक तरह से व्यथित करता है, ये विचार करके कि जो सुख हम प्राप्त कर रहे हैं उसके पीछे किसी का दुख, किसी की पीड़ा है। दूसरों की पीड़ा और दुख हमारे दुख का भी कारण बनती है। इसके विपरीत स्वयं के ठगे जाने पर कुछ क्षण तो हमें दुख का अनुभव होता है, किंतु यदि ध्यान पूर्वक विचार करें तो बात समझ में आती है कि स्वयं के ठगे जाने पर हम ठगने वाले व्यक्ति के लिए उपकार का साधन बनते हैं। ठगने वाला व्यक्ति अपनी किसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए हमें ठगता है। जैसे किसी ने हमारी रोटी चुरा ली तो हमें ये विचार करना चाहिए कि उस रोटी से उसने अपनी भूख शांत की, उसकी भूख की शांति का संतोष हमें प्राप्त होना चाहिए। ठगी करने वाले ने तो हमसे छल किया, किंतु बदले में हमें संतोष दिया। ये संतोष धन किसी धन से खरीदा नहीं जा सकता, ये मन का सौदा है। इसमें खरीद फरोख्त स्वतः होता है, ये पूरी तरह हमारे वश में नहीं होता। तो ठगी करने वाला यदि हमें ठग कर मुफ्त में संतोष धन देता है तो ये सुख का ही तो विषय है। संतोष का ये धन हम में लालच की भावना को भी धीरे धीरे कम करता है, और यदि हम में लालच का लोप हो जाए तो हम दूसरों को ठगने की कल्पना भी नहीं कर सकते। अतः दुनिया की ठगने की अंधी दौड़ से अलग हटकर हम स्वयं के ठगे जाने के सुख का विश्राम प्राप्त कर सकते हैं और इस बात को सच मान सकते हैं कि कबीरा आप ठगाइए और न ठगिए कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए।
1: आप ठगे सुख उपजे, इस विषय पर विचार बिंदु में अभी आपने सुने आज के विचार। इसी के साथ आज का विचार बिंदु अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा।

केंद्र है FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

कभी वो प्रेम करना सिखाए, कभी वो भक्ति में समर्पण बताए, कभी वो गीता का ज्ञान लुटाए, उसकी बातें मधुर, उसके अधर मधुर, उसके नैन मधुर, उसके केश मधुर।

इस मधुराष्टक के बाद नाम लेते हैं उस जगत जननी माँ का, जिसकी कृपा से हम इस संसार में वास कर रहे हैं। उसकी शक्ति से हमारे सारे कार्य सफल होते हैं। ऐसी ममतामयी करुणामयी माँ को हमारा कोटि कोटि नमन।

हे कैलाशवासी, हे महादेव, आप कैलाशपति हैं, आप गौरापति हैं, हे नीलकंठी, आप सा दयालु कोई नहीं, आप सदैव ही अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। हे परमेश्वर, आपके दुखहर्ता स्वरूप को मेरा नमन है।

राम नाम एक ऐसा वैद्य हर ले तन मन की पीड़। राम नाम की महिमा गाए कितने संत फकीर। इसलिए सदैव राम नाम की औषधि का सुमिरन करें।

आदि है, अंत है, शिव ही अनंत है। समय है, काल है, शिव ही महाकाल है। शिव सत्य है, शिव अनंत है, शिव अनादि है, शिव भगवंत है, शिव ओमकार है, शिव ब्रह्म है, शिव शक्ति है, शिव भक्ति है। इसलिए सभी जपो ओम नमः शिवाय।

हे प्रभु, मुझे आपकी भक्ति की कोई विधि ज्ञात नहीं। किस विधि आपका पूजन करूं, किस विधि आपका सुमिरन करूं? बस मेरा हृदय आपको समर्पित है। प्रभु, आपसे जब से लौ लगी है, मेरे भीतर सकारात्मकता का संचार है। अब यदि आप मेरी सुध लेना भूल भी जाए तो मैं ये कदापि नहीं कर सकती, क्योंकि आपकी भक्ति सर्वत्र है। जो भजे कृष्ण नाम सो ही भव से पार है। कृष्ण कृष्ण कृष्ण जपिए, इस नाम की महिमा अपरंपार है।

उषा मंगेशकर, लता मंगेशकर और आशा भोसले, पंडित भीमसेन जोशी, शर्मा बंधु, उदित नारायण, हरिओम शरण और नव चलुटा के स्वरों में अभी आपने सुने भक्ति वंदन। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ संपन्न होती है आज की आराधना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। श्रोताओ, अब समय है आज की बात का। नमस्कार श्रोताओ, आज की बात के साथ हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। श्रोताओ, आज 4 जून है, आइए जानते हैं क्या खास है आज की बात में, क्यों महत्वपूर्ण है आज का दिन। श्रोताओं, आज हिंदी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री नूतन समर्थ बहल की जयंती है। 4 जून वर्ष 1936 को मुंबई में शोभना समर्थ के घर नूतन का जन्म हुआ। हिंदी सिनेमा में नूतन को एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों की महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने वाली परंपरागत विचारधारा को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुजाता, बंदिनी, सरस्वती चंद्र, सीमा, मिलन, मैं तुलसी, तेरे आंगन की जैसी कई फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने ही साबित कर दिया कि नायिकाओं में भी उत्कृष्ट अभिनय क्षमता है और अपने अभिनय के बल पर नायिकाएं भी दर्शकों को सिनेमा हॉल तक पहुंचाने में सक्षम हैं। नूतन को अपने फिल्मी करियर में 5 बार फिल्म फेयर पुरस्कार और वर्ष 1974 में भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से नवाजा गया। 21 फरवरी वर्ष 1991 को नूतन ने दुनिया को अलविदा कहा। श्रोताओं, आज जाने माने पार्श्व गायक SP बाला सुब्रमण्यम की जयंती है। 4 जून वर्ष 1946 को नेल्लोर मद्रास में इनका जन्म हुआ। SP बाला सुब्रमण्यम ने पिछले 5 दशकों में करीब 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गीत गाए। पार्श्व गायक येसुदास के बाद SP बाला सुब्रमण्यम बेस्ट मेल सिंगर का नेशनल पुरस्कार पाने वाले दूसरे पार्श्व गायक हैं। वर्ष 2001 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री और वर्ष 2011 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। इनकी मुख्य फिल्में हैं एक दूजे के लिए, मैंने प्यार किया, साजन, पत्थर के फूल, हम आपके हैं कौन। श्रोताओं, अदाकार सलमान खान पर SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज बेहद जचती थी। स्क्रीन पर बानो सलमान खान ही गा रहे हों। वर्ष 2020 में 25 सितंबर के दिन तमिलनाडु में इनका देहावसान हुआ। श्रोताओं, आज भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी प्रमोद भगत का जन्मदिन है। 4 जून वर्ष 1988 को उड़ीसा में प्रमोद भगत का जन्म हुआ था। श्रोताओं, 5 वर्ष की उम्र में पोलियो के कारण प्रमोद भगत का बायां पैर विकृत हो गया था। प्रमोद भगत ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में बेहद जीवंत प्रदर्शन किया। उन्होंने विश्व चैंपियनशिप में 4 गोल्ड समेत 45 इंटरनेशनल मेडल जीते हैं। वर्ष 2022 में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री से भी सम्मानित किया था। श्रोताओं, आज आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचारक अंचत लक्ष्मीपति की पुण्यतिथि है। 4 जून वर्ष 1962 को भारत में ही इनका निधन हुआ था। इनका जन्म 3 मार्च वर्ष 1880 को आंध्र प्रदेश के गोदावरी जिले में हुआ था। अंचत लक्ष्मीपति को आयुर्वेदिक औषधियों के प्रचार प्रसार के लिए आज भी जाना जाता है। अंचत लक्ष्मीपति मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज और त्रिवेंद्रम आयुर्वेदिक कॉलेज के प्रधानाचार्य भी रहे। अबाड़ी के प्रसिद्ध आरोग्य आश्रम और आंध्र आयुर्वेदिक फार्मेसी की स्थापना का श्रेय भी अंचत लक्ष्मीपति को ही जाता है। तो श्रोताओं, ये थी आज की बात जिसे आप सुन रहे थे रेखा सिलोरी से। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 मेगाहर्ट्ज पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है देशगान।

अभी आप सुन रहे थे देश गान। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है विविधा। विविधा के आज के अंक के साथ हाजिर हूं मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी को मेरा नमस्कार। श्रोतो, आज निर्दोष बच्चों के साथ दुर्व्यवहार विरोधी दिवस है। आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस इसे कह सकते हैं। इसे प्रत्येक वर्ष 4 जून को मनाया जाता है। इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आज के समय की युवा पीढ़ी अपने सफलता की सीढ़ी से बहुत जल्दी भटक जाती है। वह कहीं ना कहीं शिकार हो जाती है किसी ऐसे कार्य का जिससे अपने जीवन को सफल बनाने में नाकाम साबित होते हैं। आप देख सकते हैं कि आज की दिनचर्या जीवन में भावनात्मक, हिंसात्मक और शारीरिक हिंसा है। इसके केसेस आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो श्रोताओं, जो युवा पीढ़ी के भविष्य में नकारात्मक प्रभाव डालते हैं, इन सभी चीजों से बचाने के लिए और जो लोग भावनात्मक और शारीरिक हिंसा के शिकार हो गए हैं, उनको उनकी सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय

यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 19 अगस्त 1982 से हुई, क्योंकि इस समय फिलिस्तीन ने आग्रह किया संयुक्त राष्ट्र सभा से, और ये उस समय की बात है जब इजराइल की हिंसा में फिलिस्तीन और लेबनान के बच्चों को हिंसा का शिकार होना पड़ा था, और उसी हिंसा को ध्यान में रखते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 4 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन विक्टिम ऑफ एग्रेशन मनाने का निर्णय लिया। आमतौर पर संयुक्त राष्ट्र के दिवस या तो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं या फिर कमजोर तबके के लिए होते हैं। कुछ दिवस बच्चों के लिए भी हैं, जिनमें एक है आक्रामकता का शिकार हुए मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो कि आज है। ये दिवस शुरू में युद्ध के हालात के शिकार बच्चों के लिए मनाया जाता था, लेकिन बाद में इसके उद्देश्यों को दुनिया भर में शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक दुर्व्यवहार से पीड़ित बच्चों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए प्रयास करना शामिल कर लिया गया। इस दिन को बाल अधिकारों की रक्षा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के संकल्प की पुष्टि वाला दिन भी माना जाता है। श्रोताओं, 4 जून वर्ष 1982 को ही इजराइल ने दक्षिणी लेबनान पर हमला करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद इस हमले में बड़ी संख्या में निर्दोष लेबनानी और फिलिस्तीनी बच्चे या तो मारे गए या घायल हो गए या वो बेघर हो गए। युद्ध हो या किसी अन्य तरह का सशस्त्र संघर्ष, सबसे ज्यादा बुरा हाल बच्चों का होता है। वे सामान्य शिक्षा से तो वंचित हो ही जाते हैं, साथ ही कुपोषण का शिकार भी हो जाते हैं। श्रोताओं, बच्चों पर सबसे ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ते हैं। हाल के दशकों में दुनिया में अलग अलग जगहों पर जहां आतंकी घटनाएं होती हैं, वहां सबसे बड़ा नुकसान बच्चों का ही होता है। वे मानसिक और शारीरिक हिंसा के भी शिकार हो जाते हैं, जिसके बारे में पता तक नहीं चलता। जहां भी किसी तरह का छोटा सशस्त्र संघर्ष शुरू होता है, उसमें सबसे ज्यादा कमजोर कड़ी बच्चे ही होते हैं, और वे ही सबसे ज्यादा प्रभावित भी होते हैं। श्रोताओं, इसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत है। जैसे कि संयुक्त राष्ट्र का मानना है कि बच्चों की सुरक्षा के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं है, और इस मामले में और ज्यादा किए जाने की जरूरत है। इसके लिए हिंसक चरमपंथियों को निशाना बनाए जाने की जरूरत है। अंतर्राष्ट्रीय मानवतावादी और मानव अधिकार कानूनों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है, और ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि बच्चों के अधिकारों को उल्लंघन की जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। तो श्रोताओं, ये था विविधा का आज का अंक, जो आपने रेखा सिलोरी के साथ सुना। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: उपयुज्य समित्या बिहार राज्ये राष्ट्रिय राजमार्गयोः एकत्रिंशत् तथा एकत्रिंशदधिकद्विशतस्य च इत्येतयोः खगड़िया पूर्णिया खण्डस्य चतुर्पथ परियोजना अपि अनुमोदिता। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अद्य नवदिल्ल्यां वेनेजुएला देशस्य राष्ट्रपतिना डेल्जी रोड्रिगेज इत्यनेन सह द्विपक्षीय वार्तां विधास्यति। अस्याम् उच्चस्तरीय चर्चायां भारत वेनेजुएला संबंधानां अशेषेषु पक्षेषु मंथनं भविष्यति। सहैव ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार निवेश, स्वास्थ्य सेवा, परिवहनम्, नवीकरणीय ऊर्जा इत्यादिषु क्षेत्रेषु भविष्ये सहयोगस्य नूतन मार्गाणाम् अन्वेषणं च भविष्यति। रोड्रिगेज वर्यः भारतदेशस्य पञ्चदिवसीय यात्रायां ह्यः नवदिल्लीं समागच्छत्। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अवोचत् यत् कृत्स्नेः विश्वे योगस्य लोकप्रियता तीव्रगत्या वर्धमाना वर्तते। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन सन्देशेन प्रधानमन्त्रिणा संसूचितं यत् अद्य प्रथम वैश्विक योगासन प्रतियोगितायां सह आभासीय माध्यमेन सम्मिलितो भविष्यति। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः अद्य सायंकाले त्रिपुरा राज्यस्य द्विदिवसीय यात्रायां अगरतला नगरं प्रति एष्यति। यात्रावधौ श्री शाहः पुष्पवंत पैलेस इत्यस्य शिलान्यास समारोहे भागं ग्रहीष्यति। लंकामुरा स्थिते सीमा सुरक्षा बलस्य निरीक्षणं च करिष्यति। सहैव राज्य केन्द्रीय सुरक्षा अधिकारिभिः सह एकं उच्चस्तरीय उपवेशनं करिष्यति। गृहमन्त्रिणः यात्रां वीक्ष्य त्रिपुरा प्रशासनेनापि एका उच्चस्तरीया प्राशासनिक सुरक्षा सीमा सभा आयोजिता। राष्ट्रिय राजधान्यां दिल्ल्यां मालवीय नगरस्य एकस्मिन् विश्रान्ति निलये भीषणाग्निकाण्डे एकविंशतिः जनाः मृत्युमुपगताः, अनेके च जनाः व्रणिताः अभवन्। दक्षिणदिल्ल्यारक्षिविभागस्य उपायुक्तः अनन्त मित्तलः अवोचत् यत् अग्निशमनविभागस्य अष्टभिः वाहनैः सह अग्निः नियन्त्रितः। आरक्षिणाम् अग्निशमनस्य तथा अन्य आपत्कालिकसेवानां संयुक्तप्रयत्नैः चत्वारिंशदधिकाः जनाः सुरक्षितरूपेण उद्धृताः, चिकित्सोपचारार्थं च चिकित्सालयेषु प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी घटनामुद्दिश्य गहनं दुःखं व्यक्तीकृतवान्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मुः, उपराष्ट्रपतिः सीपी राधाकृष्णन्, गृहमन्त्री अमितशाहः तथा दिल्लीराज्यस्य मुख्यमन्त्री रेखागुप्ता अपि अस्मिन् दुःखदे घटनाक्रमे शोकं प्रकटितवन्तः। सर्वैः नेतृभिः शोकसन्तप्तपरिवारान् प्रति गहनसंवेदना व्यक्तीकृता। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेता ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, दवा उद्योग, स्वास्थ्य सेवा और नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे। राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और ग्लोबल साउथ के मुद्दों पर मजबूत सहयोग है। ये यात्रा दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत बनाने में सहायक होगी। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येविट कूपर भारत की 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। उनका आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से भी मिलने का कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए गए नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य

0: सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। इसके बाद गृहमंत्री त्रिपुरा के 2 दिन के दौरे पर आज शाम अगरतला पहुंचेंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव पश्चिम बंगाल में विभिन्न रेल परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए शनिवार को कोलकाता पहुंचेंगे। पूर्वी रेलवे के अधिकारी शिवाजी माजी ने आकाशवाणी को बताया कि रेल मंत्री मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के साथ नबन्ना में सभागार में उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विमान ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने के लिए तेल विपणन कंपनियों को 10,000 करोड़ रुपए की एकमुश्त बजटीय सहायता देने का निर्णय लिया है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि भारतीय विमानन कंपनियों की सहायता के लिए ये आत्मनिर्भर कोष 36 महीने के लिए लागू रहेगा। मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में पुराने ट्रकों और बसों को नए वाहनों से बदलने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को सहायता प्रदान करने की योजना को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि योजना के अंतर्गत लगभग 2,00,000 ट्रक और 16,000 बस BS6 या इलेक्ट्रिक वाहन से बदली जाएंगी।
1: दिल्ली के पॉल्यूशन को रोकने के लिए लगातार कई स्टेप्स लिए जा रहे हैं। उन स्टेप्स में एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया कि जो 40% कंट्रीब्यूशन है पार्टिकुलेट मटेरियल का, वो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के कारण आता है और उस ट्रांसपोर्टेशन में जो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है हैवी ट्रक्स और बसेस, पुरानी ट्रकों और बसों को रिप्लेस करने का इसमें फैसला लिया गया है।
0: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में ले लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही अवैध संपत्तियों, अनाधिकृत गेस्ट हाउसों और अग्नि सुरक्षा नियमों तथा भवन उपनियमों का उल्लंघन करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ पूरे शहर में विशेष अभियान चलाने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया में योग अत्यंत लोकप्रिय हो रहा है। प्रधानमंत्री ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे आज गुजरात के अहमदाबाद में आयोजित होने वाले प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप में आभासी माध्यम से शामिल होंगे। श्री मोदी ने कहा कि इस मंच ने दुनिया भर के योग प्रेमियों को जोड़ा है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 7:05 हुए हैं। अब एक नजर हमारे केंद्र से हमारी आज की सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। आज शाम 4 बजे संदेश टू सोल्जर्स, रात्रि 8:30 पर स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम, रात्रि 10 बजे क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के तहत मैथिली लोकगीत श्रीमती सौम्या मिश्रा, संगीत संयोजक विजय कुमार सामंत राय के आधुनिक उड़िया गीत। हमारे ये सभी कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। शाम 6:50 में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के ये दोनों ही बुलेटिन हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में प्रातः 7:10 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस कानपाठ। लोकमंजरी कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे प्रातः 7:30 पर, जिसमें आज के कलाकार होंगे विक्की। प्रातः 7:50 पर हिंदी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे सुश्री विनीता जोशी का काव्य पाठ। शास्त्रीय संगीत का समय रहेगा प्रातः 8:30। इस कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे उस्ताद राशिद खां का राग तोड़ी में गाया ख्याल। फरमाइशी फिल्मी नगमों का प्रोग्राम गीत नजर का समय रहेगा प्रातः 9:05। प्रातः 10:05 पर सबरंग प्रोग्राम होगा। प्रातः 10:35 पर शीर्षक गीत पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार हम आपको सुनवाएंगे। सैनिकों के लिए फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे प्रातः 11:00। प्रातः 11:30 पर

कुमाऊनी, गढ़वाली और जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक सुर आप सुनेंगे। फिल्म संगीत मेरी पसंद का समय रहेगा दोपहर 12 बजे। दोपहर 12:30 पर महिलाएं सुनेंगी अपना कार्यक्रम अर्पण। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय रहेगा ऊर्जा संरक्षण से सुरक्षित भविष्य। साथ ही इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे आत्मनिर्भरता से सशक्त बनती ग्रामीण महिलाएं विषय पर बालाजी एवं स्वयं सहायता समूह की कोषाध्यक्ष श्रीमती मुन्नी रावत से मंजू बोरा की क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। सुगम संगीत का समय रहेगा दोपहर 1:15 NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग हम आपको सुनवाएंगे दोपहर 1:30 पर। उत्तराखंड के लोकगीतों का आनंद आप लेंगे दोपहर 2 बजे। दोपहर 2:30 पर खेती की बातें कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून की खेती विषय पर डॉक्टर राकेश मीर की पूर्व प्रसारित वार्ता। फिल्म संगीत एक ही फनकार का समय रहेगा दोपहर 2:45 अपराह्न 3 बजे हम आपको सुनवाएंगे सदाबहार फिल्मी गीत। शाम 5:05 पर कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर आप सुनेंगे, जिसमें आज हम आपको सुनवाएंगे जगदीश फुलारी की स्वर में लोकगीत। युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युवाणी का समय रहेगा शाम 5:15। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा पर्यावरण के लिए जीवन शैली। उत्तरायण कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं शाम 5:45 पर, जिसमें आज की चर्चा का विषय रहेगा अतिक्रमण शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। कुछ भक्ति रचनाएं भक्ति संगीत कार्यक्रम में आप सुनेंगे शाम 6:41 पर। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा शाम 7 बजे, जिसमें आज की बात आपसे होगी कृषि में नवाचार और लाभ विषय पर। साथ ही इसी कार्यक्रम में आप सुनेंगे खेती बचाव अभियान, टिकाऊ कृषि पद्धतियां, फसल चक्र और संरक्षण जुताई विषय पर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे पहाड़ी महिला कृषकों के लिए पशुपालन संबंधित श्रम साध्य कार्य कम करने वाली प्रौद्योगिकियां विषय पर डॉक्टर दीप्ति कोठारी से भेंटवार्ता। फिल्म संगीत का समय रहेगा शाम 7:40, रात्रि 8 बजे आप सुनेंगे सबरस प्रोग्राम। फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष होगा रात्रि 9:15 पर। रात्रि 9:30 पर धरोहर कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे संगीत रूपक जीतू बगटवाल का पहला भाग। यदि रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की, हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान पाठ का 114वां भाग। कलाकार है श्रीकांत पारगांवकर, संगीत निर्देशन है सतीश भाटिया का।

वर के रूप में श्री राम जिस घोड़े पर सवार हैं वो मानो कामदेव का सुंदर रूपधारी है, जो अपनी अवस्था, बल, रूप, गुण और मस्त चाल से सबको मोहित कर रहा है। भगवान शंकर श्री राम के इस मनोहारी रूप में ऐसे अनुरक्त हुए कि उन्हें अपने 15 नेत्र प्यारे लगने लगे। लक्ष्मीपति भगवान विष्णु श्री राम के इस रूप पर मुग्ध हैं, किंतु ब्रह्मा को ये छवि देख पाने के लिए अपने मात्र 8 नेत्र पर्याप्त प्रतीत नहीं होते। इधर बारात के स्वागत को आतुर नगरवासियों में आनंद की लहर दौड़ गई है। चंद्रमुखी तथा हरिण की सी आंखों वाली स्त्रियां रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित होकर स्वागत गान गा रही हैं। इस अवसर की शोभा देखने के लिए इंद्राणी, शची, सरस्वती, लक्ष्मी, पार्वती तथा अन्य देवांगनाएं आम स्त्रियों का रूप धारण कर महिलाओं के समूह में आ मिली हैं। कौन भला किसे जाने और पहचाने, महिला समुदाय के कमल जैसे नेत्रों में प्रेम के आंसू उमड़ रहे हैं और होठों पर मुखरित हो रहा है परिछन गीत।

0: श्री रामचरित मानस गान पाठ का 114वां भाग अभी आपने सुना। कलाकार थे श्रीकांत पारगांवकर। संगीत निर्देशन था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:20 होने वाले हैं। अब प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे। पहले मुख्य समाचार। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने घेरवाड़ योजना के लिए प्रथम किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपए राज्य को जारी किए। मेरा युवा भारत के तहत उत्तराखंड सहित सीमावर्ती राज्यों में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण की शुरुआत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं योशिता पांडे और अब समाचार विस्तार से। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पैठाणी, पाबू और खिरसू क्षेत्र में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण विकास की आधारशिला है। राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य प्रत्येक गांव तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना तथा युवाओं, महिलाओं और किसानों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ग्रामीणों को विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी तथा उनसे इस योजनाओं का अधिकाधिक लाभ उठाने का आह्वान किया। डॉ. रावत ने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार निवेश कर रही है ताकि ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण और बेहतर शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। केंद्र सरकार ने घेरबाड़ योजना के लिए घोषित 90 करोड़ रुपए की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जारी कर दिए हैं। यह जानकारी कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान कही। श्री जोशी ने अधिकारियों को उपलब्ध बजट का 100% उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि घेरबाड़ योजना किसानों की फसलों को वन्य जीवों और आवारा पशुओं से होने वाले नुकसान से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। बैठक में कृषि मंत्री ने 30 जून तक चलाए जा रहे देशव्यापी खेत बचाओ अभियान के राज्य में प्रभावी और सफल क्रियान्वयन पर भी जोर दिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान के अंतर्गत आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सांसदों, मंत्रियों, विधायकों तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों

0: की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए ताकि किसानों तक योजना और अभियान की जानकारी व्यापक रूप से पहुंच सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास और सबका प्रयास सिद्धांत के अंतर्गत देश में पिछले 12 वर्षों में उल्लेखनीय बदलाव आया है। इस दौरान मोदी सरकार ने निर्धनों किसानों महिलाओं और युवाओं के कल्याण और सशक्तिकरण के लिए अनेक महत्वपूर्ण पहल शुरू की है। आकाशवाणी समाचार पिछले 12 वर्ष में प्रमुख क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात आयुर्वेद और आयुष की। हरिद्वार जिले में वर्तमान में 28 आयुर्वेदिक चिकित्सालय आधुनिक सुविधाओं के साथ संचालित हो रहे हैं। जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर स्वास्तिक सुरेश जैन ने बताया कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के कारण आयुष और आयुर्वेद के प्रति लोगों का रुझान लगातार बढ़ रहा है।
1: हरिद्वार में आयुष विभाग के अंतर्गत जो हम लोग कार्य कर रहे हैं वो हमारे पास 28 आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय हैं। ये 28 आयुर्वेदिक और यूनानी चिकित्सालय जनपद के ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में भी हैं और कुछ चिकित्सालय शहरी क्षेत्र में भी हैं। मैं बताना चाहूंगा आयुर्वेद और यूनानी यानी आयुष डिपार्टमेंट के जो भी कार्य किए गए हैं इन 12 सालों में उनका आउटकम आज प्रैक्टिकली जनता तक पहुंच रहा है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान हमारे आयुष मंत्रालय की एक योजना है जिसको हम NAM यानी नेशनल आयुष मिशन के नाम से जानते हैं। नेशनल आयुष मिशन को भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा सन 2014 में लॉन्च किया गया। ये जो नेशनल आयुष मिशन योजना है इसका मुख्य उद्देश्य है, पहला तो आयुष की सेवाओं को जनता तक दुर्गम और दूर दराज के क्षेत्रों तक पब्लिक आउटरीच के रूप में जनता तक पहुंचाना। दूसरा इसका उद्देश्य था पब्लिक हेल्थ जो फैसिलिटीज हैं आयुष की को अपग्रेड करना। तीसरा है आयुष शिक्षा का प्रचार प्रसार और चौथा इसका रहा है आयुष की मेडिसिन जो होती हैं उनकी गुणवत्ता और उनकी उपलब्धता को सुनिश्चित। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य हुआ है वो हुआ है हमारा योग के क्षेत्र। हमारे पास 12 आयुष्मान आरोग्य मंदिर जो अपग्रेडेड आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स हैं जिसका NAM में जो मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर और हॉस्पिटल सर्विसेज को अपग्रेड करने का ऑब्जेक्टिव था, तो पिछले 12 सालों में 12 आयुर्वेदिक हॉस्पिटल्स को अपग्रेड कर दिया गया है।
0: लाभार्थी टीना बताती हैं कि पैरों में लगातार दर्द रहने के कारण उन्हें चलने फिरने में काफी परेशानी होती थी। उन्होंने हरिद्वार आयुर्वेदिक चिकित्सालय में उपचार कराया जिसके बाद उनकी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है।
2: मेरे पैरों में ना इतना दर्द था कि मैं चल भी नहीं पा रही थी। फिर MRI कराया डॉक्टर ने, उसमें L2 L3 उसमें गैप कम था जिसकी वजह से मैं चार कदम भी चलने में असमर्थ थी, चल ही नहीं पा रही थी। मेरी किसी परिचित ने मुझे बताया कि आप रुकिए राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय में जाइए और वहाँ डॉक्टर प्रदीप कुमार जी मिलेंगे, आप उनसे मिलिए, क्योंकि उनको भी वही समस्या थी, उन्होंने यहीं से ट्रीटमेंट लिया है, उनको काफ़ी आराम था। तो तब मैं यहाँ आई लगभग 1.5 महीने पहले और तब से अब तक मुझे 80% से ज़्यादा रिलीफ है।
3: समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: युवा मामले और खेल मंत्रालय के युवा मामलों में के विभाग ने मेरा युवा भारत के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 की प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जन भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा देश के सीमावर्ती गाँवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए देशभर से 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन स्वयंसेवकों को उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में 2 चरणों में तैनात किया जा रहा है। पेश है एक रिपोर्ट।
4: कार्यक्रम के पहले चरण में 250 स्वयंसेवक 41 गांवों में गहन गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। यह कार्यक्रम युवा नागरिकों को सीमावर्ती गांवों में रहने और स्थानीय समुदायों के साथ सीधे जुड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। गाँव वासियों, पंचायती राज संस्थाओं, स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से प्रतिभागी देश के सीमावर्ती क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक वास्तविकताओं, सांस्कृतिक विरासत, विकासात्मक आकांक्षाओं और रणनीतिक महत्व से प्रत्यक्ष रूप से परिचित होंगे। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से वीरेंद्र दत्त गैरोला।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है।

0: प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 12 जून को देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगी तथा 13 जून को भारतीय सैनिक अकादमी IMA में आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सुरक्षा, यातायात, आवास तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं को त्रुटि रहित और चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। देहरादून में आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना को अब नई गति मिलने जा रही है। राजधानी के प्रमुख शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में शामिल इस महत्वाकांक्षी योजना के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए MDDA ने रणनीति तैयार कर ली है। MDDA सभागार में आयोजित उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों को इस माह के भीतर सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। MDDA के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और अब एक नजर आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। दिल्ली में कल हुए अग्निकांड को सभी समाचार पत्रों ने पहले पेज पर सचित्र प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण लिखता है, दिल्ली में अवैध होटल में भीषण आग, 11 विदेशी नागरिक समेत 21 की मौत। IIT रुड़की से हजारों छात्रों का डेटा सार्वजनिक होने पर हिंदुस्तान समाचार पत्र की सुर्खी है, पहले भी लीक हो चुका 30,000 छात्रों का डाटा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के उत्तराखंड दौरे पर अमर उजाला लिखता है, अल्मोड़ा में राहुल गांधी आज करेंगे चुनावी शंखनाद। उत्तराखंड में इबोला वायरस को लेकर अलर्ट, इस समाचार को हिंदुस्तान ने पहले पेज पर प्रकाशित किया है। अंतिम में मुख्य समाचार एक बार फिर। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले में विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। केंद्र सरकार ने घेरबाड़ी योजना के लिए प्रथम किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपए राज्य को जारी किए। मेरा युवा भारत के तहत उत्तराखंड सहित सीमावर्ती राज्य में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण की शुरुआत और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोक मंजरी। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विक्की के स्वर में लोकगीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
5: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
6: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का

0: शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
1: कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस कार्यक्रम में हमारे आज के कलाकार हैं विक्की

0: विक्की के स्वर में आप सुन रहे हैं लोकगीत कार्यक्रम है लोक मंजरी।
1: अरे घुगती चढ़ी बैठी रे घोली माँ, प्यारा दाजू क्या लारी झोली माँ, घुगती चढ़ी।

लोकमंजरी कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं विक्की के स्वर में लोकगीत।

0: विक्की के स्वर में अभी आपने सुना ये लोकगीत। इसी के साथ आज का कुमावनी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकमंजरी अब संपन्न हुआ। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर। प्रस्तुत है हिंदी कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं सुश्री विनीता जोशी का काव्य पाठ।
1: मेरी पहली कविता है पहला पहला प्यार।

प्यार, ना कोई थी जीत साथ में ना कोई थी हार, ये पहला पहला प्यार। बड़ा अनोखा बड़ा सलोना यादों का संसार, जहाँ पल रहा चुपके चुपके पहला पहला प्यार। सुख दुख खेले आँख मिचौनी, जीवन की यह याद सलोनी। सुख दुख खेले आँख मिचौनी, जीवन की यह याद सलोनी। अंधकार में जुगनू जैसा पहला पहला प्यार, अंधकार में जुगनू जैसा पहला पहला प्यार। बड़ा अनोखा बड़ा सलोना यादों का संसार, जहाँ पल रहा चुपके चुपके पहला पहला प्यार। जहाँ पल रहा चुपके चुपके पहला पहला प्यार। जहाँ पल रहा चुपके चुपके पहला पहला प्यार। धन्यवाद। मेरी दूसरी कविता है वो कच्चे आम।

बर बस गांव बुलाते बचपन के वो कच्चे आम यादों में आकर बस जाते बचपन के वो कच्चे आम कोयल के मधु गीत सुनाते बचपन के वो कच्चे आम कोयल के मधु गीत सुनाते बचपन के वो कच्चे आम सौंधी सौंधी भूख जगाते बचपन के वो कच्चे आम मुझको बरबस गांव बुलाते बचपन के वो कच्चे आम यादों में आकर बस जाते बचपन के वो कच्चे आम चूल्हे की रोटी संग चटनी मुझे खिलाते कच्चे आम चूल्हे की रोटी संग चटनी मुझे खिलाते कच्चे आम बचपन के वो संगी साथी पास ले आते कच्चे आम बचपन के वो संगी साथी पास ले आते कच्चे आम मुझको बरबस गांव बुलाते बचपन के वो कच्चे आम यादों में आकर बस जाते बचपन के वो

मुझको बर बस पास बुलाते बचपन के वो कच्चे आम, मुझको बर बस गांव बुलाते बचपन के वो कच्चे आम, यादों में आकर बस जाते बचपन के वो

मुझको बरबस गांव बुला, बचपन के वो कच्चे आम यादों में आकर बस जाते, बचपन के वो कच्चे आम। मेरी तीसरी कविता है, मैं लड़का हूँ मैं।

मुझे मर्द ही बन कर है रहना, अपने आंसू से ना रोना। मुझे मर्द ही बन कर है रहना, अपने आंसू से ना रोना। अपने दुख से अपने

सुश्री विनीता जोशी से अभी आप सुन रहे थे काव्य पाठ। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है।

0: FM 14.8 मेगाहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 8 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
2: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
1: और लाइट बिल के
2: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
2: पक्का।
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज से अहमदाबाद में शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
5: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण

0: मंद है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर दो दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी ये यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी।
2: बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा और हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार, पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्यों के राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उत्तर पूर्वी परिषद सदस्य और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। अनुमेदिता और ऋषो की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस सम्मेलन के दौरान काशी के विश्व प्रसिद्ध GI टैग प्राप्त और ODOP यानी एक जिला एक उत्पाद की एक विशेष प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रदर्शनी में 6 कारीगर, वाराणसी की समृद्ध शिल्प परंपराओं का प्रतिनिधित्व करने वाले 6 अनूठे उत्पादों का प्रदर्शन करेंगे। ये उत्पाद काशी की सदियों पुरानी कला, शिल्प कौशल और सांस्कृतिक विरासत के जीवंत प्रतीक हैं। प्रदर्शनी के माध्यम से विदेशी प्रतिनिधियों को न केवल इन उत्पादों की विशिष्टता से कराया जाएगा बल्कि स्थानीय कलाकारों और कारीगरों को भी वैश्विक बाजार में अपने उत्पादों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम कारोबार करने में सुगमता यानी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों पर चर्चा करेंगे।
4: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सके। इसके अलावा 2017 में GST लागू किया गया जिसे अलग अलग कर व्यवस्थाओं की जगह एक सरल कर प्रणाली लागू हुई जिसे कारोबार करना आसान हो गया। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
5: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष करके ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है। स्टेबिलिटी के लिए अप्रत्यक्ष करके रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
4: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
6: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता है।

0: रहता है। एमएसएमई स्टार्टअप महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
1: सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। भारत में कारोबार के लिए बेहतर माहौल, मजबूत डिजिटल व्यवस्था और पारदर्शी शासन से व्यापार और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इसका मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं में योग को शामिल करना है।
3: इस 5 दिवसीय वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका सहित 60 देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी 12 विभिन्न स्पर्धाओं में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। इस चैंपियनशिप के दौरान खिलाड़ी कला और लयबद्ध योग डिवीजनों के साथ साथ 7 आधिकारिक योग श्रेणियों में हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
2: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य लोग घायल हो गए। ये घटना ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में कल रात हुई। घटना की जांच जारी है। इधर नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मौत हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया है कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
4: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं, वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
2: भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से सामना होगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, कोंकण और गोवा, लक्षद्वीप, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है, जबकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में धूल भरी आंधी की आशंका है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सरफिरोजी।
5: धन्यवाद मुकेश। राजधानी दिल्ली से प्रकाशित मुख्य समाचार पत्रों ने आज मालवीय नगर के होटल में लगी भीषण आग की खबर को सचित्र प्रकाशित किया है। जनसत्ता लिखता है, दिल्ली में भयावह अग्निकांड। दैनिक जागरण के शब्द हैं, अवैध होटल में 21 की मौत, 11 विदेशियों सहित 21 जिंदा जले। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, घटना के बाद अग्नि

0: सुरक्षा संबंधी व्यापक अभियान चलाने पर सख्ती शीर्षक से हिंदुस्तान ने लिखा है, नियम तोड़ने वाले प्रतिष्ठान सील होंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए अनुग्रह राशि देने की खबर भी अधिकतम समाचार पत्रों में है। अमर उजाला ने पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के 2 गुटों में बंटने की खबर को शीर्षक दिया है, तृणमूल में टूट, 58 बागी विधायकों ने ऋत व्रत को चुना नेता, मिली मान्यता। इसी खबर पर राजस्थान पत्रिका की टिप्पणी है, टूट गई टीएमसी, 58 विधायकों ने स्पीकर को सौंपा समर्थन पत्र। अमेरिका द्वारा भारत सहित 50 से अधिक देशों पर अतिरिक्त शुल्क लगाने के प्रस्ताव पर नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में लिखा है, अमेरिका ट्रेड डील पर बातचीत के बीच 12.5% की एक्स्ट्रा ड्यूटी का पेच अमर उजाला ने छापा है। ट्रंप प्रशासन का आरोप, इन देशों ने बंधुआ मजदूरी रोकने के लिए नहीं उठाए कदम, इसलिए लगाया जा रहा है शुल्क। भारत ने जताई कड़ी आपत्ति। वैश्विक तापमान में हो रही वृद्धि पर अमर उजाला ने संपादकीय लेख में संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के हवाले से चिंता व्यक्त करते हुए टिप्पणी की है, जून से अगस्त 2026 के बीच अल नीनो सक्रिय होने की 80% और नवंबर तक बने रहने की आशंका है। मेघालय के चेरापूंजी में सेवन सिस्टर्स और किनरेम वाटरफॉल में लगातार हो रही बारिश की मनमोहक तस्वीर दैनिक भास्कर में है। पौष्टिक आहार के फायदों की याद दिलाते हुए लोक सत्य ने टिप्पणी की है, याददाश्त बढ़ाने में सहायक पौष्टिक आहार।
1: धन्यवाद सरफिरोजी। अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आज शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका और भारत बहुप्रतीक्षित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने से कुछ सप्ताह दूर। भारत ने भूटान को 1-0 से हराकर सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही समाचार पत्र प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद एक्टिंग प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला डेल्सी रोड्रिगेज इन न्यू दिल्ली टुडे। यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह टू चेयर 73rd प्लीनरी सेशन ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल इन शिलोंग। U.S. Secretary of State Marco Rubio says United States and India are only weeks away from concluding a long-awaited trade agreement. IMD issues orange alert for heavy rain in Keralam and Mahe today. First World Yogasan Sports Championship to begin today in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi to join the event virtually in the evening. And in football, India advanced to the final of SAF Women's Championship, beating Bhutan 1-0 in Goa. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with the acting president of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi today. Ms. Rodriguez arrived yesterday on a 5-day visit to India. She is accompanied by a delegation comprising the ministers of Foreign Affairs, Economy and Finance, Science and Technology, Communication and Information and Transportation. Ms. Rodriguez had visited India in her earlier capacity as Foreign Minister in 2015 and as Vice President in 2019, 2023, 2024 and 2025. More from our correspondent.
3: The discussions will involve the full spectrum of India-Venezuela relations and explore avenues for further cooperation in areas of energy security, trade and investment, pharmaceuticals, healthcare, transportation and renewable energy. The Venezuelan delegation will also visit several sites connected with energy, pharmaceuticals and auto sectors to gain insights into India's technological and industrial capabilities and to explore opportunities for collaboration. India has been an important partner of Venezuela in the areas of energy and investment. Indian PSUs have made significant investment in Venezuela in the energy sector and they are keen to explore opportunities for further enhancing their presence. According to the Ministry of External Affairs, India and Venezuela in

0: उस्ताद राशिद खां का राग तोड़ी में गाया ख्याल अभी आपने सुना। इसी के साथ शास्त्रीय संगीत कार्यक्रम अब संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9 बजने वाले हैं। अब समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ वार्ता करेंगे। इस दौरान ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार, निवेश, औषधि उद्योग, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। डेल्सी रोड्रिगेज 5 दिन की भारत यात्रा पर कल नई दिल्ली पहुंची थी। हमारी संवाददाता की ये रिपोर्ट।
2: राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी है। वह इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 2025 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि भारत और वेनेजुएला के बीच ऊर्जा, व्यापार और वैश्विक दक्षिण के प्रति साझा प्रतिबद्धता पर आधारित सौहार्दपूर्ण संबंध है। मंत्रालय के अनुसार इस यात्रा से दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध और अधिक मजबूत होंगे तथा विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को नई गति मिलेगी। अनुपम मिश्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से इशिका शॉ।
1: ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री येवेट कूपर 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। सुश्री कूपर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। वे आज शाम विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलोंग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में पर्यटन, कृषि और बागवानी, निवेश, खेल, बुनियादी ढांचा, संपर्क सुविधा तथा हस्तशिल्प जैसे क्षेत्रों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 6:40 पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। उन्होंने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया और आयोजनकर्ताओं तथा प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी। नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12

0: विदेशी नागरिक शामिल हैं। पुलिस के अनुसार कुल 49 लोगों को उपचार के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और इमारत के मालिक लवकेश बजाज को हिरासत में लिया है। इस बीच दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। श्री रूबियो ने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों के प्रतिनिधियों के साथ भी इस संबंध में चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। भारत का मुकाबला शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। ये मैच भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज केरलम और माहे में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, कर्नाटक, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी और उत्तराखंड में भी बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 16.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 9:05 हुए हैं। लीजिए पेश है ईमेल, व्हाट्सएप और फरमाइशी फिल्मी नगमों पर आधारित गीत निर्चय प्रोग्राम।

आज का गीत निर्झर प्रोग्राम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत और साथी की चीज स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। अच्छा खासा बैठे बैठे गुम हो जाता हूँ, अब मैं अक्सर मैं नहीं रहता तुम हो जाता हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये मोहब्बत होती ही ऐसी है कि ना कुछ कहते बनता है ना चुप रहते बनता है, बस उसी का सुरूर हमेशा छाया रहता है दिलो दिमाग पर। जो मैं नहीं कह पाता हूँ वो सब मेरी आंखें कहती हैं। तुम पढ़ना जरूर मेरे पास बैठकर मेरी खामोशियों को, एक बार तुम सुनना जरूर मेरी छोटी छोटी बातों में मेरे प्यार को तुम महसूस करना जरूर। जैसे सोचता रहता हूँ मैं तुम्हारे बारे में, वैसे ही कुछ वक्त निकाल कर मेरे बारे में तुम सोचना जरूर और मुझसे ये न पूछना कि मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल से अभी आप सुन रहे थे प्रवीण भारद्वाज का लिखा गीत। इस गीत को संगीतबद्ध किया था आनंद मिलिंद ने। फिल्म का नाम था नाम गुम जाएगा और इस नगमे को सुनने की ख्वाहिशमंद थे हमारे ये श्रोता विदर्भ श्रोता क्लब जलगांव जंक्शन से डॉक्टर दिनेश काले, वंदना काले, आदेश कुमार काले, प्रोफेसर वसुधा वज्रसेन और इनके परिवार के सभी लोग, मोहल्ला हलवाईयान शेरकोट बिजनौर से मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजदा रानी, हिना कौसर और इनके परिवार के लोग, दतुरंगी भाटापारा छत्तीसगढ़ से हीरा मणि वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र मणि वर्मा और नुखेलाल वर्मा, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला सुरलकर और विद्या कुमारी, राजनीगंज बंगाल से रवि और इंदर ने इसी गीत की फरमाइश हमें की थी। एमएलबी रोड ग्वालियर से इस गीत को सुनना चाहा था सुरेश खुराना।

पप्पी, किरण खुराना, लव्या, आरव, मेघा, साक्षी, आशीष, अनुज, विशु, छोटू और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने वैष्णव कॉलोनी सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकामा खत्री, अल्तमाश खत्री, रमेश गौड़ और शादाब खत्री, यहीं से हैं बेगम सलमा खत्री, बेबी सुमैया, आयशा बी खत्री, सादिया बी खत्री, जिक्रा और इनके ढेर सारे साथी। जालना शहर से सोमनाथ जाधव, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन, एकनाथ और संगीता जाधव। नेहरू चौक पैठण से सुरेश जाधव, अनीता जाधव, आरती, पूजा, प्रसाद जाधव, सोनल जाधव, बेबी सिया जाधव और इनके ढेर सारे साथी। शाजीनगर देगलूर जिला नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे। इसी गीत की फरमाइश हमसे की थी बालोद छत्तीसगढ़ से देवशंकर तामुरिया, अजय देव तामुरिया, तुषार देव तामुरिया, पूजा तामुरिया, राधिका, प्रभा देवी और कबीर ने। दतरंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा ने। गीत निर्भर प्रोग्राम का अगला फरमाइशी नगमा है हमारे इन सभी दोस्तों की नज़र पटेल नगर मालौट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी जाजोरिया, गगनदीप जाजोरिया और आरजू जाजोरिया, यहीं से है गुड्डू। दमदम एयरपोर्ट कलकत्ता से बसंत कुमार सिन्हा, रेखा देवी सिन्हा, अजय कुमार गुप्ता, रिमी, तनुश्री। झुमरी तलैया से अभय कुमार सनातनी, शिवानी कुमारी, प्रियंका, रिया, जिया, आयुषी, टूशी, अनिरुद्ध, मुन्नी देवी, बसंतलाल, हीरा और इनके परिवार के सभी लोग। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा राय, अमित राय और हैप्पी राय। शेरपुर कला गाजीपुर से अवधेश राय, प्रीति राय और नवनीत राय। शाहूनगर यवतमाल से इस गीत को सुनना चाहा है राहुल मनवर, सरला मनवर, रोशनी मनवर, चेतन मनवर, विशाल और प्रियांशी ने। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है राज विराज नेपाल से श्याम कुमार हाकू, तारा देवी हाकू, राजन हाकू, कल्पना राय हाकू, सुमनिमा हाकू, पिंकी, खुशबू, श्रुति, पूर्णिमा और सनी हाकू ने। नांदेड़ महाराष्ट्र से हैं नारायण गायकवाड़, दयानंद गायकवाड़, ओमकार और साई गायकवाड़। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ में सरस्वती चंद्र फिल्म का ये खूबसूरत नगमा। नगमा निगार हैं इंदिवार, मौसिकार कल्याण जी, आनंद जी।

0: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगा कर भी दिए।
1: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4 से 5 घंटे का वक्त लगता है।
2: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट BIS.org.in पर शिकायत करें। जागो।
3: अपनी फरमाइश के फिल्मी नगमे इस वक्त आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। प्रोग्राम का नाम है गीत निर्झर, और गीत निर्झर प्रोग्राम के अगले फरमाइशी नगमे के मुंतजर हैं हमारे ये सभी श्रोता। जिला अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से हैं रिजवान खान, आयशा, सबीहा, अनस और रेहान। नंगलखेड़ा फगवाड़ा पंजाब से बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा और राजकुमार बोड़ाना। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा और इनके परिवार के सभी लोग। गांव नथाना पंजाब से हैं हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज घोरवाल, कमला रानी, गीतिका घोरवाल और भानु प्रकाश। इसी गीत को सुनना चाहा है गुमला झारखंड से SM जावेद, शगुफ्ता अंजुम और नजमुल होदा ने। करणवीर हाउस बठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर जोड़ा, करणवीर, करण, दीपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सिमू, एकम, दमन और अभिजोत। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है लाल माता सुदामा नगर रटलाई जिला झालावाड़ राजस्थान से हर्षिता, रामेश्वर, परमेश्वर, मीनाक्षी, मनोहर भाई बागरी, प्रभुलाल बागरी। यहीं से हैं मनभावन, नैना, सत्यनारायण, कपिल, शोभा, फुंदीबाई बागरी और इनके घर के सभी लोग। मुतला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, आरती गौरी और ओम कुमार सुरलकर। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हमने शामिल किया है SP बाला सुब्रमण्यम की आवाज़ में मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा। नगमा निगार हैं असद भोपाली, मौसिकार हैं राम लक्ष्मण।

एसपी बाला सुब्रमण्यम से अभी आप सुन रहे थे मैंने प्यार किया फिल्म का ये नगमा। इसी नगमे की फरमाइश हमसे की थी लाला बाजार अल्मोड़ा उत्तराखंड से बाबा फरहान खुशबू संजू सामिया आफिया मुमताज अमान माही नीलोफर शब्बू और शन्नू ने। भोपालगढ़ राजस्थान से इस गीत को सुनना चाहा था धर्मेंद्र छिम्पा कपिल छिम्पा ईशान छिम्पा और पूजा परिहार ने। आदर्श नगर भटिंडा से अशोक ग्रोवर प्रवीण ग्रोवर नीति ग्रोवर पवनीत ग्रोवर और विक्रमजीत ग्रोवर ने। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक विमला देवी अमरजीत खटक सुंदरलाल खटक योगेश कुमार दीपक कुमार और पूजा खटक ने।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: गीत नजर प्रोग्राम का अगला फरमाइशी नगमा हमारे इन सभी दोस्तों की नजर। जबलपुर मध्य प्रदेश से अशोक सिंह, सुनीता सिंह, गुड़िया और वेदा सिंह। इसी नगमे को सुनना चाहा है जिला उज्जैन बोरखेड़ा पित्रामल से विनोद मूरत, नेहा जैन, दीपक मयंक मूरत, चेतन नाहटा, दीक्षा और कुश मूरत ने। सादुल शहर राजस्थान

श्री राम कुमार रिबाड़ और चंद्रकला रिबाड़ ने जवाहर नगर उदयपुर से, बाबू भाई और भारती देवी ने गांव फ्रांसी हिसार से हैं राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार डूडी और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, कस्बा गुन्नौर से फारूक अली खान, फैजी फरहान, फराज फरहीन फारिया और ताहिरा ने, बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशन देवांगन, हेमलता देवांगन और डिम्पल देवांगन ने, भूत चौराहा बुलंदशहर से हैं पंकज सिंह, चंचल सिंह, रशिका सिंह, आकृति और वंशराज। इसी गीत की फरमाइश हमसे की है ऊपरकोट मोहल्ला चौखुनटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन अब्बासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान और अबान अब्बासी ने, दीवाना रेडियो लिसनर्स क्लब जमानिया गाजीपुर यूपी से हैं सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, गमहरिया जमशेदपुर से विपिन जायसवाल, स्वाति, देव कुमार जायसवाल और आर्य कुमार जायसवाल, हयात कॉलोनी अररिया बिहार से फैजल इमाम, मोहम्मद अफजल, मोहम्मद अकमल और नफीसा प्रवीण। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं हसरत जयपुरी का लिखा गीत। संगीत है सचिन देव बर्मन का, आवाजें हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की। फिल्म का नाम है तेरे घर के सामने।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर से अभी आप सुन रहे थे तेरे घर के सामने फिल्म का नगमा। गीत निजे प्रोग्राम में अब हम शामिल कर रहे हैं ओपी नैयर के संगीत निर्देशन में बजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत। आवाज है गीता दत्त की, फिल्म का नाम है 12 o'clock। इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं मित्रनगर बीड शहर से विकास बंसोड़े, रेखा बंसोड़े, अदिति और वैभव शिंदे, हिल स्टेशन खंडाला से हैं आकाश सरोदे और प्रिया सरोदे, टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर और स्वीटी छाबड़ा, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खंडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानो, छोटू पवार, शंकरलाल गंगराड़े, वनिता गंगराड़े और हसनैन पवार, रजौनी जिला महोबा बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से हैं उदयभान पाल, जयहिंद पाल, दीक्षा प्रतीक्षा, विमलेश, दिव्यांश और इनके ढेर सारे साथी, बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से बलकरण वर्मा, अंजनी, नीरा वर्मा, ज्योति और प्रहलाद वर्मा, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी, पाकुड़ झारखंड से हैं उत्तम कुमार भगत, श्वेता भगत, कीसू, तासू, अर्णव आनंद और सत्यम आनंद। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर आइए सुनते हैं गीता दत्त की आवाज़ में 12 o'clock फिल्म का ये नगमा।

नीता दत्त से अभी आप सुन रहे थे 12 o'clock फिल्म का ये नगमा। गीत निर्देशन प्रोग्राम में लीजा पेश है सचिन देव बर्मन के संगीत निर्देशन में मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत, आवाज़ है लता मंगेशकर की, फिल्म का नाम है अभिमान और इस नगमे के ख्वाहिशमंद हैं तेलंगाना निज़ामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, दानिश आसिफ शेख, लगान पंडरिया छत्तीसगढ़ से हैं उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी साहिल और भारती बघेल, गोवर्धन बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से तुलसी मस्किन, वीना मस्किन, आशीष राजा, चैतन्य मस्किन, मेघा मस्किन, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना, केशु और रिधान खुराना, जैन मंदिर वाली गली कुरावली से हैं राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन नौरीन, आसना और मोहम्मद कैफ अंसारी, कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा, सिटी दीवाना, पंखा रोड जनकपुरी से पिंटू दीवाना, राजिंदर सिंह ओब्रॉय और इनके ढेर सारे साथी, जलालाबाद वेस्ट से हैं सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल

प्रिया दिशानी और निमिता हुजा, फर्रुखाबाद साहबगंज चौराहा यूपी से सुरेश चौरसिया, सरोज चौरसिया, सरिता सुजाता चौरसिया, सुबोध सलोनी चौरसिया, संजू बाबू शिवा शिवानी और योगेंद्र नायक, मोहल्ला बारादरी महमूद खां रामपुर से हैं, भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली, नगमा नाज मंसूरी, जिला नांदेड़ यताला से शंकरलाल जायसवाल, गणेश लाल, शुभम प्रसाद और दुर्गेश्वरी। आइए इन सभी की फरमाइश पर सुनते हैं अभिमान फिल्म का ये नगमा।

अभिमान फिल्म के इसी नगमे को सुनना चाहा था। खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्म मल्होत्रा, कोयल मल्होत्रा और नानक चंद मल्होत्रा ने, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू और भावेश सिक्का ने, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष योगी, पप्पू और टप्पू ने, जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन सिद्दीकी, नाजमा बेगम सिद्दीकी, रियाज रेफाकत, मोहम्मद रेहान, समरीन परवीन और माहिरा नूर ने। ये नगमा है थोड़ी सी बेवफाई फिल्म से, आवाज़ें लता मंगेशकर और किशोर कुमार की, नगमा निगार गुलजार, मौसिकार खयाम।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार से थोड़ी सी बेवफाई फिल्म का ये नगमा अभी आप सुन रहे थे। इस नगमे को सुनना चाहते थे कलानौर से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा। इसी नगमे की ख्वाहिश हमसे की थी बंगाली पंजा नागपुर से प्रकाश रंभाड़े, भारतीय

रंबाड़े, जानवी रंबाड़े यहीं से हैं, हर्षल रंबाड़े और वैष्णवी रंबाड़े, झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीता भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया ने, छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी प्रिंस वर्मा ने। गीत मिजर प्रोग्राम का अगला नगमा हमारे इन सभी दोस्तों की नज़र, सल्लार पहलगाम कश्मीर से पीरजादा मेराजुद्दीन और नजमुद्दीन और कैसरुद्दीन, छोटी बलिया करजत से अहमद भाई फूलवाले, जूहे इकबाल, आसमान नसरीन बागवान, राबिया और इनके ढेर सारे साथी, परी महल कासगंज से हैं आबाद खान, नबील खान, आरफा, इल्मा, असलम सैफी, मास्टर शाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से आफरीन खान और जमीर खान, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नुहाकर, निर्मला नुहाकर, विशाल और सोपान ताइडे, मलकापुर से हैं नारायण इंगले, राजकुमार खर्चे और आशीष, फ्रेंड्स कॉलोनी करनाल से हैं गुरविंदर सिंह पांधा, इंद्रजीत कौर, बेबी मनमीत, मनविंदर सिंह पांधा, बलविंदर, चंडीगढ़ से यश कुमार वर्मा, सहरसा बिहार से हैं राधे कुमार विद्यार्थी, सविता राधे, राकेश रंजन, राजीव, संजय, ओम कुमार, गुंजेश कुमार, रिया रानी, कुमकुम, साक्षी, अच्छेलाल, बुल्कीवाली और फलना झा। अनारकली बाजार जगराओं से हैं सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गविया मल्होत्रा, सुच्चा पाठक, विनोद पुरिया और इनके ढेर सारे साथी। शास्त्री नगर बीड शहर से हैं किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया, साईराज और विशाल। अमरावती से प्रशांत ढेकरे, वर्षा ढेकरे और श्रद्धा ढेकरे। सब्जी मंडी बुल्डाणा से शब्बीर हुसैन, शहदाद हुसैन, बुच्चू बाबा, ऐजानम और मुदस्सिर हुसैन। अपने इन सभी श्रोताओं की फरमाइश पर इस वक्त प्रोग्राम में हम शामिल कर रहे हैं मैं चुप रहूंगी फिल्म का ये नगमा, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज है। मोहली पंजाब से इस गीत को सुनना चाहा है बबल मल्होत्रा और ओम प्रकाश मल्होत्रा ने। भाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी, अर्चना जोशी, हरमिंदर सिंह चावला, बानी चावला, लोकेश जोशी, पायल जोशी, वैधे जोशी, हंसिका जोशी, अंकिता जोशी और जयवंती केवट ने।

को सुनना चाहा है मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नावेद हसन, रसीद बारसी, सुहेल हसन, अनम अब्बासी, अशफ अब्बासी, सिकंदरा राव से मुनीब अब्बासी और इशरत परवीन ने, कैथल हरियाणा से जयवीर सिंह ठाकुर, अनिल शर्मा, मोहाली से हैं टीडी मल्होत्रा, शुभचंद्र बजाज और कालका, इंदौर मध्य प्रदेश से नारायण खर्चे, ललिता खर्चे, गणेश खर्चे, कार्तिक खर्चे और परी खर्चे, यहीं से स्वाति, प्रयाग चौधरी और इनके ढेर सारे साथी। आइए इन सबकी फरमाइश पर सुनते हैं मुस्कुराहट फिल्म का ये नगमा। इस गीत को सुनना चाहा है चंडीगढ़ से सतीश अनेजा और विमला अनेजा ने।

कुमार सानू और साधना सरगम से मुस्कुराहट फिल्म का यह खूबसूरत नगमा भी आपने सुना। गीत मुझे प्रोग्राम के आखिर में लीजिए पेश है बंजारन फिल्म का नगमा लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में। इस नगमे को सुनने के ख्वाहिशमंद हैं पंडरपुर सिटी रोहित दास चौक से प्रशांत शिंदे, सुनीता शिंदे, यशराज ऋषि और कृष्णा घोड़के, रघुनाथपुरा राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हिना, हर्षित और खुशी, महाराणा प्रताप कॉलोनी उदयपुर से ही रमेश नचानी, भारती, विनीत मैथिली और प्रगति नचानी।

0: लता मंगेशकर और मुकेश से अभी आप सुन रहे थे बंजारन फिल्म का नगमा। इसी नगमे के साथ आज के फरमाइशी फिल्मी नगमों के प्रोग्राम गीत नजर से अपनी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को दीजिए इजाजत। कल चंद फरमाइशी फिल्मी नगमों के साथ आपसे फिर से इसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। प्रातः के 10 बजने वाले हैं। कुछ क्षणों में समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किए जाएंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस के साथ वार्ता करेंगे। दोनों नेताओं के बीच ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, औषधि, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन तथा नवीकरणीय ऊर्जा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेस कल भारत की 5 दिवसीय यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी है। वो इससे पहले 2015 में विदेश मंत्री और 2019, 2023, 2024 तथा 25 में उपराष्ट्रपति के रूप में भारत का दौरा कर चुकी हैं। वेनेजुएला का प्रतिनिधि मंडल भारत के ऊर्जा, औषधि और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई प्रतिष्ठानों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं को समझना तथा सहयोग की नई संभावनाओं की तलाश करना है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि भारत और अमेरिका लंबे समय से प्रस्तावित व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के बेहद करीब हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच ये समझौता अगले कुछ सप्ताह में पूरा हो सकता है। अमेरिकी संसद की विदेश मामलों की समिति के समक्ष सुनवाई के दौरान रूबियो ने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका का महत्वपूर्ण रणनीतिक साझेदार बताया। उन्होंने कहा कि हाल ही में भारत यात्रा के दौरान क्वाड देशों भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों के साथ भी चर्चा हुई। रूबियो ने कहा कि क्वाड देश अब केवल बातचीत तक सीमित नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सहयोग सहित कई ठोस परियोजनाओं पर मिलकर काम कर रहे हैं।
2: सहयोग के जिन क्षेत्रों पर हम मिलकर काम कर रहे हैं वे हाल ही में दुनिया भर में हुई घटनाओं के कारण और भी अधिक प्रासंगिक और महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए आज मुझे लगता है कि हम उन क्षेत्रों में अपने संबंधों को क्रियान्वित करने में और भी अधिक प्रगति करेंगे जिन पर हम सहयोग कर सकते हैं। क्वाड के बारे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि हम साझा हितों के क्षेत्रों में विचारों का आदान प्रदान करने के लिए एक साथ आते हैं। क्वाड तेजी से एक ऐसा मंच बनता जा रहा है जिसके माध्यम से हम कार्यवाही कर सकते हैं।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। दो दिन तक चलने वाली इस बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गृहमंत्री अमित शाह आज मेघालय के शिलांग में उत्तर पूर्वी परिषद के 73वें पूर्ण सत्र की अध्यक्षता करेंगे। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। इसके साथ ही पूर्वोत्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए तैयार किए जा रहे नॉर्थ ईस्ट विजन प्लान 2047 पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग से 3 लोगों की मौत हो गई, कई अन्य घायल हुए। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। कई मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है और उन्हें उपचार के लिए अन्य अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। आग का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जाँच जारी है।
3: आईसीयू 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है। शॉर्ट सर्किट से कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, बाकी 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है। बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
1: नई दिल्ली के मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक शामिल हैं। दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए हैं। प्रथम विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि योग दुनिया भर में तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। भारत ने सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है। गोवा के मडगांव में कल भारतीय महिला फुटबॉल टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची। 5 बार के विजेता भारत का मुकाबला फाइनल में शनिवार को मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश से होगा। भारतीय समय अनुसार शाम 6:30 बजे से ये मैच खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। प्रातः के 10:05 हुए हैं। डिजिपेश है प्रोग्राम सब रंग। सब रंग प्रोग्राम का आगाज हम कर रहे हैं आबिदा परवीन के गाए इस नगमे के साथ।

सब रंग प्रोग्राम का आगाज़ हमने किया था आबिदा परवीन और साथियों के गाए इस खूबसूरत नगमे के साथ।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: बदलो बदलो आदत बदलो।
4: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
3: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: सब रंग प्रोग्राम में स्वागत। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। इस प्रोग्राम में ये जो पेश है मुन्नी बेगम की आवाज में ये नज़्म

सबरंग प्रोग्राम में सकता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। प्रोग्राम में लीजिए पेश है साबिर दत्त का कलाम। फनकार हैं जगजीत सिंह।

ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप योशिता पांडे से प्रादेशिक समाचार सुनिए। दून पुलिस ने आज सुबह राजस्थान के दो बदमाशों को नया गांव क्षेत्र में चेकिंग के दौरान पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। एक बदमाश के पैर पर गोली लगी है। नाकेबंदी और सघन चेकिंग के दौरान नया गांव चौकी बैरियर पर कार में सवार बदमाशों द्वारा बैरियर पर टक्कर मारकर सेलाकुई की तरफ भागने पर पुलिस टीम द्वारा पीछा किया गया। बदमाश कार से चांदनी चौक से भूरपुर की तरफ भागे। रामगढ़ के रपटे में गाड़ी छोड़कर नदी की तरफ भागते हुए बदमाशों द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए स्वास्थ्य सचिव विनय शंकर पांडे द्वारा प्रदेश के विभिन्न जनपदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारियों की तैनाती की गई है। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण, चिकित्सा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार और आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियुक्तियां की गई हैं। देहरादून में ऑपरेशन प्रहार के तहत थाना राजपुर पुलिस ने हाई प्रोफाइल ड्रग्स सप्लाई नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई करते हुए कोबरा गैंग से जुड़े दो विदेशी नागरिकों समेत तीन नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से करीब 20 ग्राम अवैध कोकीन बरामद की है, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 20 लाख रुपये आंकी गई है। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए हैं। पुलिस पूछताछ में विदेशी आरोपियों ने खुद को कोबरा गैंग का सक्रिय सदस्य बताया। केंद्र सरकार ने घेरबाड़ योजना के लिए घोषित 90 करोड़ रुपए की राशि में से प्रथम किश्त के रूप में 25 करोड़ रुपए राज्य सरकार को जारी कर दिए हैं। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने देहरादून में आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को उपलब्ध बजट का 100% उपयोग सुनिश्चित करते हुए अधिक से अधिक किसानों को योजना का लाभ पहुंचाने के निर्देश दिए। युवा मामले और खेल मंत्रालय के युवा मामलों के विभाग ने मेरा युवा भारत के माध्यम से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2026 के प्रथम चरण का शुभारंभ किया है। यह एक अग्रणी युवा नेतृत्व वाली पहल है, जिसका उद्देश्य जमीनी स्तर पर जन भागीदारी को सुदृढ़ करना, राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना तथा देश के सीमावर्ती गांवों में सतत विकास को प्रोत्साहित करना है। इसके लिए देश भर में 500 स्वयंसेवकों का चयन किया गया है। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करने वाले इन स्वयंसेवकों को उत्तराखंड, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के चिन्हित सीमावर्ती गांवों में दो चरणों में तैनात किया जा रहा है।

0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के प्रस्तावित दो दिवसीय उत्तराखंड दौरे को लेकर देहरादून जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार राष्ट्रपति 12 जून को देहरादून स्थित राष्ट्रपति निकेतन पहुंचेंगे तथा 13 जून को भारतीय सैन्य अकादमी IMA में आयोजित एक कार्यक्रम में प्रतिभाग करेंगी। जिलाधिकारी डॉ आशीष चौहान ने राष्ट्रपति के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सुरक्षा, यातायात, आवास तथा अन्य सभी व्यवस्थाओं को त्रुटि रहित और चाक चौबंद बनाए रखने के निर्देश दिए। देहरादून में अड़त बाजार पुनर्विकास परियोजना को अब नई गति मिलने जा रही है। राजधानी के प्रमुख शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में शामिल इस महत्वाकांक्षी योजना के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए MDDA ने रणनीति तैयार की है। कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने पौड़ी जिले के पठाणी, पाबो और खिरसू क्षेत्र के विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और अन्य आधारभूत सुविधाओं का विस्तार ग्रामीण विकास की आधारशिला है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 1:05 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR ऐप पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार। श्रोताओं, आज का सुरबहार आधारित होता है शीर्षक गीतों पर। आज का सुरबहार कार्यक्रम लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी। आप सभी का प्रोग्राम में बेहद स्वागत, साथ ही कीजिए स्वीकार मेरा प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, आज का सुरबहार केंद्रित होता है शीर्षक गीतों पर और हमारा आज का शीर्षक है गांव। श्रोताओं, चित्तौर का प्रसिद्ध गीत गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा हिंदी सिनेमा के सबसे मधुर और लोकप्रिय ग्रामीण गीतों में गिना जाता है। ये गीत गांव की सादगी, प्राकृतिक सुंदरता और प्रेम की भावना को अत्यंत सुंदर ढंग से प्रस्तुत करता है। इस गीत को स्वर सम्राट KG येसुदास ने अपनी मधुर आवाज में गाया, जबकि संगीत रविंद्र जैन ने दिया था। गीत के बोल भी रविंद्र जैन के हैं। और श्रोताओं, इस गीत की बेहद ही खूबसूरत विशेषता ये है कि इस गीत की जो पंक्ति है, गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा मैं तो गया मारा, ये पंक्ति सुनते ही गांव की हरियाली, मिट्टी की खुशबू और भोलेपन से भरा वातावरण आंखों के सामने उभर कर आता है। गीत में गांव को केवल भौगोलिक स्थान नहीं बल्कि प्रेम और अपनत्व की संसार के रूप में चित्रित किया गया है। आइए लुत्फ उठाते हैं इस खूबसूरत गीत का।

श्रोताओं, संगीतकार शंकर जयकिशन ने प्रोफेसर फिल्म के लिए गांव के परिवेश से भरपूर एक गीत बनाया। तब उन्होंने भी अपने गीत संगीत के साथ गांव की रची बसी सुंदरता उस गीत में उड़ेल दी। गीत की भाषा सरल और मधुर, इसमें लोकगीत जैसी आत्मीयता सीधे श्रोताओं के हृदय को छू जाता है। इस गीत में गांव की प्राकृतिक सुंदरता का अत्यंत मनोहारी वर्णन मिलता है। खेत, पगडंडियां, पेड़ पौधे और शांत वातावरण प्रेम की भावनाओं को और भी गहरा बना देते हैं। ये गीत संदेश देता है कि सच्ची खुशी और प्रेम शहरों की चकाचौंध में नहीं, बल्कि गांव की सरलता और सच्चाई में है।

श्रोताओं, पुराने हिंदी फिल्मों में गांव को सरसता, भाईचारे और नैतिक मूल्यों के केंद्र के रूप में दिखाया गया है। गांव की मिट्टी, खेत, तालाब, चौपाल और लोकगीत फिल्मों की आत्मा बन जाते थे। श्रोताओं, वो गांव की मिट्टी ही है, उसकी भीनी भीनी सुगंध ही होती है, वो गांव की ताज़ा पवन ही होती है, वो गांव के लहलहाते पेड़ और खेत खलिहान ही होते हैं, वो बहती नदियाँ ही होती हैं जो किसी परदेश में रहने वाले को गांव की तरफ खींच कर ले आते हैं।

श्रोताओं, संगीतकार रविंद्र जैन ने हमेशा अपने संगीत में पहाड़ों की सुंदरता को दर्शाते गीत बनाए हैं। ये गीत गांव की आत्मा होती हैं। इन गीतों में रविंद्र जैन साहब ने पहाड़ी धुन और पहाड़ी रागों को कुछ ऐसे पिरोया कि वो गीत सीधे हमारे दिल में उतर गए और बरबस ही हम उन गीतों को गुनगुनाने लगते हैं। एक ऐसा ही गीत रविंद्र जैन साहब के संगीत निर्देशन से सजा ससुराल फिल्म से आइए सुनते हैं।

श्रोताओं, हिंदी फिल्मों में गांव केवल सुंदर दृश्य नहीं बल्कि सामाजिक समस्याओं का दर्पण भी है। और आज की यानी कि आधुनिक फिल्मों में भी गांव का चित्रण नहीं बदला है। गांव आधारित फिल्मों में परिवार, रिश्ते और मानवीय संवेदनाएं विशेष रूप से दिखाई देती हैं। श्रोताओं, एक गांव ही है जो हमारे परिवार को, हमारे समाज को आज तक जोड़े रखे है।

श्रोताओं, आज का सुरबहार केंद्रित था गांव शीर्षक पर। अब आज के सुरबहार प्रोग्राम से दीजिए अपने रेडियो दोस्त रेखा सिलोरी को इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरबहार, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

महेंद्र कपूर और साथियों की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे उपकार फिल्म का गीत। गीत गुलशन बावरा का था और इस गीत को सुरों में पिरोया था कल्याण जी आनंद जी ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में अलका याग्निक, कुमार सानू और साथियों का गाया, समीर का लिखा आ अब लौट चलें फिल्म का गीत। गीत को सुरों में पिरोया है नदीम शवन ने।

0: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान, जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: इस अंतराल के बाद

आइए अब आपको सुनवाते हैं फौजी भाइयों सोनू निगम श्रेया घोषाल का गाया आजा ना चले फिल्म का गीत। गीत लिखा है जयदीप सहानी ने और इस गीत को सुरों में पिरोया है सलीम सुलेमान ने।

आज और नचले, अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत। फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम श्रोताओं इस समय आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से। आइए अब आपको सुनवाते हैं उदित नारायण, शब्बीर कुमार, सारिका कपूर और उज्ज्वला की आवाजों में

सैनिक भाइयों, आन फिल्म के इस गीत के बाद आइए अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का गाया स्वानंद किरकिरे का लिखा रोबोट फिल्म का गीत। इस गीत को सुरों में पिरोया है AR रहमान ने।

मोहित चौहान और श्रेया घोषाल के गाए रोबोट फिल्म के इसी गीत के साथ श्रोताओं आवाज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए यहीं पर संपन्न होता है। कल फिर से इसी कार्यक्रम में आपके लिए हाजिर होंगे कुछ और गीतों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।

अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम सैनिकों के लिए। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी गढ़वाली जौनसारी लोकगीतों का कार्यक्रम लोकसुर।

लोक सुर कार्यक्रम के आरंभ में अभी आप सुन रहे थे प्रदीप कुमार का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत। आइए अब आपको सुनवाते हैं नरेंद्र सिंह नेगी का गाया ये गढ़वाली लोकगीत।

0: एक निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: इस अंतराल के बाद आइए अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम में एक बार फिर से नरेंद्र सिंह नेगी के स्वर में ये गढ़वाली लोकगीत।

नरेंद्र सिंह नेगी की गाय इस गढ़वाली लोकगीत के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आप सभी को सुनवाते हैं एक और गढ़वाली लोकगीत बेनी माधव रतूड़ी की आवाज़ में।

बेनी माधव रतूड़ी के गाए इसी लोकगीत के साथ अब आज का हमारा लोकसुर कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और

प्रसार भारती ऐप, न्यूज़ ऑन AIR पर यह आकाशवाणी का अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 12 बजे हैं। लीजिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद।

स्वागत है श्रोताओं आज के फिल्म संगीत के इस कार्यक्रम मेरी पसंद में। मैं हूं आपकी दोस्त कविता। सभी श्रोताओं को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मनोरंजन भरे सफर में दोस्तों आज एक ऐसे कलाकार के जीवन के कुछ पन्ने हम पलट रहे हैं जिन्होंने न केवल हिंदी सिनेमा में अपना नाम कमाया, ऊंचाइयों पर पहुंचे, बल्कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम सिनेमा में भी अपना परचम लहराया। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं भारतीय सिनेमा को कई यादगार गीतों से नवाजने वाले मशहूर प्रसिद्ध गायक कलाकार संगीतकार एस पी बाला सुब्रमण्यम की, जिनकी आज है जयंती। दोस्तों आज के दिन वर्ष 1946 में आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले के एक छोटे से गांव में जन्मे एस पी बाला सुब्रमण्यम को हिंदी सिनेमा के महान गायकों में से एक माना जाता है। तो चलिए आज का मेरी पसंद कार्यक्रम समर्पित इस महान कलाकार को, जिसने गीतों की एक ऐसी स्वर लहरियां हम तक पहुंचाई जो आज भी सीने में बिल्कुल दबी हुई सी ना कहकर उकेरी हुई सी कह सकते हैं। कार्यक्रम में सुनते हैं सबसे पहले इनकी फिल्म साजन का गीत।

200 एसपी बाला सुब्रमण्यम ने 16 भाषाओं में 40,000 से ज्यादा गाने गाए, मगर वो खुद मोहम्मद रफ़ी की फ़ैन थी। मोहम्मद रफ़ी के लिए उनकी दीवानगी इस हद तक थी कि कई अपने इंटरव्यू में उन्होंने इस बात का जिक्र किया था। बाला सुब्रमण्यम की कम उम्र में ही संगीत में रुचि पैदा हो गई थी। पिता एसपी सांबा मूर्ति एक कलाकार थे जिन्होंने कई नाटकों में अभिनय किया, इसलिए कला संगीत से एसपी बाला साहब कभी भी अछूते नहीं रहे। कई सिंगिंग कंपटीशन में जीतने के बाद मौके तलाशते तलाशते आखिरकार 15 दिसंबर 1966 को उन्हें तेलुगु फिल्म श्री श्री मर्यादा रमन्ना से बतौर सिंगर अपने करियर की शुरुआत करने का मौका मिला और हिंदी सिनेमा में उन्हें फिल्म एक दूजे के लिए के गानों से अपार सफलता मिली पहली ही बार में। तो आइए सुनते हैं उनकी इसी फिल्म के गीत।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: श्रोता, 90 के दशक में एसपी बालासुब्रमण्यम ने सलमान खान की हिट फिल्मों जैसे मैंने प्यार किया और हम आपके हैं कौन के लिए कई सदाबहार गीत गाए और लोग उन्हें सलमान की आवाज़ कहकर भी पुकारने लगे। दोस्तों, तेलुगु सिनेमा में इन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा 25 बार पुरस्कार जीता है। ये कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। भारत सरकार ने इन्हें साल 2001 में पद्मश्री और पद्म भूषण से भी सम्मानित किया है। 2011 में इन्होंने 6 बार राष्ट्रीय पुरस्कार भी अपने नाम किए हैं। आइए अब

दोस्तों, एसपी बाला सुब्रमण्यम ने हिंदी तेलुगु सिनेमा में बेहतरीन और उच्च स्थान पाने वाला ऐसा काम किया कि लोग आज भी उनके गीतों को बड़ी ताजगी के साथ और सुकून के साथ सुनते हैं। एक दूजे के लिए मैंने प्यार किया, साजन, पत्थर के फूल, हम आपके हैं कौन, रोजा जैसी कई फिल्मों में एसपी बाला सुब्रमण्यम ने अपनी आवाज़ दी। और एसपी साहब ने कन्नड़ कंपोज़र उपेंद्र कुमार के लिए दोस्तों 12 घंटों में 21 गाने गाए थे। इसी वजह से उनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल है। दोस्तों, कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाने के कारण एसपी बाला सुब्रमण्यम की मृत्यु 25 सितंबर 2020 को चेन्नई में हुई। एसपी बाला सुब्रमण्यम की मौत ने पूरी सांस्कृतिक दुनिया को झकझोर कर रख दिया। वो पूरे भारत में घर घर में पहचाना जाने वाला नाम बन गए थे। उनकी मधुर आवाज़ और संगीत ने दर्शकों तक मंत्रमुग्ध करने वाला एक ऐसा सफ़र तय किया कि उनके आज भी चाहने वालों की कमी नहीं है। आइए सुनते हैं उनकी सुपरहिट मूवी हम आपके हैं कौन का ये प्यारा सा गीत, जिसे शायद ही कोई भूल सकता है।

इसी गीत के साथ श्रोताओं आवाज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद यहीं पर संपन्न होता है। अभी आप सुन रही थी फिल्म संगीत का कार्यक्रम मेरी पसंद FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर। हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अब महिलाएं सुने अपना कार्यक्रम अर्पण।

0: ए पण कार्यक्रम सुनने सबा रेडियो दगड़ियों को मैं मंजू बोरा प्यार भरी नमस्कार स्वागत छु दगड़ियों अबू सब जानिया अपन मन पसंद कार्यक्रम ए पण आजक अंक में दगड़ियों दिन महन बार आते रोनी जाते रोनी कोई कोई दिन कोई कोई पल बड़ी यादगार होनी मीठी मीठी याद दी जानी और कोई कोई दिन या सुनी जो दुख दी जानी दुख याद देवनी कभी कभी कोई विशेष राष्ट्रीय दिवस या फिर अंतर्राष्ट्रीय दिवस उन्हें जनरल बार में हमको जानकारी होन जरूरी छे जस की आज आज छो 4 जून आज मनाई जा आक्रमकता शिकार निर्दोष नंदेनो अंतर्राष्ट्रीय दिवस और यह दिनक मुख्य उद्देश्य छो कि दुनिया भर में शारीरिक मानसिक और भावनात्मक शोषण शिकार होने वाले बच्चों दुख दर्द और पीड़ा का समझन और उन्हें रक्षा प्रति प्रतिबद्ध होने पुष्टि के लिए यदि एक पृष्ठभूमि में बात करो दगड़ियों कि यह दिवस की शुरुआत कैसे है उन्हें कब है तो यह एक शुरुआत है 1982 लेबनान युद्ध दौरान पीड़ित ही फिलिस्तीनी और लेबनानी बच्चों स्थिति पर प्रतिक्रिया के रूप में बाद में यह दायरा बढ़े विश्व स्तर पर हिंसा और दुर्व्यवहार का शिकार होने वाले सब नानतेनों को इसमें शामिल करेगा दगड़ियों आक्रमकता शिकार निर्दोष नानतेनों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनोनक और जागरूकता फैलाने यह उद्देश्य छो कि यह सशस्त्र संघर्ष में नानतेनों को सुरक्षा प्रदान करेगी नानतेनों के खिलाफ गंभीर अपराधों को समाप्त करेगी और नानतेनों की सुरक्षा लीजिए संघर्षों जो मूल कारण छे उन्हें समाधान करेजो अपराधों प्रति जवाबदेही सुनिश्चित करेजो जैक लीजिए बाल संरक्षण पुनर्वास और पुनर एकीकरण प्रयासों में निवेश करण अति आवश्यक जो ये जरूर है सको दगड़ियों हम कुल अपन सहयोग प्रदान करण छे कि सब नंदिन आगे बढ़ो और उन्हर भल भविष्य हो गए दगड़े तो बात है आज एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है आप कार्यक्रम में आगे बढ़ो और सुनो यह संदेश
1: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए हैं
2: अरे बुद्धू हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है
3: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें जागो ग्राहक जागो
0: दगड़ियों ऐपण कार्यक्रम में हम जब ले बात करनू तो विशेषकर हमारे चर्चा के विषय रू ग्रामीण दिद बैणिया के आगिल बढ़ोन के संबंध में या उनर नानतेनु के लीजिए कसी वो आगिल बढ़ो नानतेनु को कसी प्रेरित करो कभी हमारे कार्यक्रम चू की ऐपण माध्यम हम अपन ग्रामीण दिद बैणिया के आगिल बढ़ोन के बात करनू तो यही विषय के लिए भेर आज हम करी एक क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय छू आत्मनिर्भरता और सशक्त बढ़ने वाल हमारे ग्रामीण महिला ये विषय में हमारे जगह बातचीत करने लग रही बालाजी स्वयं सहायता समूह कोषाध्यक्ष श्रीमती मुन्नी रावत जी सबसे पहले तो आपको स्वागत छू हमारे कार्यक्रम अपनक आजक अंक में नमस्कार
4: नमस्कार
0: जी जिसके हम बात करने लग रहे हो कि हमारे ग्रामीण महिलाओं को कसी आगे बढ़ाई जो कभीर और हमेशा हम अपने कार्यक्रम में यही बात के लिए भी चर्चा करते रहो और आज अब दगल है हमारे यही विषय में चर्चा होने की जहाँ आज समाज निरंतर आगे बढ़ने लग रहा महिला कहाँ बटी कहाँ पूछ गई पहली बटी जो महिला चार दीवारी में रुचि आज उन चार दीवारी के नांग भेर समाज में अपन बहुत नाम कमरो जो काम को पुरुष कर छी उई काम का आज महिला ला करन लाग रहे और पुरुषक दगा कंध बटी कंध मिलावे एक महिला आज अकेल बनन लाग रहे यस में अब हमको यह बताओ कि बालाजी स्वयं सहायता समूह एक अंतर्गत के काम हूँ और अब यह समूह में कदिन बटी जुड़ा छा
4: बालाजी स्वयं सहायता समूह में मैं 2006 में जुड़ी हुई छन 21 साल 22 साल समूह के हैगी तो हम लोग आपस में जो लेन देन हूँ जो ले हम जम करनु 100-200-500 रुपए हिसाबल पूर करनो जैग स्थिति जैसे हिसाबल यो जम करनी और यह के उन पे हम जैसे ककटी कोई महिला आपु रोजगार चलू ना लीजी गोरु जरूरत पड़े और वो तो दूध बेच भी अपन आजीविका चले और वैसे कई लोग अपन नंतीना पढ़ाई लीजी लोन लेनी ताकि वो फीस भरनी कोर्स करूनी यह लीजी छोटे छोटे काम जब हम करूनो और कुछ अन्य काम बहुत चीज बीच में करी हम एक बार जूस बढ़ा महिलाओं अपन बुरा सा जूस बदी एक अपू रोजगार तय करनी और छोट समूह बड़े बे कई आज तक मैं जोला कार्य करी 2005 बेटी में यो काम पे लाग रही तो आज तक ले मैं कम से कम 20-21 समूह गठित करी उम्र के हजार की महिलाओं को यही है

0: तू पैसा जम करो और उदुग तक सीमित रहो, उनको उन रोजगार लीजिए, उनको समाज में कसी अघी लाओ, कसी आपू रोजगार साधन जोड़ो और कसी आपू आत्मनिर्भर बढ़ो, यह लीजिए ला हम ये समूह माध्यम पर उनको कदू काम करो नो। तो जैसे बिनाई है गए, सिलाई है गए, ऐपण छोट छोट चीज बड़े भी बाजार में हम उनको दिलो नो, मसाला काम है गए, तो छोट छोट कामों बदी हमू लिए संगठन बढ़ाई और बहुत सी महिलाएं हम देखे जुड़ी रही और यही काम मेर रहो आज तक। यो मैं यश हूँ की महिलाएं जो हम देखे जुड़ी हुई महिलाएं छे वो अगिल अबे बैंक का कामों को जाननी, कसी हमको पैसे जम करण छे और कसी ये एक लेन देन हूँ बैंक तक जाने लीजिए के हूँ, जो बैंक में जाने लीजिए बुलाण में डरनी, तो यो बात वो खुल बे बात करनी। आज मगे सन 2006 बटी 21 जो दौर ये बीच में रहो, तो इदू परिवर्तन छू की आज महिलाएं खुद को नहीं यार हम समूह बढ़ाओ दीदी और हमू लिए काम करो छू और ये रोजगार होना छो, तो ये कराओ हम हूँ। पहली भी यह सोची की जब मैं समूह बढ़ू ना बात कैची तो कोई कुछ मेरे पास डबल नहीं छे और कोई कुछ यार मगर टाइम नहीं छो। आज और उ दौर में बहुत परिवर्तन है और महिलाएं बहुत अगिल उन भेगी, यही जो संतुष्टि मिगे मिले कि मैं महिलाओं को यहाँ तक ले आई, उन्होंने मेरे साथ दे और मैं उन्हें साथ दे, यह दुए बीच कड़ी को जोड़ना काम मैं आज तक करो।
1: जी जैसे कि आप हमको बतौन लग रहा था कि इधु भाग समूह आप जोड़ी कभी, सब पहले तो ये जान चाहू कि एक समूह में कम से कम कदू महिला हूँ चैनी?
0: एक समूह में मैं चाहू कि 10 से 12 महिला है, लेकिन ज्यादा भीड़ में फिर काम नहीं है सघन, उनको एकत्रित करना बहुत टफ है जाए, ये वेल मैं कर लू की 10 या 12 महिलाओं एक ग्रुप बढ़ू।
1: 10-12 महिलाओं जब एक ग्रुप बढ़ जाए तो यह महिला अपन संस्था लीजिए के नामांकन रजिस्ट्रेशन के यह चीज जो औपचारिकता है यह पूर्ति करण पड़ेंगे, यह लीजिए कोई कागजात ले जानी?
0: हाँ ये लीजिए हमको बैंक जान पड़ो और या कोई एनजीओ जो हम लीजिए काम करें, जो हम मार्गदर्शन लीजिए सरकार देकर जुड़ी है, तो वो एनजीओ माध्यम हम तक उन लोग पहुँचनी और उन तक हम बात अगिल जानी उन माध्यम, तो ये वेल हमको एनजीओ देकर एक मिलन पड़ो और जो समिति बनी हुई है भारत सरकार अंडरटेकिंग है, और फिर हम बैंक में जानू तो हमारा आधार पैन कार्ड हमार फोटो ये सब प्रतिक्रिया सब होनी जो लोग वहाँ चैनी, तो ये एक बात में हम अध्यक्ष कोषाध्यक्ष और सचिव गठित कर लू और उनर माध्यमल मैं उन्हें देख रेख में ये आगे काम चलते रहूं।
1: दी जैसे की आप बहुत सारे संगठन बहुत सारे या स्वयं सहायता समूह बने रही और उनमें 10/12 महिला होनी, तो यह जो ग्रुप हूँ 10/12 तक महिलाओं यह एक का काम करनी या 10-12 महिला अपन अपन हिसाब अलग अलग काम कर सकनी?
0: ना ना यह तो यश हूँ की जैसे कगटी अपन खुद रोजगार करण छू, जैसे कहले गाय पालन छू तो वह लीजिए अलग से कर ले एक गाय दुई गाय जो दूल्हे ले, फिर समूह में जो हम पैस हूँ वो पैसा सीसीएल ले बढ़े, तो सीसीएल माध्यम पर हम लोन दीबे, फिर उन लोग उन लोन के तारनी ब्याज समय सब दिन नियम वाइज बढ़ो, हम एक डेट फिक्स है जाए कि यह तारीख है हमें मीटिंग है और यह 10 तारीख है पहले हमारे सब पैस जम है जल ब्याज लोन जिला हल गोरु माध्यम मतलब जो लोग गाय पालनी तो वह का माध्यम आप रोजगार तैयार करनी, और जैसे कहकर हाथ बुनाईकरण में बहुत बढ़िया छू तो छोटी छोटी बेबी सूट बढ़ूनी फुल स्वेटर ले बढ़ूनी, आजकल तो एक फुल स्वेटर बनाई बनाई 700-600 है, तो एक महण में एक महिला 2-3 स्वेटर निकाल लें तो वह घर बैठी बैठी है जो खाली समय हो दिनों वो एक उपयोग में आ जाए।
1: जैसे कि अगर कह लें गौ पालन कर रहा और जग जग उन दूध लगा रहा तो वील उन्हें आमदनी है, अगर कह लें बिनाई कर रहे सिलाई कर रहे कपड़े सिल रही स्वेटर बना रही सूट बना रही तो इनको बाजार कैसे मिलो या ग्राहक तक कैसे पूछनी तब तो उनको भी डबल मिलो?
0: ये लीजिए हमारे पास जो समिति बन रही भारत सरकार जो दी रखी हमको एनजीओ माध्यम पे और ब्लॉक द्वारा हमारे पास जानकारी है कि आज वहाँ स्टॉल लागल तुम्हारे समूह द्वारा कोई सामान बढ़ो छो तो तुम वहाँ आओ और वहाँ आप प्रदर्शनी के लगाओ और वहाँ बेटी तुम्हारा सामान बिक जाल, तो यह हमूल बहुत बार यह चीज करी और यही सिमकनी फील्ड में हॉल बाग में हम ब्लॉक स्तर पे जिला स्तर पे ये काम होनी तो हम वहाँ जानू और स्टॉल लगा भी काम का करना।
1: जी जैसे की अगर हम अपने ग्रामीण क्षेत्रों की बात करो तो ग्रामीण क्षेत्र में रति उजाऊ हूँ बटी लिबे रात तक एक महिला पास इधु भाग काम होनी, नंती नुगुल देखण छू खेत पात ले देखण छू गोरबाज ले देखण छे नंती नुगु थाव था लूण छू सौद सामान सब कुछ लूण एक महिला जिम्मेदारी बन जाए, क्योंकि हमारे पहाड़ में पुरुष वर्ग ज्यादातर रोजगारों के लिए जी बिहार जानी, तो आज जब यह महिला स्वयं सहायता समूह में जुड़नी तो घर काम अलावा यह स्वयं सहायता समूह में कसी बखत देनी, एक बखत निर्धारित हूँ या सब बेणी मिलभेर अपन तय करने की को बखत में यह मिलाल और काम कराल और बिहार जाल कबेर?
0: देखो आज तक कोई यश नहीं हो कि फिक्स टाइम हमूल एक टाइम बड़ो रखो, आपू घर काम करते करते जो दूल उनको समय मिल जाए उस समय देनी, जैसे ऐपणा लीजिए बढ़िया सी जैसे चौकी बड़े गणेश चौकी लक्ष्मी चौकी ऐसे बढ़ूनी और जब उनको टाइम हो जैसे उन्होंने नाश्ता कर रत्ती पर तो थोड़ी देर टाइम मिलो तो ऊपर लग गए तो

0: ऐसे फिक्स टाइम मेल आज तक कह कर नहीं कर
1: कुण तात्पर्य छुदी आपू की जेल जो काम पकड़ो वो अपन समय निकाल बेर वो काम को कर लू और ये लीजिए कोई ऐसा बाध्यता नहीं छू की सबूले ये जाकर इकट्ठे हो चुका भी।
0: हाँ की लेकिन यहाँ यश छू नही पहाड़ में भौगोलिक स्थिति यश है जै की आदमी को ऊन जाने में बहुत टाइम लग जाए जैसे उत्तरी दूर छू नी यहाँ बे वो तो उदू टाइम में वो आदमी आपू घर में काम कर लियो लू को हम घर में दीदी नु की के करण चाह ऊन बिनाई कर तो ऊन दीदी सिलाई है तो मशीन तो उनके घर में हम उन लोगों के दीदी तो जेले काम हमर हो तो हमको तैयार कर भी फिर वहाँ दीदी
1: जो ले स्वयं सहायता समूह बढ़ने या मैं जो लो आप लोगों की संस्था द्वारा आप लोग जुड़ छा कभी तो पहली थोड़ा बहुत धनराशि प्रोत्साहन राशि के रूप में उले देनी या सब दीदी बहनी आपस में मिलभेर आप लीजिए धनराशि के एकत्र करनी
0: न आपस में मिलवे करनी हम लोग जो आप धनराशि छू आपस में बहनी लोग जम करनी उमा हमार यश हूँ जो हम लोन दिन उन पर जो ब्याज हूँ हमार जो बहनियों को हम पैंस दिन वही ब्याज पैसल हम अपन आपस में हो गए काम पर लोग
1: आज वर्तमान में आप जानकारी में कदू यश दीदी बहनी हुनाल जो आप खुटा में ठाड़ गई और आज अपू आपको एक आत्मनिर्भर महिला के रूप में अपन उन्होंने पहचान बना रहे।
0: हाँ बहुत महिला छे अब ऐसी नाम तो मगर नहीं छे तो लेकिन बहुत महिला छे जिन्हों को हम रोजगार माध्यम दे मैं खुद अपन नंती नाम पढ़ाई लीजिए खुद समूह पर निकालो मेरे दुए नंती नाम कोर्स करो तो मैं खुद वहाँ पर ले मगर बैंक पे एजुकेशन लोन या कदू कागजी कार्रवाई वोल पोल ये करनी करण पर यह वेल हमारे अपन अगिलहा बढ़ती रहो योले एक बहुत बड़ी मदद है कि ग्रुप द्वारा हम एक दो मदद करूं कहले पढ़ाई लीजिए कर पास हो गई इंटर या कोर्स नहीं कर सकन तो गाड़ी दिनी वे रोजगार चलो करूं दुकान खोल देनी वैली जी तो ये इसी के दिन रूनू हम लोन आपस में लेन देन करते रूनू और वे जो ब्याज भरनी तो ब्याज हम अपन अन्य काम कर
1: दीजस की स्वयं सहायता समूह बढ़ूनक लीजिए ग्रामीण दिदबैणिया हम बात करो ग्राम में अब तो बिहारक लोग अजानी कई लोग यह सुनी की आप नंदिनू को पढ़ूनक लीजिए कोई दूर गाँव बटी हमारा गाँव में अजानी या कोई दूसर गाँव खू उन्होंने यहाँ घर बना है लो तो स्वयं सहायता में जुड़नक लीजिए एक का गाँव हूँ जरूरी हूँ दूसर गाँव महिला ले उस स्वयं सहायता समूह में जुड़ सकनी।
0: हाँ इमें एक दिक्कत ऐनी छू लेकिन यह सजा की जैसे बीच में कोई छोड़ भी जा तो फिर वो में दिक्कत है ज्यादातर हम कोशिश कर लू की एक साइड हो लेकिन कभी कभी यश हजा यश निर्णय लेन पड़ू समाज में के लेकिन सभी लोग हुनी तो हर व्यक्ति के जोड़ना लीजिए हमको अलग अलग हिसाब से निर्णय लेन पड़ू तो मैं यश निर्णय ले कि जो व्यक्ति यदि 5 साल बाद छोड़ो लो तो वह ब्याज समय जो उदू बीच हल तो वो हम वह चलो धनराशि उनको दे ही जाए लेकिन वो यश हजा ना फिर वो हताश न हो महिला की मगे यार काम नहीं मिल चलो मैं उठा भाई यहाँ रो थी तो मैं नंतीन ला पाली जान मैं पढ़ाई ले जान जरा दू पैंस मेरे जमला है जान और मगे के रोजगार ला मिल जान तो यह चक्कर में हम सबन के जोड़ने कोशिश कर।
1: ये तो बहुत बढ़िया बात अबुल बताए की कम से कम न्यूनतम 5 साल तक अगर कोई यह संस्था में जोड़ो तो 5 साल तक विल जदू डबल जोड़े तो उगो ब्याज सहित वो डबल मिल जाए ताकि उगले खुशी हो या 5 साल में व्यर्थ नहीं गए और मिल के न के काम करो कभीर वो ये में जुड़ जाए। जी जसकी एल आपू और मेरी बातचीत होने लग रहे और आपू बालाजी स्वयं सहायता समूह खत्याड़ी कोषाध्यक्ष छा और लगभग पिछाड़ी 2005-06 बटी आप लगातार काम करने लग रहा छा तो यह बीचक आपू अनुभव कस रहो या हमारे श्रोताओं को बताओ।
0: यह अनुभव तो बहुत जबरदस्त कहूँ मैं कि एक छोटे से गांव में हम निकल भी आई यहाँ और वाले मैं वही करती मैं एक स्वजल परियोजना तहत समूह बढ़ूना काम करती तो यहाँ आई तो मैं यहाँ के छी ना समूह उस टाइम पे तो एक ग्रास संस्था श्री गोपाल सिंह चौहान जी थी उन्होंने कहा अरे तुम यहाँ छा यहाँ हरो छो तुम और ब्याह तो इन्होंने कहा कि तुम समूह यश काम तो खूब कर छा तो ऐसे इसी का हम सब लोग जुड़ी मैंने कहा यश ले जरूरी नहीं है कि हम पैसा कर लीजिए जोड़ू एक दोहरा मुख देखने लीजिए बातचीत आपू घर दुख सुख और अपने आपू मनक जो कई हुनी पीड़ा उले व्यक्त है जानी एक दोहरा लीजिए श्रेणिया आपस में ग्रुप बढ़ो तो मैं एक बड़ा दो बड़ाई चार बड़ाई तो ऐसी के मेयर बहुत बढ़िया रहो अनुभव और मैं ले सीखो उन्हें यो ना कि मैं ले सब कुछ दे उन्हें भी मैं ज्यादा सीखो मेर तो अनुभव और ले कम छी मैं तो उन्होंने ज्यादा सीखो की उन्होंने कदू परेशानी है गाँव में के माहौल छू
1: दिया बहुत बढ़िया बात बताए कि ये लंबे वक्त बटी आप काम करने लग रहा छा और दगड़ में आप उले बहुत कुछ सीखो कि लेकिन महापुरुष कह ले रहो सीखना कोई उम्र नहीं हुन जब जागो तब भी सवेरा यसले कही जा जे दिन हमारा आँख खुल उ दिन बटी हम अपन यात्रा का आरंभ कर सकनू के नहीं सीखने लीजिए के उम्र के लिए आवश्यकता नहीं हुन और जो कि एल अपन एक भल बात हमको बताए कि जब हम दगड़ में जुड़नू तो अपन सुख दुख ला आपस में बांटनू लेकिन आज एकांकी परिवार बहुत ज्यादा है आज शारीरिक रोग उदुख ज्यादा निजन जदू मानसिक रोग व्यक्ति का घेर है लो किले पहली बटी संयुक्त परिवार में रुचि तो दुख सुख आपस में बांट ली थी क्या है जब वो बुढ़वाड़ घर में होने आए तुरंत वो रोग इलाज घर में कर देने आए अब कहे कुनू के कुनू कोई सुननी नहीं हुन तो समूह माध्यम जब दीद बनी आपस में जुड़नी तो अपने दुख सुख ले एक दोहरे बांटनी और वो जमकरी डबल एल ले उन्हें दुख सुख काटी जाए यह बहुत बढ़िया बात अबुल हमको बताए तो दी एल आपू और मेरी जो बातचीत

0: हमारे रेडियो श्रोता सुन लाग रहे तो आप हमारे रेडियो श्रोताओं को के संदेश देना चाहला कि बेणियाल आगे बढ़ के करना चाहे कसी उनको बिहार निकालना चाहे कभी।
1: हाँ, मैं तो ये चाहू कि हर महिला में के न के गुण जरूर होनी, हर मनुष्य में होनी हूँ स्वाभाविक। तो मैं ये चाहू कि महिला आप जो वे कौशल छु जो चीज तरीक छु चाहे केले चीज में हो केले चीज में अगिल बढ़ो और आपो प्रतिभा के अगिल लियाओ। और मैं यही चाहू मैं महिलाओं जबरदस्ती को जो नई नई ये बुआरी बेवाई छन चेली तो ये महिलाओं जबरदस्ती बुले बुले वे लू मैं कुनो आओ यार अगिल आओ और हम संस्कृति के जिंदे धरो और ये आपन जो तुम अंदर जो कौशल छु जो तुमको प्रतिभा छु इके तुम बाहर निकालो और तभी हमारे जीवन सफल हो और अगिल हाले बहुत सी हम उनके समय मिलोल और अगिल मैदान छु हमारे पास आज तो वो जमान है को जब बाहर उन्हें लीजिए हमारे पास टाइम नहीं छी और कभी हम ऊन नहीं दी छी कहीं सामाजिक रूढ़ीवादिता छी तो आज तो बिल्कुल स्वतंत्रता छू। तो मैं ये चाहू कि सब निकलो भल समाज वो करो निर्माण करो।
0: डी अबुल भल भल बात हमारे श्रोताओं को बताई और अपन कीमती भगत ले हमको दे यकली अपन कार्यक्रम तरफ है आपको खूब खूब धन्यवाद। दगड़ियो अल्लाह मुल सुनी यह क्षेत्र संकलित भेंट वार्ता जैक विषय छी आत्मनिर्भरता और सशक्त बढ़ने वाले हमार ग्रामीण महिला और यह विषय में हमारे दगा बातचीत करण लाग रहा छी बालाजी स्वयं सहायता समूह एक कोषाध्यक्ष श्रीमती मुन्नी रावत

आहा बुली फिरी भरी गागरी झटके झांकरी फिरी भरी गागरी झटके झांकरी सबके घागरी सर हिट दी।

की घमास चुहिन आकाश रूड़ी की घमास चुहिन आकाश चोली दुरास फुल कागी हल्कन भाग।

कि हम अपन उन्हीं वाली पीढ़ी के लिए जी ऊर्जा उपलब्ध जो उपलब्धता छो एक सुनिश्चित कर सकूँ और यह ऊर्जा संरक्षण कर भी ये कि जीवन में अपना भेर हम एक ठुल बदलाव ले सकूँ। दगड़े जस की हम कह दिनों ने कि ठुल ठुल काम हमारे बस में नहीं छो, ये तो हमारे बस में नहीं छे, ये कि हम नहीं कर सकन, लेकिन कुछ एक नान नान जस आसान उपाय ले छन ऊर्जा बचूणक। जस की हम अपन घरों में LED बल्बक प्रयोग कर सकनू और अनावश्यक बिजली प्रयोग नहीं करूँ। बिहार जान बखत घरक पंखों को बल्बों को और अन्य जदुगले बिजली उपकरण छन उनको मुख्य स्विच बटी बंद कर दें जे और दिनक वक्त प्राकृतिक ऊर्जा प्रयोग करी जो घरक खिड़कियों को पर्दों को खोल दी जैल की प्राकृतिक ऊर्जा भरपूर उपयोग है सको। जब हमको कहें नज़दीक में जान छो तो हम पैदल ले जा सकनो या साइकिल प्रयोग कर सकनो और यदि दगड़ियों बहुत ज़्यादा जरूरी नहीं छो तो जो सार्वजनिक वाहन चल रहे इथा उथा जान में उन्हें प्रयोग कर सकनो और आजकल सौर ऊर्जा जस अक्षय स्रोत चल रही उनके लिए हम अपने सकनो। दगड़ियों बात तो नान नान जस छन दैनिक दिनचर्या हिस्से छन, लेकिन ये में ऊर्जा संरक्षण महत्व बढ़ो जिसकी पहल तो पर्यावरण सुरक्षा ऊर्जा संरक्षण कार्बन उत्सर्जन और ग्रीन हाउस गैसों में कमी आ रही जय जलवायु परिवर्तन प्रभाव कम हो और हमको आर्थिक लाभ ले हो। जब हम बिजली को कम खर्च करो ईंधन कम खर्च करो तो हमार बिल ला कम आल। दगड़े ऊर्जा संरक्षण कसिक हल और यह मैं हमार के जिम्मेदारी छू कि अपन आदत में शामिल करण पड़ल। यह हमार पर्यावरण के लीजिए और उन्हीं वाला पीढ़ी के लीजिए उन्हें स्वर्णिम भविष्य के लीजिए हमारे जिम्मेदारी ले छू जो हमको कर्तव्य पालन करण चाहिए।

जय बहारा रोज होली होय दिवाई रोज हरियाई को त्यारा जब तू होली म्यार दगाड़ा तब होली रोज जय बहारा रोज होली होय दिवाई रोज हरियाई।

0: होली बहारा लैण होली गोठ गाई ना जले भरी भकारा लैण होली गोठ गाई ना जले भरी भकारा तू के छोड़ी बेर सुवा मैं कथा हूँ जू चाहिए रू भेट म्यार दगड़ा।
1: दगड़ियो दीवान कनवाला गाई या लोकगीत के दगे अब दियो आज्ञा आज अग एपनक या अंकक प्रस्तुत करता छी दीपिका पंत। आगे कार्यक्रम में आप लोगों दगे फिर भेंट है। नमस्कार।

अभी महिलाएं सुन रही थी अपना कार्यक्रम अर्पण। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, दोपहर के 1 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में आप दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच नई दिल्ली में वार्ता हो रही है। इस बातचीत में भारत वेनेजुएला संबंधों के सभी पहलुओं पर चर्चा होगी और ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार तथा निवेश, फार्मास्यूटिकल्स, स्वास्थ्य सेवा, परिवहन और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की नई संभावनाएं तलाशी जाएंगी। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल्स क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना और सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ भी बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिश्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृह मंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं।

0: यह पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री सुकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अतिरिक्त मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक की जानकारी दी है।
1: ये हमारा 23rd प्लेनरी मीटिंग अब नॉर्थ ईस्ट होने जा रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर प्रदेश सरकार राज्य पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्रों तक निःशुल्क बस सेवा उपलब्ध कराएगी। सिविल पुलिस कांस्टेबल और समकक्ष पदों के लिए भर्ती परीक्षा 8, 9 और 10 जून को प्रतिदिन 2 शिफ्टों में आयोजित की जानी है। पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप आज गुजरात के अहमदाबाद में शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में शामिल होंगे। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने इस आयोजन को योगासन के वैश्विक खेल विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया। इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा। शेयर बाजार दोपहर के कारोबार में आज मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 35 अंक गिरकर 74,311 पर, जबकि निफ्टी 5 अंक फिसलकर 23,401 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में निवेश से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक हुई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में एक माह तक संचालित किए जा रहे खेत बचाओ अभियान के सफल क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। दून अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत होगी। किफायती दरों पर मिलेंगी उन्नत एक्सरे और विशेष जांच सुविधाएं। और अल्मोड़ा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बीएलओ, सुपरवाइजर और अन्य संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं स्वाति कपिल। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में एकल खिड़की के अंतर्गत निवेश से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में प्रदेश में निवेश से संबंधित स्वीकृत नए प्रस्तावों को संस्तुति दी गई। मुख्य सचिव ने विभिन्न मामलों के निस्तारण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त की। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को एकल खिड़की से संबंधित प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही उद्योग सचिव को भी देरी पर संबंधित से स्पष्टीकरण मांगे जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने कहा कि एकल खिड़की से मिलने वाली स्वीकृतियों के लिए समय सीमा निर्धारित है, इसके अंतर्गत ही सभी स्वीकृतियां और क्लियरेंस दी जानी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पहले और दूसरे चरण के सभी लंबित प्रकरणों को शीघ्र से शीघ्र निस्तारित किया जाए। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में एक माह तक संचालित किए जा रहे खेत बचाओ अभियान के सफल क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि प्रदेश भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में सांसदों, मंत्रियों, विधायकों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जाए। देहरादून में विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक में कृषि मंत्री ने ग्राम पंचायत स्तर तक विशेष जागरूकता

0: जागरूकता शिविर आयोजित कर किसानों को प्राकृतिक और संतुलित खेती के प्रति प्रेरित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने एप्पल मिशन के तहत किसानों को देराज सहायता का भुगतान शीघ्र कराने के निर्देश दिए। साथ ही सेब पैकिंग बॉक्स की उपलब्धता और अन्य सभी तैयारियां समय पर पूरा करने पर जोर दिया ताकि सेब बागवानों को किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। उन्होंने प्रदेश भर में पॉलीहाउस निर्माण कार्यों को युद्ध स्तर पर संचालित करने के भी निर्देश दिए। चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग ने यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी है। देहरादून के संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनी ने कहा कि यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक किसी भी यात्री वाहन को पहाड़ी मार्गों पर संचालित नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यात्रा अवधि के दौरान भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के संचालन पर भी प्रतिबंध रहेगा ताकि यातायात सुचारू बना रहे और जाम की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने कहा कि ओवर स्पीडिंग और रैश ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसका उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को रोकना और श्रद्धालुओं की यात्रा को सुरक्षित बनाना है।
1: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, उसके क्रम में जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे और आदेश भी जारी किए गए हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी पैसेंजर वाहन पहाड़ी मार्ग पर यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके क्रम में सभी जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय को भी पत्राचार कर दिया गया था और हमने अपने ARTOs को भी बोला है पुलिस से समन्वय बनाते हुए कोई भी ऐसी वाहन जो जा रही है उनको ऊपर पहाड़ में ना जाने दिया जाए।
0: राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष भगवत प्रसाद मकवाना ने हरिद्वार में सफाई कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही योजनाओं और उनकी समस्याओं को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने पर्यावरण मित्रों को योजनाओं से हर हाल में लाभान्वित करने के निर्देश देते हुए कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। श्री मकवाना ने कहा कि राज्य सरकार सफाई कर्मियों के कल्याण के लिए संवेदनशील होकर कार्य कर रही है।
2: हमारी सरकार सफाई कर्मियों के लिए संवेदनशील है, सभी विभागों को। ये जो अधिकारी हमारे EOs आए हैं सभी जिले की नगर पालिकाओं से, जहाँ पर भी रिक्त पद हैं तो सफाई कर्मचारी जो 2018 तक अपनी सेवाएं 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हैं, मैंने निर्देश दिए हैं कि उनको नियमितीकरण की कार्रवाई 15 दिन में पूरी करें। इसके अलावा समाज कल्याण को हमने ऋण सुविधाएं इनको उपलब्ध कराने की, जो मोदी सरकार मैनुअल स्केवेंजर्स एक्ट के अनुसार उनके पुनर्वासन के लिए उनके सर्वेक्षण के लिए कार्य कर रही है।
3: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया X व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे YouTube चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: देहरादून के दून अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत होने जा रही है। इससे मरीजों को कई तरह के एक्सरे और विशेष जांचें किफायती दरों पर उपलब्ध हो सकेंगी। दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैन ने बताया कि अस्पताल में लगातार आधुनिक मशीनें स्थापित की जा रही हैं, जिससे प्रदेश भर से आने वाले मरीजों को बेहतर उपचार मिल सके।
4: दून मेडिकल कॉलेज में अभी नई हमारी DDR मशीन आ गई है, डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी कहते हैं इसको, और इसमें जो है आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके आप एक्सरेज ले सकते हैं, और जैसे स्त्रियों में बांझपन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम लोग ट्यूब का टेस्ट जो होता है HSG वो इसमें करा जा सकता है, या बेरियम मील आंतों की जाँच जो होती है डाई पिला के इंजेक्ट करके जो एक्सरेज लिए जाते हैं आंतों की, तो बेरियम मील या बेरियम फॉलो-थ्रू वो भी जाँच इसमें करी जा सकती है।
0: उन्होंने कहा कि अस्पताल में जल्द ही ERCP सुविधा भी शुरू की जाएगी, जिससे लीवर और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों की जांच और उपचार में मदद मिलेगी।
4: हमारे पास एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS बोलते हैं उसको, वो आ गया है। उससे क्या फायदा होगा कि एंडोस्कोपी भी यूज करेंगे और अल्ट्रासाउंड दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जो है मरीज की आंतों में मान लो कोई कैंसर है या ट्यूमर है उसकी हम जांच कर सकते हैं और उससे बायोप्सी भी ले सकते हैं, तो इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ अब इंस्टॉल हो गई है और इसकी हमारे डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी करके आ गए हैं, तो हम इसको भी शुरू करने वाले हैं।
0: अल्मोड़ा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए BLO सुपरवाइजर

0: बीएलए और अन्य संबंधित कार्मिकों का प्रशिक्षण आयोजित किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी युक्ता मिश्रा ने कहा कि निर्वाचन कार्य बहुत महत्वपूर्ण और संवेदनशील है, इसलिए सभी कार्मिकों को अपने दायित्वों की पूरी जानकारी होना आवश्यक है। उन्होंने बताया कि 7 जून तक विभिन्न चरणों में प्रशिक्षण दिया जाएगा, जबकि 8 जून से बीएलओ घर घर जाकर मतदाता प्रपत्र भरवाने का कार्य शुरू करेंगे।
1: एसआईआर के विभिन्न चरण होते हैं। इसमें पहला चरण होता है कि जो इन्यूमरेशन फॉर्म है, गणना प्रपत्र है, उनकी छपाई का कार्य होता है, वो बीएलओ तक पहुंचाए जाते हैं और साथ साथ बीएलओ का अति महत्वपूर्ण प्रशिक्षण होता है। इसमें बीएलओ के साथ साथ जो बीएलओ के हेल्प के लिए टेक्निकल स्टाफ तैनात है, तहसीलों में विधानसभा स्तर पर जिले स्तर पर जो कंट्रोल रूम है उसकी स्टाफ की ट्रेनिंग, इस तरीके के कार्यक्रम किए जाते हैं। तो इस समय ट्रेनिंग का कार्यक्रम चल रहा है, विभिन्न विधानसभाओं में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके साथ ही साथ समय समय पर राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक करनी होती है। चरण 7 तारीख तक रहेगा और 8 तारीख से हमारे बीएलओ घर घर जाकर गणना प्रपत्र को वितरित करने, भरने के बाद उसे कलेक्ट करने और डिजिटाइज करने का कार्य करेंगे।
0: देहरादून में आड़त बाजार पुनर्विकास परियोजनाओं को अब नई गति मिलने जा रही है। राजधानी की प्रमुख शहरी पुनर्विकास परियोजनाओं में शामिल इस महत्वाकांक्षी योजना के लंबित कार्यों को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण ने रणनीति तैयार कर ली है। देहरादून में आयोजित उच्च स्तरीय बैठक में परियोजना की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई। बैठक में विभिन्न विभागों को इस माह के भीतर सभी लंबित कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए गए। प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने स्पष्ट किया कि परियोजना के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव आनंद बर्धन की अध्यक्षता में सचिवालय में निवेश से संबंधित राज्य स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की 65वीं बैठक हुई। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेश में एक माह तक संचालित किए जा रहे खेत बचाओ अभियान के सफल क्रियान्वयन पर विशेष जोर दिया। दून अस्पताल में जल्द ही अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत होगी। किफायती दरों पर मिलेंगी उन्नत एक्सरे और विशेष जांच सुविधाएं और अल्मोड़ा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए बीएलओ सुपरवाइजर और अन्य संबंधित कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 1:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत।

आइए अब आपको सुनाते हैं कार्यक्रम में शंकर शाहनी का लिखा तेरे इश्क में। जी हाँ, ऋषि प्रसाद का गाया ये गीत।

0: और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
1: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का कायम की एक नई मिसाल, उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
0: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं सुगम संगीत का।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य

उसकी यादों में। अभी आप सुन रहे थे इस एल्बम से अगम कुमार निगम का गाया ये गीत। इसी के साथ ही सुगम संगीत कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1299वीं कड़ी।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओं, मैं हूं विमलेश।
1: और मैं हूं अजीत। स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतिम बाई मानिकपुरी जी ने। लिखते हैं,
2: है काम आदमी का दूसरे के काम आना।
1: क्या बात है काम आदमी का दूसरे के काम आना। धन्यवाद आप सबका इतने सुंदर विचार को भेजने।

0: भेजने के लिए। अब आइए सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना सरीला जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, मंजू, रंजना, वंदना, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा जी का।
1: और अगला संदेश मिला है महाराष्ट्र से प्रथमेश हेड़के जी का। उन्होंने लिखा है, मुझे NCERT का उमंग प्रोग्राम बहुत पसंद है, हर दिन, हर बार, हर रोज सुनता हूँ।
0: बहुत बहुत धन्यवाद इतने प्यारे संदेश के लिए। अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
1: इलाहाबाद से रेशमा नाज डोम और बेबी अंसारी डोम।
0: आप सबको हमारा आभार संदेश भेजने के लिए। श्रोताओं संदेश जरूर भेजिए क्योंकि इससे हमारा मनोबल बढ़ता है। और अब प्रस्तुत है श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी। साथियों इस सप्ताह हम चर्चा कर रहे हैं पृथ्वी के प्रमुख मरुस्थलों की। कल हमारी चर्चा का विषय था गोभी का शीत मरुस्थल।
1: इन कड़ियों में हमने विशेष रूप से ये जाना था कि मरुस्थल या मरुभूम कहलाने के लिए किसी क्षेत्र में रेत ही रेत हो या बहुत गर्मी हो ऐसा बिल्कुल नहीं है।
0: जी हाँ श्रोताओ, मरुभूमि या मरुस्थल की परिभाषा उस क्षेत्र की निर्जलता या अति अल्प वृष्टि पर निर्भर करती है। तो विमलेश जी, आज हम किस शीत मरुस्थल की चर्चा करने जा रहे हैं? मेरे विचार से क्यों ना भारत के शीत मरुस्थलों की चर्चा की जाए।
1: अजीत जी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं सोच रही थी कि आज हम भारत के शीत मरुस्थल की चर्चा करते हैं जो लद्दाख में है। आपको याद है NCERT की ओर से मीडिया प्रशिक्षण कार्यक्रम में हम भी वहां जा चुके हैं।
0: जी हाँ, हमने उस इलाके को देखा भी है।
1: जी बिल्कुल, मुझे भी याद है। तो श्रोताओं, आज हम चर्चा करेंगे लद्दाख के शीत मरुस्थल की। इसे कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। जैसा कि हमने सुना था, मरुस्थल का अर्थ सिर्फ रेत नहीं होता बल्कि वो जगह मरुस्थल कहलाती है जहाँ वर्षा बहुत कम होती है। तो श्रोताओ, आपको बता दें कि लद्दाख में सालाना वर्षा बहुत कम होती है, लगभग 50 से 100 मिलीमीटर के लगभग।
0: लेकिन विमलेश जी, ऐसा क्यों है? मेरा मतलब है कि वहाँ यानी लद्दाख में इतनी कम वर्षा क्यों होती है?
1: अजीत जी, इसका कारण ये है कि लद्दाख का क्षेत्र हिमालय पर्वत की रेन शेडो यानी वर्षा छाया में स्थित है। हिमालय पर्वत यहाँ आने वाली वर्षा को रोकता है। अजीत जी, मुझे तो ये भी याद है कि वहाँ जाने पर हमें शुरू में सांस लेने में भी थोड़ी कठिनाई हुई थी।
0: जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि वहाँ की हवा अधिक ऊंचाई के कारण बहुत पतली होती है और ऑक्सीजन कम मात्रा में मिलती है। इसलिए पहली बार जाने वालों को कुछ विशेष सलाह दी जाती है। बताइए क्या सलाह दी जाती है?
1: जी, वहाँ पहली बार जाने वाले लोगों को सलाह दी जाती है कि तेज न चलें, ज्यादा ऊंची चढ़ाई न चढ़ें और भारी शारीरिक काम जैसे ट्रैकिंग वगैरह एकदम से उत्साह में आकर न करें।
0: जी,
1: पहले वहाँ के वातावरण में अपने शरीर को अनुकूलित करें और फिर धीरे धीरे सामान्य गति में आए।
0: जी बिल्कुल सही। श्रोताओं, यहाँ का तापमान सर्दियों में -20 डिग्री सेल्सियस या इससे भी नीचे जा सकता है।
1: जी,
0: लेकिन गर्मियों के दिनों में धूप तेज लगती है।
1: जी,
0: लद्दाख का अर्थ ही है ऊंचे दर्रों वाली भूमि। श्रोताओं, एक बात और आपको बता दें कि ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल मार्गों में गिना जाता है।
1: अब बात करते हैं यहाँ पाए जाने वाले जीवों की। खास तौर से यहाँ याक, स्नो लेपर्ड, हिमालयी भेड़िया और नीली भेड़ पाई जाती है। और हाँ, लद्दाख की झीलें पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जैसे पेंगोंग झील। श्रोताओं, और अब जानते हैं यहाँ के लोग कैसे रहते हैं और क्या खाते हैं। अजीत जी, अब आपकी बारी।
0: तो विमलेश जी, यहाँ के मुख्य भोजन हैं स्कू और थुकपा।
1: जी,
0: ये गेहूं के आटे से बना होता है। पावा भी यहाँ बहुत लोकप्रिय है जो जौ के सत्तू से बनाया जाता है। यहाँ की प्रसिद्ध मिठाई खुबानी से बनती है। यहाँ लोग अपने घर मोटी मिट्टी और पत्थरों से बनाते हैं ताकि घरों में गर्मी बनी रहे। जहाँ तक खेती की बात है, यहाँ विशेष रूप से जौ और मटर जैसी फसलें उगाई जाती हैं।
1: अजीत जी, एक और रोचक बात श्रोताओं से साझा करना चाहती हूँ।
0: हाँ जरूर कीजिए।
1: वो ये कि लद्दाख में एक पेड़ बहुत अधिक पाया जाता है जिसे विलो कहा जाता है।
0: जी,
1: इनकी लकड़ी हल्की, मजबूत और लचीली होती है। इसी लकड़ी से क्रिकेट के बल्ले बनाए जाते हैं। दुनिया भर में इस लकड़ी की बहुत मांग है, इसलिए लद्दाख में इसकी खेती भी की जाती है।
0: जी, ये तो आपने बड़ी रोचक जानकारी हमें दी। विमलेश जी, आपको याद है जब हम वहाँ गए थे मैग्नेटिक हिल?
1: बिल्कुल याद है।
0: जहाँ यदि वाहनों को बंद भी कर दिया जाए या न्यूट्रल गियर में भी रखा जाए तो वो खिसकने लगते हैं।
1: बिल्कुल।
0: क्या रहस्य है इसका, जरा श्रोताओं को बताइए।
1: जी जी, ये जगह लेह कारगिल मार्ग पर स्थित है। हमने भी तो इसका अनुभव किया था। लोग अक्सर सोचते हैं कि वहाँ पहाड़ियों में कोई चुंबकीय शक्ति है जो वाहनों को खींचती है, लेकिन सच्चाई ये है कि वैज्ञानिकों के अनुसार वास्तव में वाहन वहाँ अपने आप नहीं चलते, ये एक दृश्य

0: दृष्टि भ्रम या ऑप्टिकल इल्यूजन है।
1: जी श्रोताओ, दरअसल बात यह है कि वहाँ की सड़क की बनावट ही ऐसी है कि जो सड़क हल्की ढलान पर नीचे जा रही होती है वो आंखों को ऊपर ऊपर जाती दिखाई पड़ती है। इसी दृष्टि भ्रम से ऐसा लगता है कि वाहन अपने आप सड़क रहे हैं। एक बात और आपको बता दें कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर गुरुद्वारा पत्थर साहिब है, जो एक दर्शनीय स्थान है।
0: श्रोताओ, लद्दाख को लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। यहाँ बौद्ध संस्कृति, मठ, प्रार्थना चक्र और रंग बिरंगे खूबसूरत झंडे देखे जा सकते हैं। और तो और, सिंधु घाटी की सभ्यता को पालने वाली सिंधु नदी लद्दाख से ही गुजरती है। श्रोताओ, इस नदी को देखना भी हमारे लिए कभी न भूलने वाला अनुभव था।
1: जी, सुंदर नीला आकाश, रात में असंख्य चमकते हुए तारे,
0: जी,
1: रेत, बर्फ, सूखे पहाड़, झीलें और वहाँ की आध्यात्मिक संस्कृति। जब हम इन सारी बातों को देखते हैं तो हमें क्या लगता है विमलेश जी?
0: कि भारत के शीत मरुस्थल लद्दाख में हमें एक साथ मिलते हैं।
1: तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी भारत के प्रसिद्ध शीत मरुस्थल लद्दाख की।
0: जी,
1: आशा है कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। आज की ही जानकारी से प्रश्न है,
0: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: लद्दाख में बहुत अधिक मात्रा में पाए जाने वाले उस पेड़ का नाम बताइए जिससे क्रिकेट के बल्ले या बैट बनाए जाते हैं। भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800440559 पर, और आप हमारे ईमेल पर भी अपने संदेश या प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता नोट कर लीजिए। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
1: और श्रोताओ, यदि आप NCERT की पाठ्य पुस्तकों का ध्वनि रूपांतर यानी ऑडियो बुक्स सुनना चाहते हैं तो इन्हें आप NCERT YouTube ऑफिशियल चैनल या दीक्षा पर सुन सकते हैं। दीक्षा पोर्टल पर आप पढ़ पाएंगे ढेर सारी शैक्षिक सामग्री और सुन व देख पाएंगे हमारे ऑडियो वीडियो कार्यक्रम भी।
0: जी, और अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। हमारा पहला कार्यक्रम है
1: भारत अर्थात इंडिया।
0: कक्षा 6 की समाज की अध्ययन की पाठ्य पुस्तक पर आधारित इस कार्यक्रम में रोचक ढंग से भारत देश के विभिन्न नामों के बारे में बताया गया है और उन नामों के पीछे की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का भी सप्रसंग विवरण किया गया है।
2: भारत अर्थात इंडिया।
3: दोस्तों, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। आइए चलते हैं दिल्ली के अंबेडकर स्टेडियम, जहां हो रहा है भारत और बांग्लादेश के बीच क्रिकेट मैच। अनुष्का भीड़ की बातों को ध्यान से सुन रही थी। वो सोचने लगी,
4: हमारे देश के इतने सारे नाम, कोई इंडिया कहता है, कोई भारत कहता है, तो कोई हिंदुस्तान भी कहता है।
3: दोस्तों, अनुष्का का कौतूहल स्वाभाविक था। क्या आपने भी कभी इस प्रकार से सोचा? अगर सोचा तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं सोचा तो चलिए आज इस मनोरंजक और रोचक सच्चाई से पर्दा उठाते हैं। अनुष्का अपने स्कूल गई, लेकिन ये बात उसके दिमाग से नहीं गई थी। उसने ये बात अपनी सहेली जिशा से साझा की। तय ये हुआ कि वो अपने हिस्ट्री के अध्यापक से बात करेंगे। वो बात ध्यान से सुनते हैं और बोलने का मौका भी देते हैं।
5: सर, क्या हम अंदर आ सकते हैं?
6: कौन? ओ, अनुष्का, जिशा,
5: सर।
6: तुम दोनों आ जाओ, अंदर आ जाओ। शाबाश।
5: क्या अभी आपके पास समय होगा?
6: तुम लोग बिल्कुल ठीक समय पर आए हो।
5: सर, उस दिन हम क्रिकेट मैच देखने गए थे।
6: हाँ, वो बांग्लादेश और भारत का?
5: जी वही। सर, उस दिन लोग वहाँ कुछ बातें कर रहे थे।
6: अच्छा।
5: सर, कोई कहता था कि इंडिया

0: जीतेगा, तो कोई कहता कि भारत ने मैच जीता।
1: और
0: कोई कहता था कि हिंदुस्तान की टीम ने कमाल कर दिया। और
1: हाँ बोलो बोलो
0: सर, हमारी पुस्तक में देश का नाम भारतवर्ष भी तो है।
1: बिल्कुल,
0: लेकिन सर दूसरे देशों के इतने सारे नाम तो नहीं होते। बांग्लादेश, पाकिस्तान, जापान, अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों के नाम तो एक ही है। फिर हमारे देश के इतने ढेर सारे नाम क्यों हैं?
2: बहुत अच्छा सवाल। देखो बच्चों, आज का भारत एक आधुनिक राष्ट्र है, लेकिन ये आज से 500, 2000 या 5000 वर्ष पहले ऐसा नहीं था।
0: 5000 वर्ष पहले?
2: हाँ, इसके लिए हमें हजारों वर्ष पहले के इतिहास में जाना होगा।
0: जी, लेकिन हमें हजारों वर्ष पहले की जानकारी कैसे मिलेगी?
1: अच्छा ये बताओ, तुमने ऋग्वेद का नाम सुना है?
0: जी सर, सुना तो है। ये एक प्राचीन ग्रंथ है।
2: प्राचीन ही नहीं, ऋग्वेद भारत का सबसे प्राचीन ग्रंथ है।
0: अच्छा।
2: इस ग्रंथ से हमें अपने देश के बारे में बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिल जाती हैं।
0: जैसे?
2: जैसे इस ग्रंथ के अनुसार हमारे देश के उत्तर पश्चिम भाग में एक वैदिक समूह निवास करता था।
0: वैदिक समूह?
2: हाँ, वैदिक समूह। इस समूह के ऋषियों और मुनियों द्वारा वैदिक ऋचाओं की रचना हुई। इस वैदिक समूह का नाम भरत था।
0: भरत?
3: भरत नाम तो हमने सुना है।
2: अच्छा भाई, भरत नाम से बाद में बहुत से राजाओं को भी जाना गया।
0: ओह भरत, अच्छा तो ये बात है।
2: हाँ।
0: तो क्या इसी भरत नाम से देश का नाम भारत पड़ा?
2: बिल्कुल ठीक कहा तुमने अनुष्का, इसी नाम से देश का नाम भारत पड़ा, जिसे बाद में भारतवर्ष भी कहा जाने लगा। ये वैदिक समूह भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में यानी सिंधु घाटी क्षेत्र में निवास करता था। ऋग्वेद में इस भाग को सप्त सैंधव अर्थात सात नदियों की भूमि कहा गया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, सैंधव शब्द सिंधु शब्द से आया है।
3: मैंने पढ़ा था कि सिंधु का मतलब होता है नदी।
2: बिल्कुल सही, इसका तात्पर्य सिंधु नदी से ही है। अच्छा ये तो बात हुई ऋग्वेद की। अब सिंधु के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात।
0: वो क्या सर?
2: वो ये कि छठी शताब्दी पूर्व एक फारसी सम्राट ने सैनिक अभियान किया और सिंधु नदी के इलाके पर नियंत्रण कर लिया। अपने लेखों और शिलालेखों में फारसियों ने भारत के सिंधु इलाके को हिद, हिदु या हिंदू कहा है।
3: फारसियों ने सिंधु को हिद, हिदु या हिंदू कहा है,
0: भला ऐसा क्यों?
2: ऐसा इसलिए क्योंकि फारसी भाषा में सिंधु शब्द का रूपांतरण हिंदू होता है।
0: अच्छा।
2: हाँ, क्योंकि स अक्षर उनकी भाषा में है ही नहीं।
0: है ही नहीं?
2: हाँ।
0: ऐसा कैसे?
2: ऐसा है, स की जगह उन्होंने ह का प्रयोग किया।
0: ओ।
2: हाँ, हिंदू। तो सिंधु रूपांतरित होकर बन गया
0: हिंदू।
2: शाबाश। लेकिन यहाँ ये जानना बहुत जरूरी है कि हिंदू शब्द से उनका तात्पर्य हिंदू धर्म से नहीं था।
0: तो फिर?
2: हिंदू शब्द एक भौगोलिक शब्द था जो सिंधु नदी या सिंधु की घाटी क्षेत्र को संदर्भित करता था।
0: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। सर, ऋग्वेद के अलावा क्या कुछ और भी ग्रंथ है जिनसे हमें और अधिक जानकारी मिल सकती है?
2: बिल्कुल जिशा, कुछ और हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे विष्णु पुराण और महाभारत। अच्छा जरा ये बताओ, मैंने अब तक कितने ग्रंथों के नाम तुम्हें बताए?
3: आपने अब तक 3 ग्रंथों के नाम बताए।
2: अच्छा, तो कौन कौन से हैं वो 3 ग्रंथ?
0: सर, ऋग्वेद, महाभारत, विष्णु पुराण।
2: अरे वाह, क्या बात है, कमाल कर दिया तुमने, बहुत अच्छे। विष्णु पुराण में बच्चों हम पढ़ते हैं वो देश जो समुद्र के उत्तर में और हिमाच्छादित पर्वतों के दक्षिण में है, उसे भारत कहते हैं।
0: अच्छा।
2: हाँ।
3: सर, आपने प्राचीन ग्रंथ महाभारत का भी नाम लिया था।
2: बिल्कुल।
3: क्या उससे भी हमारे देश की जानकारी मिलती है?
2: देखो, पहली बात तो ये है कि महाभारत ग्रंथ के नाम में ही भारत का नाम है।
0: अच्छा।
2: हाँ, महाभारत में पहली बार भारत को भारतवर्ष भी कहा गया है।
0: अच्छा।
2: हाँ, और साथ साथ इस ग्रंथ में एक और नाम है भारत का।
0: वो क्या?
2: बताता हूँ।

0: बताता हूँ बच्चों, वो है जम्बूद्वीप।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ, जम्बूद्वीप। महाभारत में भारतवर्ष को जम्बूद्वीप भी कहा गया है।
1: जम्बूद्वीप?
0: हाँ?
1: ये नाम भला क्यों?
0: देखो, जम्बू का अर्थ होता है जामुन। इसे जम्बुल भी कहते हैं। जामुन का पेड़ उन दिनों इस भूभाग पर बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत को जम्बूद्वीप भी कहा गया।
1: अच्छा।
0: हाँ, सम्राट अशोक ने भी अपने शिलालेखों में संपूर्ण भारत का वर्णन जम्बूद्वीप के नाम से भी किया है।
1: सर, मैंने सुना है कि उन दिनों हमारा देश बहुत बड़ा था।
0: बिल्कुल ठीक तुमने सुना है। उन दिनों भारत में आज के बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान भी सम्मिलित थे।
1: इतने सारे देश?
0: हाँ, और शायद इसी कारण से भारत को महाभारत भी कहा गया है।
1: अच्छा। सर, अभी तक हमने जाना कि हमारे देश को भारत, भारतवर्ष और जम्बूद्वीप कहा जाता था। सर, इंडिया और हिंदुस्तान भी तो हमारे देश को कहा जाता है।
0: बिल्कुल।
1: ये नाम कैसे आए?
0: लगता है सब कुछ जानकारी मानोगे। चलो ठीक है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि इंडिया नाम कैसे आया। देखो बच्चों, इंडिया नाम इंडस से आया है। तुम्हें याद है ना कि सिंधु नदी को अंग्रेजी में इंडस रिवर कहते हैं?
1: जी सर।
0: हाँ, तो अभी अभी मैंने बताया था कि भारत में फारसी लोग आए, लेकिन आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व यूनानियों का भी हमारे देश में आगमन हुआ।
1: अच्छा।
0: हाँ, यूनानी जब हमारे देश में आए तो उन्होंने सबसे पहले सिंधु नदी को पार किया।
1: ओ।
0: और सिंधु नदी को इंडोई या इंडिके कहा।
1: ऐसा क्यों कहा उन्होंने?
0: उनके साथ भी भाषा की समस्या थी। हाँ।
1: तो इसका मतलब है कि यूनानियों के लिए सिंधु कहना मुश्किल था और इंडो या इंडिके कहना ज्यादा आसान था।
0: हाँ। और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। अच्छा, तुम्हें एक बात और बता दूं, और वो ये कि प्राचीन यूनानी लोग भारत में रहने वालों को इंडोई कहते थे।
1: अच्छा। इंडोई यानी इंडिया के रहने वाले इंडोई कहे जाते थे।
0: बिल्कुल।
1: तो इस तरह से नाम पड़ा इंडिया।
0: हाँ?
1: और हिंदुस्तान?
0: देखो, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग तुर्क और मुगलों ने किया। वो जिन इलाकों से आए थे उन इलाकों के नाम के आगे प्रायः स्थान शब्द हुआ करता था, जैसे
1: अफगानिस्तान।
0: बिल्कुल सही।
1: बलूचिस्तान।
0: सही।
1: तुर्किस्तान।
0: बिल्कुल। और उज़्बेकिस्तान वगैरह वगैरह। और बच्चों, शायद स्थान का अर्थ स्थान से रहा हो।
1: सर, अब हमें हमारे सवालों का हल मिल गया।
0: अच्छा?
1: हाँ, बिल्कुल।
0: अरे वाह, क्या बात है।
1: सर, आपने हमें बड़ी मजेदार जानकारी दी। हमारे देश के इतने सारे नाम हैं, लेकिन हमें किस नाम का प्रयोग करना चाहिए?
0: बड़ा अच्छा प्रश्न किया तुमने। देखो, हमारे संविधान की अंग्रेजी प्रति के पहले अनुच्छेद में ही ये स्पष्ट करते हुए लिखा गया है, इंडिया दैट इज भारत। हिंदी में कहा गया है, इंडिया जो कि भारत है।
1: अच्छा।
0: हाँ। अच्छा, ये बताओ, तुम्हें संविधान की प्रस्तावना याद है?
1: जी, प्रस्तावना की शुरुआत में कहा गया है, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया।
0: बहुत अच्छे। तो हमारे देश का नाम हुआ भारत, जिसे इंडिया भी कहते हैं। समझ में आया?
1: जी सर।
0: शाबाश। अच्छा, आज जो भी तुमने जाना है, समझा है, उस जानकारी को तुम कल क्लास में सबके साथ बांटोगे।
1: सबके साथ?
0: हाँ, सबके साथ।
2: तो साथियों, कैसी लगी आपको अपने प्यारे देश
3: भारत अर्थात इंडिया
2: के विषय में ये जानकारी? अच्छी लगी ना? इतने सारे नाम शायद ही किसी और देश के रहे होंगे। आज हमने जाना कि हमारे देश का नाम है
3: भारत अर्थात इंडिया।
4: अभी आपने सुना कार्यक्रम भारत अर्थात इंडिया, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम पहली उड़ान।
5: इस कार्यक्रम में विश्व इतिहास में मनुष्य की पहली उड़ान के बारे में रोचक जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि कैसे गर्म गैस के गुब्बारे पर मनुष्य ने पहली बार उड़ान भरी। इस घटना ने भविष्य में आधुनिक वायुयानों के आविष्कार का मार्ग प्रशस्त किया।
6: आपने आकाश में उड़ते पक्षियों को तो देखा ही होगा, देखा है ना?

0: पक्षियों को उड़ते हुए देखकर आकाश में उड़ने की लालसा मनुष्य के मन में शुरू से ही रही है। और आज मनुष्य रॉकेट, अंतरिक्ष यानों और हवाई जहाज की सहायता से आकाश में उड़ सकता है। मगर ये कैसे संभव हुआ, आइए आज हम आपको बताते हैं। आज से लगभग 200 वर्ष पहले की बात है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में दो भाई रहते थे, जोसेफ और स्टीफन, जिनकी आयु होगी लगभग 15-16 वर्ष। दोनों भाई अक्सर आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को देखते और हवा में उड़ने की लालसा किया करते। एक दिन की बात है, दोनों भाई घर में खाना खा रहे थे।
1: भाई वाह, आज तो मजा आ गया। कितना बढ़िया खाना बनाया है माँ ने, क्यों जोसेफ?
2: हाँ स्टीफन भाई, हमारी माँ से बढ़िया खाना भला और कोई बना भी सकता है?
3: तुम लोग खाना खाओगे या बातें ही करते रहोगे? जल्दी से खा लो बेटा, मुझे अभी कबूतरों को भी दाना पानी देना है।
2: अच्छा माँ, क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ?
3: हाँ पूछो बेटा।
2: क्या हम भी कबूतर की तरह नहीं उड़ सकते?
3: बेटा भला हम कैसे उड़ सकते हैं, हमारे पास पंख थोड़े ही हैं।
1: लेकिन माँ,
3: ओफो, तुमसे बातें करते करते मैं तो भूल ही गई कि चूल्हा भी बुझ रहा है। ठहरो जरा, जोसेफ
2: जी,
3: जरा वो फूकनी तो देना बेटा।
2: अच्छा माँ, ये लो माँ।
3: ला।
1: ओ, कितना धुआं भर गया है कमरे में, जल्दी करो माँ।
2: मिल गया, हाँ मिल गया मुझे। अरे मिल गया मुझे।
3: क्या मिल गया
2: मुझे? माँ,
3: क्या मिल गया? क्या मिल गया
2: मुझे? मिल गया।
1: क्या मिल गया भाई? क्या मिल गया
3: सब? क्या हो गया तुम्हें बेटा, बताओ तो सही, क्या हो गया है?
2: माँ मुझे उड़ने का तरीका मिल गया। हाँ उड़ने का तरीका मिल गया।
1: जोसेफ होश में आओ भाई, क्या हुआ?
2: स्टीफन, स्टीफन, माँ माँ माँ, सर इस कमरे के धुएं को देखो। हाँ इस कमरे के धुएं को देखो। इसमें इसमें क्या उड़ रहा है बताओ? बताओ उसमें क्या उड़ रहा है?
3: कुछ भी तो नहीं।
1: कुछ भी तो नहीं है।
2: ओ नहीं स्टीफन, नहीं, ध्यान से देखो। हाँ ध्यान से देखो, क्या धुएं के साथ राख नहीं उड़ रही है? उड़ रही है ना?
1: वो तो है मगर
2: इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ स्टीफन कि धुआं राख को उड़ा सकता है।
1: हाँ, कहते तो तुम ठीक हो।
2: तो फिर क्यों ना हम कुछ प्रयोग करें हैं?
1: हाँ।
2: मुझे तो लगता है कि अगर हम किसी हल्के लिफाफे में धुआं भर दें तो वो जरूर ऊपर की ओर उड़ेगा।
1: हाँ, ये बात तो है। चलो चलो जोसेफ, चलो देखते हैं।
2: ठीक है, आओ मेरे साथ।
3: अरे सुनो, अरे खाना तो खाते जाओ। स्टीफन, जोसेफ, सुनो तो।
0: और फिर क्या था, दोनों भाइयों ने झटपट कई प्रयोग कर डाले। इसमें कई बार उन्हें असफलता हाथ लगी, लेकिन वो पूरी लगन से अपने काम में जुटे रहे। और एक दिन सचमुच धुएं से भरा लिफाफा छत से जा टकराया। इस प्रयोग की सफलता से उत्साहित होकर दोनों भाई और अधिक परिश्रम से अपने प्रयोग करते रहे। उनकी योजना थी एक बड़ा गुब्बारा बनाकर उसे उड़ाने की, और आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने एक ऐसा गुब्बारा बना ही लिया। सन 1783 सितंबर का महीना था। दोनों भाई एक बड़े मैदान में अपने बनाए हुए गुब्बारे के पास खड़े थे। इस करतब को देखने के लिए मैदान में भारी भीड़ जमा थी।
4: अरे गुब्बारा गुब्बारा कहाँ उड़ेगा?
5: क्या बात है दोस्त, यहाँ तो बड़ी भीड़ है।
2: हाँ भाई भीड़ तो है,
4: लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है कि ये लड़के मजाक ही कर रहे हैं। अरे यार भला हवा में कोई चीज उड़ सकती है क्या?
5: अभी पता चल जाएगा। पर

0: यहाँ तो इतनी भीड़ है कि इस तरफ से कुछ भी साफ साफ नहीं दिख पाएगा।
1: तो चलो उस तरफ चलते हैं, उधर भीड़ जरा कम है।
0: आओ, आओ, यही ठीक रहेगा। आओ चलो।
2: ना जाने क्या करेंगे,
3: नतीजे भला कोई चीज उड़ी
2: अच्छा मजा आ गया, लगता है हो गया है।
3: अरे भाई साहब जरा रास्ता दीजिए, आगे जाने दीजिए।
2: भाई साहब हट जाइए।
0: अरे आ गए, आ गए। यहाँ से हम सब कुछ साफ साफ देख सकते हैं।
1: अरे अरे वो देखो, वो सामने एक बड़ा सा गुब्बारा रस्सी से बंधा हुआ है।
0: अरे ये क्या, जोसेफ और स्टीफन गुब्बारे से एक टोकरे को बांध रहे हैं। वो देखो टोकरे में, हाँ
1: अरे अरे टोकरे में तो एक भेड़ है। अरे वो देखो एक मुर्गा और साथ में एक बत्तख भी है।
0: हाँ, क्या ये भी गुब्बारे के साथ उड़ेंगे?
1: दोस्त लगता तो कुछ ऐसा ही है। अरे अरे अरे अरे वो देखो, स्टीफन हाथ से कुछ इशारा कर रहा है।
0: और एक आदमी गुब्बारे की रस्सी खोल रहा है।
1: अरे अरे अरे वो गुब्बारा तो ऊपर की ओर जा रहा है। अरे वाह,
3: क्या बात है, क्या बात है,
0: मान गए मान गए, कमाल कर दिया बच्चों ने।
1: ये क्या हो रहा है, कहीं मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही है? अरे देखो वो गुब्बारा तो वाकई ऊपर जा रहा है।
0: अरे सचमुच उड़ रहा है, सचमुच।
3: अरे वाह, अरे यार ये तो कमाल हो गया,
0: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। देखो देखो गुब्बारा बहुत ऊंचा चला गया।
3: अरे शाबाश, अरे इन दोनों लड़कों ने कमाल निकाल दिया, आज तक ऐसा नहीं हुआ।
0: वो देखो वो देखो गुब्बारा नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा, उधर उधर जा रहा है। देखो पेड़ों की तरफ,
3: अरे
0: देखो,
3: अरे हां हां, अरे वो पेड़ों की तरफ जा रहा है। अरे बाप रे, अरे वो पेड़ से जाकर टकरा गया। अरे गिर गया, अरे गिर गया,
4: साथियों। ये थी जोसेफ और स्टीफन की पहली उड़ान। क्या आप जानते हैं, ये गुब्बारा लगभग 8 मिनट तक हवा में उड़ा और बाद में एक पेड़ से जा टकराया। और हाँ, जिस रस्सी से टोकरा बंधा हुआ था वो रस्सी भी टूट गई और सभी यात्री धड़ाम से नीचे आ गिरे। सिर्फ मुर्गे का एक पंख टूटा, शेष यात्री यानी भेड़ और बतख बिल्कुल ठीक थे। ठीक इसके 2 महीने बाद यानी नवंबर सन 1783 में जोसेफ और स्टीफन ने एक गुब्बारा और उड़ाया, जिस पर खुद उन्होंने उड़ान भरी। ये गुब्बारा लगभग 900 मीटर ऊंचा उड़ा और इसने 2 किलोमीटर की यात्रा की। इस तरह शुरू हुआ उड्डयन का युग। लेकिन गुब्बारे में उड़ना बहुत जोखिम का काम था। तेज हवा गुब्बारे को किसी भी दिशा में उड़ा ले जाती थी। कई बार मनुष्य को इस उड़ान में अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ता था। लेकिन मनुष्य ने हार नहीं मानी और वो इस दिशा में खोज करता रहा। आखिर में अमेरिका के 2 भाइयों विल्बर और ऑलिवर राइट, जिन्हें हम राइट ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं, उन्होंने हवाई जहाज का एक ऐसा नमूना विकसित किया जो पेट्रोल से उड़ सकता था। और इस तरह साकार हुआ मनुष्य का हवा में उड़ने का स्वप्न।
5: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पहली उड़ान। और अब इसी के साथ हमारा आज का प्रसारण यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
6: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
5: नमस्कार, नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे NCERT द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग की 1299वीं कड़ी। इसी के साथ ही ये प्रायोजित कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तराखंड के लोकगीत।

आइए आप सुनते हैं कार्यक्रम में सीमा और अनिल सहगल और साथियों के गाए गाया ये गढ़वाल।

0: भागीरथी देवी के गाए इसी गढ़वाली लोकगीत के साथ अब आज का हमारा उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम श्रोताओं यहीं पर संपन्न होता है। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:15 होने को हैं। कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता, ऊर्जा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप अहमदाबाद में शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के साथ व्यापक चर्चा की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की और ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा, ऑटोमोबाइल आदि क्षेत्रों में सहयोग के नए रास्ते तलाशे। मंत्रालय ने कहा कि दोनों नेताओं ने

0: आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मंत्रालय ने कहा कि दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने तथा वैश्विक दक्षिण के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रोड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी और परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। इससे पहले सुश्री रोड्रिगेज ने विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनकी मुलाकात से दोनों देशों के बीच सहयोग और मजबूत होगा। विदेश मंत्रालय ने बताया कि वेनेजुएला का प्रतिनिधिमंडल ऊर्जा, फार्मास्यूटिकल्स और ऑटोमोबाइल क्षेत्रों से जुड़े कई स्थलों का दौरा करेगा। इसका उद्देश्य भारत की तकनीकी और औद्योगिक क्षमताओं का जायजा लेना तथा सहयोग के अवसरों का पता लगाना है। भारत ऊर्जा और निवेश के क्षेत्रों में वेनेजुएला का एक महत्वपूर्ण साझेदार रहा है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा कि उनकी यात्रा भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने का अवसर प्रदान करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल गुजरात और दमन की यात्रा पर रहेंगे। वे गुजरात के सूरत में सड़क, बिजली और औद्योगिक क्षेत्रों में 18,800 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री दमन में लगभग 2,970 करोड़ रुपए की लागत वाली विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। उत्तर पूर्वी परिषद NEC का 73वां पूर्ण सत्र मेघालय के शिलंग में चल रहा है। गृहमंत्री अमित शाह सत्र की अध्यक्षता कर रहे हैं। ये पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों और परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक है। बैठक में पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे के विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा हो रही है। बैठक में क्षेत्रीय विकास के महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए गठित मुख्यमंत्री उच्च स्तरीय कार्यबलों द्वारा की गई प्रगति पर चर्चा प्रमुखता से शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने कहा कि इन विचार विमर्शों से राज्यों और हितधारकों के बीच समन्वित कार्रवाई को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है, जिससे साझा विकास लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके। बैठक में पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री श्रीकांतो मजूमदार, गृह सचिव गोविंद मोहन और मंत्रालय के सचिव संजय जाजू उपस्थित हैं। इसके अलावा मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड तथा सिक्किम के राज्यपाल और मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया।
1: ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है नॉर्थ ईस्ट के लिए। इसके द्वारा है बहुत सारे स्कीम के बारे में, प्रोजेक्ट के बारे में यहाँ पर डिसाइड होता है। और 2014 के बाद तो नॉर्थ ईस्ट का जो भी फंड है, डेवलपमेंट फंड है, इसके द्वारा बहुत सारे योजना शुरू हो चुका है, काम हो रहा है।
0: उत्तर पूर्वी परिषद पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए सर्वोच्च क्षेत्रीय योजना निकाय के रूप में कार्य करती है। ये क्षेत्र में समन्वित विकास को बढ़ावा देने और सहकारी संघवाद को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितेन प्रसाद ने कहा है कि वैश्विक व्यवधानों और आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत वैश्विक बाजार में अन्य देशों की तुलना में बेहतर प्रदर्शन कर रहा है। श्री प्रसाद ने नई दिल्ली में ग्लोबल बिजनेस रिसर्च कॉन्फ्रेंस GBRC के उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने हाल ही में कई देशों के साथ सम्पन्न हुए मुक्त व्यापार समझौतों की सराहना भी की। भारतीय विदेश व्यापार संस्थान द्वारा आयोजित GBRC का उद्देश्य वैश्विक व्यापार से जुड़े विषयों और चुनौतियों पर शोध के लिए चर्चा का अवसर प्रदान करना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 वर्षों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी

0: बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। ये अभियान राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माने जाने वाले व्यक्तियों के खिलाफ शुरू किया गया था। गांधीनगर में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राज्य की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले प्रत्येक घुसपैठिए का पता लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग

0: लगाया जाएगा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी और उन्हें बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अवैध प्रवासियों को आश्रय, रोजगार या सहायता प्रदान करके कानून का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी।
1: 6,200 से ज्यादा लोगों की तहकीकात की जा रही है, इनमें से 362 लोग अभी तक बांग्लादेशी पाए गए हैं। साथ ही जिन लोगों ने उनको रहने के लिए घर दिया होगा और जिन्होंने उनको नौकरी दी है लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे होंगे, उन पे भी एक कड़े कदम उठाने के लिए एक पूरी टीम इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। गुजरात पुलिस घर घर और गांव गांव तक ये तहकीकात चालू रखेगी।
0: बिहार के मुजफ्फरपुर में एक निजी अस्पताल में भीषण आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। ये घटना कल रात ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में हुई। गंभीर मरीजों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। मुजफ्फरपुर के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
2: ICU 14 फ्लोर पर है, उसी में आग लगने की बात है, शॉर्ट सर्किट। कुल 13 से 15 लोग भर्ती थे, लेकिन 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म है, बाकी लोग अन्य जगह भेजा गया अलग अलग अस्पताल में इलाज के लिए। तो मृत्यु का आंकड़ा बढ़ सकता है हालांकि, लेकिन अभी सूची कहना जल्दबाजी होगी, हम लोग जाँच कर रहे हैं।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मालवीय नगर अग्निकांड के घायलों से मिलने आज साकेत के निजी अस्पताल पहुंची। मुख्यमंत्री ने घायलों तथा उनके परिजनों से बातचीत की और अधिकारियों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए। श्रीमती गुप्ता ने प्रत्येक मृतक के परिजन को 10-10 लाख रुपये और गंभीर रूप से घायलों को 5-5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री कार्यालय ने कहा कि घायलों के चिकित्सा खर्च की व्यवस्था की जाएगी। मालवीय नगर में कल एक होटल में आग लगने से 21 लोगों की मृत्यु हो गई। दिल्ली पुलिस ने बताया कि मृतकों में 9 भारतीय और 12 विदेशी नागरिक हैं। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज निहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। 10 जनवरी 1950 को जन्मे निहलानी ने 1982 में आई फिल्म हथकड़ी से निर्माता के रूप में अपने करियर की शुरुआत की। उन्हें 1986 में आई फिल्म इल्जाम से अभिनेता गोविंदा को पहला बड़ा ब्रेक देने का श्रेय दिया जाता है। जनवरी 2015 में निहलानी को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने सख्त नए दिशा निर्देश लागू किए, जिनके तहत ए रेटिंग वाली फिल्मों में भी कुछ अपशब्दों पर प्रतिबंध लगा दिया गया और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने या हिंसा दर्शाने वाली सामग्री को सीमित करने का प्रयास किया गया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ईरान के खिलाफ आगे की सैन्य कार्रवाई से रोकने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। ये चौथी बार है जब प्रतिनिधि सभा ने ट्रंप की युद्ध संबंधी शक्तियों को सीमित करने की कोशिश की है। आलोचकों का कहना है कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को अमरीकी संसद की मंजूरी मौसम विभाग ने आज केरल में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के आगमन की पुष्टि की है। मॉनसून 3 दिन देर से आया है। 1 जून से केरल में मॉनसून के आने की संभावना थी। विभाग ने 9 जून तक केरल और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। केरल से हमारी संवाददाता ने बताया है कि कई जिलों में तेज बारिश हो रही है।
3: केरलम के 6 जिलों में आज कुछ जगहों पर तेज बारिश की संभावना को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो रही है और आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के पहुंचने की संभावना है। केरलम में कई जगहों पर रात से अब तक लगभग 5 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। केरलम से स्मिथ एम पलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आकर्षिता सिंह।
0: मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराकल में भी भारी वर्षा का अनुमान लगाया है। विभाग ने अगले 2-3 दिनों के दौरान लक्षद्वीप, तटीय कर्नाटक और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी इसी तरह की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। दिन के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, छत्तीसगढ़, हरियाणा, चंडीगढ़ और दिल्ली में कुछ स्थानों पर आंधी की प्रबल संभावना है।

0: गुजरात के अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के पहले संस्करण का शुभारंभ हुआ, जो वैश्विक खेलों में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम को इस भव्य आयोजन में वर्चुअल रूप से शामिल होकर अपनी शुभकामनाएं देंगे। पूरे विश्व से योग प्रेमी और एथलीट प्रतियोगिता के लिए एकत्रित हुए हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि चैंपियनशिप का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिताओं को योग में शामिल करना है।
1: वर्ल्ड योगासन के तत्वाधान में योगासन भारत द्वारा आयोजित इस ऐतिहासिक आयोजन का मुख्य उद्देश्य विश्व स्तर पर बहु खेल प्रतियोगिता में योग को शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह पहल वैश्विक स्तर पर योग और कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के साथ साथ योगासन को प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में बढ़ावा देने का एक प्रयास है। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
0: इस बीच प्रधानमंत्री ने देशवासियों से नियमित रूप से योग करने का आग्रह किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में एक संस्कृत श्लोक साझा करते हुए उन्होंने कहा कि योग के नियमित अभ्यास से शरीर स्वस्थ और मन शांत रहता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग को दैनिक जीवन का हिस्सा बनाकर संतुलित, स्वस्थ और ऊर्जावान जीवन जिया जा सकता है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि भारत और लाओस के बीच गहरे सभ्यतागत संबंध हैं और ये बौद्ध धर्म तथा रामायण की साझा विरासत में दिखाई देते हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में लाओस के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थोंग सावन फोम विहाने से भेंट की। इस दौरान राष्ट्रपति ने कहा कि इस वर्ष दोनों देश राजनयिक संबंधों की स्थापना की 70वीं वर्षगांठ मना रहे हैं, जो द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 149 अंक गिरकर 74,197 पर, जबकि निफ्टी 34 अंक फिसलकर 23,372 पर था। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज के बीच आज नई दिल्ली में वार्ता। ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश प्रमुख मुद्दे। गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में उत्तर पूर्वी परिषद की बैठक शिलांग में जारी। पर्यटन, कृषि, आर्थिक गलियारे का विकास, बुनियादी ढांचा और संपर्क बढ़ाने पर चर्चा। दिग्गज फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी का निधन। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर सैन्य कार्रवाई के विरोध में एकजुट। अमरीकी प्रतिनिधि सभा ने प्रस्ताव पारित किया। केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू और अहमदाबाद में पहली विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ हुआ। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। दोपहर के 2:30 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम खेती की बातें। आज इस कार्यक्रम में जानकारी का विषय है पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून की खेती। जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर राकेश मीर।
3: किसान भाइयों, जैतून एक सदा हरा भरा रहने वाला वृक्ष है, जिसकी खेती सैकड़ों वर्ष पूर्व से इसका तेल लेने के लिए की जाती रही है। भारत में अधिकतर जैतून का फल एवं तेल विदेशों से आयात किया जाता है, जिसमें प्रमुख देश इटली, स्पेन, टर्की, ग्रीस तथा सीरिया हैं। भारत में राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में जैतून की बागवानी की जा रही है। जैतून का 90% तेल इसके फल से निकलता है और इसके तेल की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बड़ी मांग है। जैतून के 1 लीटर तेल की कीमत भारत के बाजार में 500 रुपया है। जैतून के बीज में 22-25% तक तेल होता है। जैतून का तेल अपने औषधीय गुणों के कारण विख्यात है। यह खून में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा को कम करता है, साथ ही रक्तदाब को नियंत्रित करता है। यह विटामिन ई का अच्छा स्रोत है तथा खून के थक्के बनने से भी रोकता है। यह कर्क रोग में भी उपयोगी है तथा यह शरीर की रोग विरोधी क्षमता को भी मजबूत करता है। इसका फल डाइट्री फाइबर का भी अच्छा स्रोत है। राजस्थान सरकार ने जैतून की खेती को बढ़ावा देने के लिए इसकी खेती हेतु विशेष अनुदान

कार्यक्रम भी घोषित किए हैं। उत्तराखंड की जलवायु को देखते हुए यहाँ इसकी खेती की अधिक संभावना है तथा अगर इसकी वैज्ञानिक तरीके से बागवानी की जाए तो किसान भाई इसकी उपयोगिता को देखते हुए इससे अच्छा धन कमा सकते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून की बागवानी कम उर्वरकता वाली भूमि में भी की जा सकती है। जैतून के वृक्ष के विकास के लिए उचित जल निकास वाली भूमि आवश्यक होती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून की बागवानी समुद्र तल से 1500 मीटर की ऊंचाई तक आसानी से की जा सकती है। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए सबसे उत्तम तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसके लिए अधिक लंबे समय तक गर्म और शुष्क मौसम तथा पानी की कमी हानिकारक होती है, जिससे इसके फल गिरने लगते हैं। इसकी अच्छी बढ़वार के लिए 100 सेंटीमीटर वर्षा प्रतिवर्ष आवश्यक है तथा अधिक पाला गिरने वाला क्षेत्र भी इसके लिए हानिकारक होता है। जैतून के फल उत्पादन के लिए सूर्य की रोशनी आवश्यक है तथा फल बनने के लिए इसे हल्की ठंड की आवश्यकता होती है। जैतून की दो प्रमुख प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तेल वाली प्रजाति है जिसमें मुख्य रूप से कोरेटिना, कैनिंगो, एगल लांग ड्यू, फंट ओइयो हैं तथा दूसरी अचार वाली प्रजाति में मुख्य रूप से मिशन, कार्निक्रोबा तथा ग्रोसीन है। जैतून की पौध दो विधियों से तैयार की जाती है। पहली विधि बीज द्वारा तथा दूसरी विधि कटिंग द्वारा है। बीज से नर्सरी तैयार करने के लिए सितंबर अक्टूबर माह में पके हुए फलों को इकट्ठा किया जाता है। इसको फिर 10% कास्टिक सोडा के घोल में घोलकर गुठली को गूदे से अलग किया जाता है तथा गुठली को धोया जाता है। इन गुठलियों को तुरंत ऊंची क्यारियों में बोया जाता है जिसमें लाइन से लाइन की दूरी 15 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी 5 सेंटीमीटर रखी जाती है तथा क्यारियों में अच्छे जमाव के लिए इसकी निरंतर सिंचाई की जाती है। मार्च अप्रैल माह में बीज का जमाव शुरू हो जाता है। कटिंग लगाने के लिए 10 से 15 सेंटीमीटर की कटिंग जिसमें 3 से 4 आँख होती है उसका चयन किया जाता है तथा उसे अधिक आर्द्रता वाली जगह में लगाया जाता है। 7 से 8 सप्ताह में जड़ निकलने लगती हैं। इसके बाद इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। मार्च तथा अप्रैल का समय ग्राफ्टिंग का उपयुक्त समय होता है। ग्राफ्टिंग के अलावा इसमें पैच बडिंग तथा आई बडिंग भी कर सकते हैं। जैतून के पौधों को लगाने से पूर्व उस जगह के पुराने पेड़ एवं झाड़ियों को अच्छी तरह जड़ उखाड़कर जमीन का समतलीकरण किया जाता है तथा पूरे क्षेत्र की अच्छी तरह जुताई की जाती है। जैतून का वृक्ष लगाने के लिए 8 सप्ताह पूर्व गड्ढों की खुदाई करनी चाहिए तथा 60x60 सेंटीमीटर आकार के होने चाहिए। गड्ढों को 7x7 मीटर की दूरी पर खोदना चाहिए। क्षेत्र की मृदा परीक्षण करवाने के बाद ही खाद का उपयोग करना चाहिए। गड्ढों में सड़ी हुई गोबर की खाद 10 किलोग्राम, नाइट्रोजन 75 ग्राम, फास्फोरस 50 ग्राम, पोटास 50 ग्राम, सुपरफास्फेट 300 ग्राम, कैल्शियम अमोनेट नाइट्रेट 300 ग्राम, म्यूरेट ऑफ पोटास 80 ग्राम प्रति पेड़ के हिसाब से 10 वर्ष तक देते हैं। गोबर की खाद हर वर्ष 5 किलोग्राम बढ़ाकर देते हैं। हर वर्ष बढ़ाते हुए अनुपात में 10 वर्षों तक रासायनिक खाद दी जाती है। नाइट्रोजन को 3 भागों में दिया जाता है। 1/2 भाग जाड़ों की वर्षा में, 1/4 भाग फरवरी मार्च में तथा 1/4 भाग जून जुलाई में दिया जाता है। पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून के पौधे की रोपाई फरवरी मार्च माह में की जाती है ताकि पौधों को पाले तथा ठंड से नुकसान न हो। इसकी रोपाई जुलाई अगस्त माह में की जाती है। जैतून के पौधों को लगाते समय इसके साथ 10 फीट लंबी डंडी लगाई जाती है जो कि पौधों को सहारा देने के लिए लगाई जाती है। जैतून का पौध लगाने के बाद तुरंत इसकी सिंचाई की जाती है। अधिक गर्म और शुष्क मौसम में निरंतर सिंचाई करनी चाहिए। फूल आने से 1 महीने पहले भी पेड़ों में सिंचाई की जाती है।
फूल आने

0: का समय लगभग 2 सप्ताह का होता है। फूल आने के बाद बगीचे की सिंचाई करनी चाहिए। फल बनने से 1 माह पूर्व पौधों की सिंचाई की जाती है ताकि फल का विकास अच्छी तरह हो सके। जैतून का बगीचा बनने में 3 से 4 वर्ष का समय लग जाता है। जैतून के वृक्ष की अच्छी बढ़वार हेतु कटाई छटाई का विशेष महत्व है। अगर आसमान साफ है और जैतून में फल आने की अवस्था नहीं है तो इसकी छटाई किसी भी समय की जा सकती है। प्रथम वर्ष में पेड़ को जमीन से 60 से 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर काटा जाता है ताकि उसके केंद्र से नई शाखाएं विकसित हों। तब 3 से 5 शाखाओं का चयन किया जाता है जो कि एक दूसरे से लगभग 30 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। जैतून के पेड़ में फल 1 साल पुरानी शाखाओं में लगता है। फल की तुड़ाई के तुरंत बाद पेड़ों को हर वर्ष हल्की छटाई करनी चाहिए और मृत घनी शाखाओं को निकाल देना चाहिए जिससे पेड़ में अधिक रोशनी आती है, फल वाली टहनी भी बढ़ती है और फल का आकार भी बढ़ता है तथा फल लंबे समय तक प्राप्त होता है। जैतून के पेड़ की छटाई करने से पेड़ को अच्छा आकार मिलता है तथा पेड़ में अधिक फलों का उत्पादन होता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए पेड़ों के नीचे पलवार का उपयोग करते हैं जिससे नमी भी बनी रहती है। इसके लिए पेड़ों की सूखी पत्तियों का इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन हर वर्ष इसे बदलना जरूरी होता है। बगीचे के बीच में खरपतवार नियंत्रण के लिए दलहनी फसलों का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खरपतवार नियंत्रण के लिए गैमेक्सीन नामक खरपतवारी नाशी का भी प्रयोग किया जाता है जिसके लिए 40 मिलीलीटर दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर प्रति नाली के हिसाब से छिड़काव किया जाता है। इसके अलावा ग्लाइफोसेट 4 मिलीलीटर का 15 लीटर पानी में घोल बनाकर प्रति नाली के हिसाब से भी छिड़काव किया जा सकता है। कम पके हुए जैतून के फल वजन एवं गुणवत्ता में कम होते हैं तथा अधिक पके हुए फल अधिक अम्लीय हो जाते हैं। अतः इसकी ठीक समय पर ही फलों की तुड़ाई की जाती है। फलों की तुड़ाई का उचित समय वह होता है जब फल का रंग काले बैंगनी रंग का होता है तो इस अवस्था में उसमें खुशबू अधिक होती है। जैतून का फल तोड़ने के लिए फलों में लगी शाखाओं को लंबी डंडी से मारा जाता है और फल को इकट्ठा किया जाता है लेकिन इसमें शाखाओं को नुकसान होता है और फल की गुणवत्ता भी कम होती है। अतः इसके फलों की तुड़ाई हाथ से करनी चाहिए। किसान भाइयों, हम वैज्ञानिक तकनीक से जैतून की बागवानी करते हैं तो एक नाली में लगभग 15 लीटर तेल प्राप्त होता है जिससे 7 से 8 हज़ार रुपये की आय प्राप्त होती है। जैतून की बागवानी के साथ साथ अंतः फसली फसलों को उगाकर अतिरिक्त आय भी प्राप्त की जा सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे पर्वतीय क्षेत्रों में जैतून की खेती विषय पर डॉक्टर राकेश मेहर की वार्ता। इसी के साथ ही खेती की बातें कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है।

संध्या 6:30 पर उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, 6:50 पर गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार, 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हम आपके लिए लेकर आएंगे हमारे देहरादून केंद्र से।

सायंकालीन सभा में संध्या 5:05 पर आप सुनेंगे कुमाऊनी लोकगीतों का कार्यक्रम शैल स्वर। 5:15 पर युवा श्रोता सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युवाणी। इस कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा पर्यावरण के लिए जीवन शैली। उत्तरायण कार्यक्रम होगा 5:45 पर। इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे चर्चा अतिक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भक्ति संगीत कार्यक्रम होगा 6:41 पर। इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे विजय शर्मा और पंडित भीमसेन जोशी के गाए भक्ति गीत। किसानवाणी कार्यक्रम होगा 7:00। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज की बातें होंगी कृषि में नवाचार और लाभ विषय पर। इसी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे खेती बचाओ अभियान, टिकाऊ कृषि पद्धतियाँ, फसल चक्र और संरक्षण जुताई पर वार्ता। इसी कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सुनवाएंगे पहाड़ी महिला कृषकों के लिए पशुपालन संबंधित श्रम साध्य कार्य कम करने वाली प्रौद्योगिकियां विषय पर डॉक्टर दीप्ति कोठारी से भेंट वार्ता। फिल्म संगीत 7:46 पर और सबरस कार्यक्रम आप सुनेंगे 8:00। इंद्रधनुष, जी हाँ, फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आएंगे 9:15 पर। 9:30 पर कार्यक्रम होगा धरोहर। आज इस कार्यक्रम में आप सुनेंगे संगीत रूपक के अंतर्गत जीतू बगटवाल का भाग 1।

श्रोताओं, ये थी जानकारी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम एक ही फनकार।

स्वागत है आप सभी श्रोताओं का फिल्म संगीत के कार्यक्रम एक ही फनकार में। सभी को कविता का प्रेम भरा नमस्कार। श्रोताओं, हमारी आज की इस कार्यक्रम की फनकार हैं आज ही के दिन वर्ष 1936 में जन्मी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की प्रसिद्ध कलाकार, बेहतरीन अभिनेत्री नूतन समर्थ। जी हाँ, नूतन समर्थ का जन्म आज के दिन 4 जून को 1936 में मुंबई में हुआ। हिंदी सिनेमा की सबसे प्रसिद्ध अभिनेत्री नूतन भारतीय सिनेमा जगत की एक ऐसी अभिनेत्री हैं, या यूं कहा जाए इनको एक ऐसी अभिनेत्री के तौर पर याद किया जाता है जिन्होंने फिल्मों में अभिनेत्रियों के महज शोपीस के तौर पर इस्तेमाल किए जाने की परंपरागत विचारधारा को बदलकर उन्हें अलग पहचान दिलाई। सुजाता, बंदनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, सरस्वती चंद्र और मिलन जैसे

सी। कई हिंदी फिल्मों में अपने उत्कृष्ट अभिनय से नूतन ने यह साबित कर दिया कि नायिकाओं में भी अभिनय क्षमता है और अपने अभिनय की बदौलत वे दर्शकों को सिनेमा हॉल तक लाने में सक्षम हैं। आइए सुनते हैं उनकी फिल्म बंदिनी का ये गीत।

दोस्तों, नूतन की माता का नाम श्रीमती शोभना समर्थ और पिता का नाम श्री कुमार सेन समर्थ था। घर में फिल्मी माहौल रहने के कारण नूतन अक्सर अपनी माँ के साथ शूटिंग देखने जाया करती थी। इसी वजह से भी उनका रुझान फिल्मों की ओर हो गया। वो भी अभिनेत्री बनने का ख्वाब देखने लग गई। नूतन ने बतौर बाल कलाकार फिल्म नल दमयंती से अपने सिने करियर की शुरुआत की। दोस्तों, इसी बीच नूतन ने अखिल भारतीय सौंदर्य प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और वो प्रथम चुनी गई। लेकिन बॉलीवुड से किसी निर्माता का ध्यान उनकी ओर नहीं गया, इससे शायद उन्हें काफ़ी ठेस पहुंची। 1950 में प्रदर्शित फिल्म हमारी बेटी में नूतन को अभिनय करने का मौका मिला। इस फिल्म का निर्देशन उनकी मां शोभना समर्थ ने किया। इसके बाद नूतन ने हम लोग, शीशम, नगीना और शवाब जैसी कुछ फिल्मों में अभिनय किया, लेकिन इन फिल्मों में वो कुछ खास पहचान नहीं बना सकी। वर्ष 1955 में प्रदर्शित फिल्म सीमा से नूतन विद्रोहिणी नायिका के सशक्त किरदार से रुपहले पर्दे पर चमक उठी। दोस्तों,

नूतन ने कई फिल्मों में काम किया, जैसे पेइंग गेस्ट, तेरे घर के सामने, लेकिन उन्होंने अपनी फिल्मों में एक पारदर्शिता रखी। वो हर रोल में फिट बैठती थी। आइए अब आपको सुनवाते हैं उनकी फिल्म खानदान का एक गीत।

दोस्तों, नूतन की प्रतिभा केवल अभिनय तक ही सीमित नहीं थी। वो गीत और गज़ल लिखने में भी काफ़ी दिलचस्पी लिया करती थी। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में बतौर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री सर्वाधिक फिल्म फेयर प्राप्त करने का कीर्तिमान नूतन के नाम दर्ज है। नूतन को अपने सिने करियर में 5 बार सुजाता, बंदिनी, मैं तुलसी तेरे आंगन की, सीमा, मिलन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नूतन को वर्ष 1974 में

भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। इस महान अभिनेत्री ने 21 फरवरी 1991 को अपनी आखिरी सांसें ली। आइए सुनते हैं इनकी फिल्म सौदागर का गीत।

सौदागर फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का हमारा एक ही फनकार फिल्म संगीत का एक कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। श्रोताओं, अपना रेडियो सेट छोड़कर कहीं ना जाएं, क्योंकि पेश है फिल्म संगीत का एक और दिलकश कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत।

सुर और संगीत के इस प्यारे से कार्यक्रम में जुड़े सभी श्रोताओं का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन। चलिए चलते हैं गीतों की एक और हसीन दुनिया में और सुर संगीत की लहरों में, मोहब्बत के तरानों में। आइए शुरू करते हैं सदाबहार फिल्मी गीतों की सतरंगी दुनिया।

अभी आप सुन रहे थे आर.डी. बर्मन का गाया आर पार फिल्म का गीत। गीत आनंद बख्शी का था और इस गीत को संगीत में सवारा था आर.डी. बर्मन ने। आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया आकाशदीप फिल्म का गीत। गीत मजरू सुल्तानपुरी का है और संगीत चित्रगुप्त का।

अनोखी अदा। अभी आप सुन रहे थे इस फिल्म का गीत लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत मजरू सुल्तानपुरी का था और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का। दोस्तों, ये दिल शिद्दत से उस शख्स का इंतज़ार करता है जो पतझड़ में भी बहार बनकर आता है, जिसके होने से हम इस बेकरार दिल पर और ज़्यादा एहसासात को भर लेते हैं। दिल और इंतज़ार करती इन आँखों से मोहब्बत के अफसाने लिखने लगते हैं। चलिए एक ऐसा ही अफसाना आपको सुनवाती हैं, असली नकली फिल्म से लता मंगेशकर के स्वर में।

दोस्तों, संगीत वो भाषा है जो दिल से निकलकर सीधे दिल तक पहुंचती है। सुरों की यही मधुर दुनिया जीवन के हर रंग, खुशी, प्रेम, उम्मीद और यादों को खूबसूरती से सजाती है। तो आइए कार्यक्रम में अब आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोंसले का गाया, साहिर लुधियानवी का लिखा, नया दौर फिल्म का गीत।

दोस्तों, ज़िंदगी का हर पल अनमोल है और संगीत उसे और भी खूबसूरत बना देता है। आइए सुनते हैं इसी खूबसूरती को बढ़ाते हुए नीला आकाश फिल्म का गीत आशा भोंसले और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में।

नीला आकाश फिल्म के इसी गीत के साथ अब आज का हमारा फिल्म संगीत का कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत यहीं पर संपन्न होता है। कल इसी कार्यक्रम में फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे सदाबहार फिल्मी गीत FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। अपराह्न के 3:30 हुए हैं। अब हमारी आज की सभा के प्रसारण यहीं पर संपन्न होते हैं। हमारी सायंकालीन सभा में संध्या 4 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए अनुमति दीजिए।

FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर हम आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से बोल रहे हैं। संध्या के 4 बजने वाले हैं। हमारी सायंकालीन सभा के सभी प्रसारण अब आरंभ हो रहे हैं। सभा के आरंभ में हमारा प्रसारण हमारे दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: भारत के वीर सैनिक सीमाओं की रक्षा और देश की सुरक्षा में सदैव अपने कर्तव्य समर्पण और देश सेवा में निष्ठा से तत्पर रहते ही हैं। साथ ही ग्रीन इनिशिएटिव से लेकर मिशन लाइफ तक जंगल पहाड़ नदी और आकाश की भी हिफाजत में जुटे हैं। प्रोटेक्टिंग द नेशन मीन्स प्रोटेक्टिंग नेचर, यानी देश की रक्षा प्रकृति की रक्षा। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ से कैंटोनमेंट बन रहे हैं जीरो वेस्ट जोन, सोलर पावर से चल रहे हैं कैंप और प्लांटेशन ड्राइव से हर सोल्जर बन रहा है एक इको वॉरियर। ये है एक वेल ऑर्गेनाइज्ड डिसिप्लिन्ड मिशन जिसके लिए हमारी सेना जानी जाती है। और इस वर्ल्ड एनवायरनमेंट देखो, ये इनिशिएटिव और भी सशक्त और भी स्पेशल बन रहा है। भारत की धरती सलाम कर रही है अपने सपूतों को, अपने सैनिकों को। 102.6 देश के नंबर 1 रेडियो आपके अपने आकाशवाणी रेनबो पर आज का विशेष संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित है, जिसे बड़े दिल से बनाया है टीम रेनबो ने। और आज का ये स्पेशल एपिसोड आप सुन रहे हैं शाहिद के साथ, और हमारे ओबी टीम मेंबर हैं वैभव श्रीवास्तव। और हमारी रेनबो टीम पहुंची हुई है इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आर्मी कैंप दिल्ली में। तो प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं कमांडेंट गौरांग जैन के संदेश से।
1: तो आज मौजूद है आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में और हम बात करने वाले हैं यहाँ के कमांडेंट कर्नल गौरांग जैन से। सर, वेलकम टू द शो।
2: थैंक यू, और आपका यहाँ कैंप में आने के लिए और एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए धन्यवाद।
1: सर, जब लोग आर्मी के बारे में सोचते हैं, हम बात करते हैं इंडियन आर्मी की खासकर, तो हमारे जहन में आता है डिसिप्लिन, ड्रिल्स, मिलिट्री ऑपरेशंस, कोवर्ट ऑपरेशंस और ये सब चीजें। तो सर, बॉर्डर्स को सिक्योर करने

0: से लेकर पर्यावरण को सिक्योर करने तक ये बदलाव की शुरुआत कैसे हुई, प्लीज हमें बताइए।
1: देखिए, जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं तो ये सिर्फ बॉर्डर की हिफाजत के बारे में नहीं है, इसमें हमारी मिट्टी, जल, वायु सभी इस सुरक्षा के उसमें आते हैं। ये पर्यावरण संरक्षक आज सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक ये हमारे आवश्यकता बन चुकी है, और ये सिर्फ हमारे देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व इस समस्या से जूझ रहा है। फौज का और पर्यावरण का हमेशा से एक अटूट रिश्ता रहा है। आप जानते हैं कि कैंटोनमेंट हमेशा से ही हरे भरे मिलेंगे आपको, और जो हमारे सैनिक हैं इनमें साफ सफाई रखना, पेड़ पौधे लगाना, ये उनके डीएनए में है। लेकिन आज सिर्फ साफ सफाई से या पेड़ पौधे लगाने से नहीं होगा, हमें एक पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनानी पड़ेगी और हमें कल्चरली अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने मिशन ग्रीन के तहत हमारा डीकार्बनाइजेशन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अपक्षित मुक्त सैन्य भारत अभियान, जैसे कि जीरो वेस्ट इकोसिस्टम्स को हम बोलते हैं, वो चलाया जा रहा है, और ताकि हम आने वाली पीढ़ी को इसको सुरक्षित कर सके।
0: सर, क्या जीरो वेस्ट मॉडल एक्चुअल में मुमकिन है? क्या इसके बारे में आप थोड़ा विस्तार से हमें बता सकते हैं प्लीज?
1: जी हाँ, ये बिल्कुल मुमकिन है, और इसके लिए बस हमें थोड़ा माइंडसेट चेंज करने की जरूरत होती है। जीरो वेस्ट मॉडल के लिए कुछ मापदंड होते हैं, जैसे कि कोई भी वेस्ट हमारा लैंडफिल में ना जाए, वेस्ट को सोर्स पे ही 100% हम सेग्रीगेट करें, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको 100% हम इन हाउस कंपोस्ट कर सकें, कोई भी वेस्ट हम ओपन बर्निंग में ना करें या इंसिनरेशन ना करा जाए इत्यादि। जैसे मैंने बताया कि अगर ये अपनाना है तो हमें सबसे पहले अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा, वेस्ट को वेस्ट ना समझें बल्कि उसको हम रिसोर्स समझें। जिस दिन हमने वेस्ट को रिसोर्स समझ लिया, हम उसको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि रिसोर्स को हम रखते हैं और वेस्ट को हम फेंकते हैं। जैसे कि अगर आप कोई भी सामान आप देखेंगे कि उसको हमने रिसोर्स की तरह समझ के रखा है, तो या तो वो खुद ही हम यूज कर सकते हैं या कोई और, और अगर नहीं कर पा रहे हैं तो वो रिसाइकल होके कहीं ना कहीं किसी के इस्तेमाल में आ ही जाएगा।
0: सर, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स कैंप किस प्रकार से जीरो वेस्ट में तब्दील किया गया, क्या इस पूरी प्रक्रिया के बारे में आप हमें समझा सकते हैं प्लीज?
1: जी बिल्कुल। आज जैसा आप जानते हैं, पहले जितना भी वेस्ट होता था ये इकट्ठा होकर म्यूनिसिपैलिटी लैंडफिल्स में जाया जाता था, जो फिर कूड़े का पहाड़ बन गया। सो इसके लिए हमने जीरो वेस्ट के लिए सिस्टम तैयार किया। गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अनुसार वेस्ट को सोर्स पे ही चार तरीके से हम सेग्रीगेट करते हैं, जैसे ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, स्पेशल केयर वेस्ट और सैनिटरी वेस्ट। इसके अलावा हमने कोलैबोरेट किया है कई एनजीओ से या संस्थाओं से, जो कि रिसाइकल हमें इन साइंटिफिक तरीके से इसको कर सके। इसके अलावा कई उपकरण भी लगाए गए हैं। तो सब करने से इसका नतीजा ये हो रहा है कि जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है वो अब 100% हम इन हाउस यानी कि कैंप में ही कंपोस्ट कर रहे हैं, या फिर उसको हम बायोगैस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जैसे कि आपका किचन का वेस्ट हो गया या हॉर्टिकल्चर वेस्ट। जो ड्राई वेस्ट है, जैसे पेपर वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, उनको हम इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करने के बाद इन संस्थाओं को देते हैं, जो वहां पे इनको रिसाइकल करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट्स में तब्दील करते हैं, और इसी तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट का करते हैं। इसके अलावा अवेयरनेस के लिए हमने कुछ रैक्स लगाए गए, जिसको हम वॉल ऑफ काइंडनेस कहते हैं, ताकि जो सामान काम का है लेकिन शायद मेरे काम का नहीं है, उसको रीयूज करने के लिए लोग अपना वहां पे उसको डोनेट करते हैं, जैसे किताब, बुक्स, शूज, बच्चों के खिलौने, बर्तन, वो डोनेट करते हैं, और जिसको जरूरत है वो उसको वहां से ले लेता है। सो इन सब छोटी लेकिन महत्वपूर्ण जो हमने चीजें शुरू करी हैं यहाँ पे, इससे पिछले कुछ ही महीने में सिर्फ कैंप ने करीब 50 टन से भी ज्यादा वेस्ट को रिसाइकिल कर दिया गया है और लैंडफिल जाने से बचाया गया है, और इसी तरीके से बाकी कई यूनिट और हमारे स्टेशन अब जीरो वेस्ट में इस तरीके से तब्दील हो रहे हैं।
0: कहना होगा कि इनिशिएटिव्स वाकई कमाल के हैं, और आई होप कि आर्मी से इंस्पिरेशन लेके बाकी लोग भी इनिशिएटिव्स करें। सर, क्या ये अभियान कैंप को साफ रखने और कचरे को लैंडफिल में जाने से रोकने के लिए है, या इसको और आगे बढ़ाने के लिए आपने क्या सोचा है या क्या कदम उठाए हैं?
1: देखिए, साफ सफाई रखना और लैंडफिल में कचरा ना जाने के लिए ये एक छोटा सा पार्ट है ओवरऑल, जब हम पर्यावरण संरक्षक की बात करते हैं तो, क्योंकि इसमें और भी कई चीज शामिल हो जाती है, जैसे कि हमारे नेचुरल रिसोर्स को कंजर्व करना। आपको पता है नेचुरल रिसोर्स एक लिमिटेड क्वांटिटी में है, चाहे हम पानी की बात करें चाहे हम फ्यूल की बात करें, तो उनको कंजर्व करना। इसके अलावा अवेयरनेस कैंपेन करना, वृक्ष लगाना, ये भी सारा हमारे पूरे पर्यावरण की तरफ आता है, और इन सब चीजों पे भी हम काफी काम कर रहे हैं। अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन पे आऊं, सबसे पहले फ्यूल कंजर्वेशन, तो उसमें ईवाइजेशन यानी कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। कैंप में ही आज की डेट में 25 से ज्यादा व्हीकल हमारे इलेक्ट्रिक हो रखी हैं, जिसमें हमारे सैनिक यहाँ पे ऑफिस में जा रहे हैं। सोलराइजेशन का काफी काम चल रहा है, जिससे कि बिजली की खपत कम हो रही है। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि जो हमारा थल सेना भवन बन रहा है वो GRE4 कंप्लाइंट है और एक इको फ्रेंडली मटेरियल से बनाया जा रहा है। वहां पे इलेक्ट्रिसिटी कंजर्व करने के लिए करीब

0: एक मेगावाट का सोलर पावर प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, सेंसर लाइट्स लगाई जा रही हैं और वाटर कंजर्व करने के लिए वहां पे इंटीग्रेटेड एसटीपी प्लांट, अनेकों वाटर रिसाइकलिंग पिट्स लगा रहे हैं और यही पानी इस्तेमाल किया जाएगा वहां के एबोरिकल्चर को मेंटेन करने के लिए। इसके अलावा वहां पे मेगा कंपोस्ट प्लांट्स लगाए जा रहे हैं जो कि करीब 1500 केजी तक का कंपोस्ट एक दिन में वहां पे कर सकते हैं। सो जब हम बात करते हैं पर्यावरण संरक्षक की तो वो सिर्फ एक पहलू वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है बल्कि पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच आती है जो कि एज एन आर्मी और एज अ कैंप हम इसको अपना रहे हैं।
1: आपने एक बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया होलिस्टिक अप्रोच। मैं पूछूंगा कि इन सभी इनिशिएटिव्स का अल्टीमेट गोल क्या है आपके हिसाब से?
0: देखिए अल्टीमेट गोल तो यही है कि हम पर्यावरण को किस तरीके से सुरक्षित कर सके लेकिन साथ में कैसे हम एक डीप रूटेड कल्चरल चेंज यानी कि सांस्कृतिक बदलाव ला सके। हमारे जो जवान हैं, हमारे सैनिक हैं, ये देश के हर प्रांत से आते हैं और यहाँ से उसके बाद वो देश के हर जगह यानी कि बॉर्डर एरिया से लेकर बड़े शहर तक तैनात होते हैं। अगर हम यहाँ पे एक ग्रीन सिस्टम को इंस्टीट्यूशनलाइज करते हैं तो ये हमारे एक ग्रीन एम्बेसडर्स का काम करेंगे। यहाँ पे एक जीरो वेस्ट इकोसिस्टम में है, डेली उठ के ये अपने वेस्ट को सोर्स पे ही सेग्रीगेट कर रहे हैं, प्लांटेशन ड्राइव में हिस्सा ले रहे हैं, एक पेड़ माँ के नाम के जैसे अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो जब ये वो यहाँ पे इस चीज को हिस्सा ले रहे हैं तो ये अब एक इनकी जीवन शैली और एक इनकी आदत बन चुकी है। जब यहाँ से ये पोस्टिंग जाएंगे कहीं पे भी तो ये अपना माइंडसेट लेके जाएंगे और वहां पे ये सोसाइटी में इस चीज को रेप्लिकेट करेंगे और एक कल्चरल चेंज डेवलप करेंगे।
1: सर पूछना चाहूंगा कि वाकई एक अद्भुत विजन है और हमें पूरी उम्मीद है कि पर्यावरण संरक्षण में इसमें काफी मदद मिलेगी एंड आई होप कि ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये रंग लाएं और जैसा आपने कहा कि एक माइंडसेट चेंज हो ना सिर्फ फौजियों का, सोल्जर्स का, बल्कि पूरे देश का इसके थ्रू।
0: जी यही हमारा इसके ऊपर कोशिश है, चाहे वो आर्मी हेडक्वार्टर कैंप है और या फिर पूरे इंडियन आर्मी इसके ऊपर लगी हुई है और मुझे यकीन है कि हमें इसमें और आगे बढ़ावा मिलेगा और सोसाइटी में चेंज आएगा। और मैं चाहूंगा कि आप जो हमने यहाँ पे ये चेंजेस ला रहे हैं, जो जीरो वेस्ट कैंप है, जैसे कि इंडियन आर्मी का ये पहला जीरो वेस्ट यूनिट है, तो मैं चाहूंगा कि आप इसको जाके देखें और ग्राउंड पे, और हमारे मेजर अजीत मोरे हैं जो इसके प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं, तो ये आपको एक बार ग्राउंड पे इसको दिखाएंगे।
1: साहब हमसे बात करने के लिए, ग्रीन इनिशिएटिव्स के बारे में बताने के लिए और हमेशा की तरह एक सोल्जर होने के नाते हमें प्रेरणा देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू, इट्स अ प्लेजर टू होस्ट यू।
2: जय हिंद। तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश की मिट्टी को देश के सैनिकों का सलाम है दिल से। इस गीत के बाद अब हम आज के हमारे संदेश टू सोल्जर के स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बात करते हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स आर्मी कैंप के प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे से।
1: हम मौजूद हैं इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स एमओडी आर्मी कैंप के एनवायरमेंट प्रोटेक्शन जोन में और हमारे साथ फिलहाल हैं प्रोजेक्ट ऑफिसर मेजर अजीत मोरे। सर, स्वागत है शो में। हमें इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में बताइए कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर किस तरीके के इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं।
2: धन्यवाद, मैं फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ। तो मैं बहुत ही गर्व के साथ आपको कहना चाहूंगा, ये हमारे पूरे भारतीय सेना का पहला जीरो वेस्ट कैंप है। भारतीय सेना की हर एक यूनिट, हर एक इकाई जहाँ भी मौजूद है, वो इसी तरीके से इस चीज को इम्प्लीमेंट कर रही है। जब गवर्नमेंट के गाइडलाइंस मिले थे तो उसके अनुसार हम यहाँ पे वेस्ट को मैनेज कर रहे हैं, जैसे कि ड्राई वेस्ट, वेट वेस्ट, सैनिटरी वेस्ट और स्पेशल केयर वेस्ट, इसको हम यहाँ पे सेग्रीगेट करते हैं। मतलब मुद्दा यह है कि वेस्ट को उसके सोर्स पे ही 100% रिसाइकल किया जाए। साथ ही साथ में जब ऑर्गेनिक वेस्ट या वेट वेस्ट की हम बात करते हैं तो इसमें हम एरोबिक्स लगाए हैं, जिसको एरोबिक से हम खाद बनाते हैं, और साथ में बायोगैस लगाया गया है। बायोगैस कंपोस्टिंग सिस्टम से हम इसको कुकिंग हाउस में इस्तेमाल करते हैं। ड्राई वेस्ट में प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, ई वेस्ट और टेक्सटाइल वेस्ट लगाया गया है, तो इसके द्वारा भी हम इसको रिसाइकल्स को आगे देते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे कहना चाहूंगा, वेस्ट इज नॉट अ वेस्ट, इट इंडिफिनिट रिसोर्सेस। इसको मैं एग्जांपल के तरीके से आपको समझाना चाहूंगा। समझ लो, मैंने किसी भी दुकान से आज चिप्स का पैकेट खरीद लिया, चिप्स मैंने खा लिया, रैपर फेंक दिया, तो रैपर मेरे लिए तो वेस्ट है। साथ ही साथ में मैंने केला खरीद लिया, केला खा लिया और उसका छिलका फेंक दिया, दोनों चीजें मेरे लिए वेस्ट है। अगर मेरे जैसे किसी समझदार इंसान ने उसको दोनों को इकट्ठा करके फेंक दिया, वो प्लास्टिक कभी भी डिकम्पोज नहीं होगा, वो धरती की हानि पहुंचाएगा। वो केला भी मैंने कहीं और फेंक दिया, कोई उस पे फिसलेगा, गिरेगा। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, अगर कोई समझदार इंसान है, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन है, प्लास्टिक को मेरे प्लास्टिक वेस्ट में डाल दिया और उसको रिसाइकल कर दिया और उसको ब्यूटीफुल इक्विपमेंट्स में हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वही केले के छिलकों को हमने खाद के एरोबिक्स में डाल दिया और उससे हमने खाद बनाई जो नेचर को आगे प्रोटेक्ट करती है। तो मैं लास्ट में यही कहना चाहूंगा, वेस्ट इज द ओनली वेस्ट इफ यू वेस्ट इट।
1: थैंक यू सो मच सर हमसे बात करने के लिए।
2: धन्यवाद।
0: हमने सुना कैसे पूरी डिटेल में मेजर अजीत मोरे ने ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ के बारे में बताया। अब हम आगे बढ़ेंगे और एक एक करके जानते हैं पूरे मिशन के बारे में। तो सबसे पहले बात एरोबिन कंपोस्टिंग की, जिसके बारे में बता रहे हैं हवलदार राजकुमार।
1: तो बात चल रही थी आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की। हम यहाँ फिलहाल मौजूद हैं एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के पास और हमारे साथ मौजूद हैं हवलदार राजकुमार जी। सर, हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में प्लीज बताइए।
3: मैं आपको ऑर्गेनिक यानी के वेट वेस्ट के बारे में बताऊंगा। किचन और हॉर्टिकल्चर को मैनेज वेस्ट करने के लिए हमने कुक हाउस में एरोबिन सिस्टम और बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल किया है। एरोबिन के अंदर हम वेजिटेबल बेस्ड, फ्रूट बेस्ड, सूखी पत्तियां और बिना पका हुआ किचन वेस्ट को डालते हैं, जो कि 20 से 30 दिन में रिसाइकल होकर खाद बन जाती है। इस खाद को हम एरोबिन से निकालते हैं, जो कि 2 से 3 दिन सूखने के बाद इसको हम एक अच्छी क्वालिटी में खाद दर्शाई गई है।

0: पूरी तरह से खाद तैयार होने के बाद इस तरह से खाद निकलती है, इसको आप पैकिंग भी कर सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी पूरी तरह से पर्यावरण फ्रेंडली है, क्योंकि इसमें ना ही बिजली और ना ही किसी केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है। कैंप में अब तक सिर्फ कुछ ही महीनों के अंदर इससे हमने 750 kg खाद को तैयार किया है।
1: हवलदार राजकुमार जी, इसकी कैपेसिटी कितनी है और कितने दिन में खाद बन जाती है?
0: इसकी कैपेसिटी 400 kg की होती है। इसे हर दिन 20 से 25 kg वेस्ट डाला जाता है, जो कि 20 से 25 दिन के अंदर कंपोस्ट यानी कि खाद तैयार हो जाती है।
1: साहब, एक और बात बताएं हमें, ये जो एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम है, इसको इस्तेमाल में लाने के लिए और क्या मिलाया जाता है?
0: इसको ड्राई रखने के लिए इसके अंदर सूखी पत्ती डाली जाती है। इसके अंदर किसी भी केमिकल की जरूरत नहीं है, ये बायोलॉजिकल काम करता है।
1: सर, आपने हमें एरोबिन कंपोस्टिंग सिस्टम के बारे में इतनी जानकारी दी, हमें बताया कि किस तरीके से खाद बनती है और बिना केमिकल्स को यूज किए बनती है। ये ग्रीन इनिशिएटिव है, मेड इन इंडिया इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आप देखिए कि अगर इस तरीके के सिस्टम्स पूरे देश में इंस्टॉल किए जाएं, आर्मी से सीख ली जाए किस तरीके से हम वेट वेस्ट को, जैसा कि हमें प्रोजेक्ट ऑफिसर ने बताया था कि हम किस तरीके से वेस्ट को वेस्ट ना रखकर उसको एक एसेट में तब्दील कर सकते हैं, इसे कहते हैं वाकई वेस्ट से एक एसेट बनाना। थैंक यू सो मच।
2: अभी हमने जाना एरोबिन कंपोस्टिंग के बारे में। श्रोताओं, हम आगे बढ़ेंगे और अब जानेंगे हम कि कैसे बायोगैस प्लांट लगा करके हमारी आर्मी कैंप में किचन मेंटेन किया जा रहा है, और इस बारे में डिटेल में बता रहे हैं हमें हवलदार राजकुमार।
1: भारत में नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल तो दशकों और न जाने कितने वर्षों से होता आया है, लेकिन जिस तरीके से आर्मी इसे इस्तेमाल करती है और जिस तरीके से इसके नए प्रोसेसेस को सबके सामने रखा जाता है, ये वाकई अद्भुत है, अद्वितीय है। अभी फिलहाल हम आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स की एक और बात करते हैं, जहां पर हम फिलहाल बायोगैस मशीन और बायो मेथनाइजेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं। इसके बारे में हमें और बताएंगे हवलदार राजकुमार जी। सर प्लीज।
0: एलपीजी की खपत को कम करने के लिए हमने कुक हाउस में बायोगैस प्लांट को इंस्टॉल कर रखा है। इसके अंदर हम मेस में बचा हुआ खाना जैसे कि पानी गर्म, दूध उबालना, अंडे उबालना इत्यादि कामों में इस्तेमाल करते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी, बायोगैस को अपनाना बल्कि आत्मनिर्भरता बनना ही नहीं, बल्कि अपनी धरती को हरा भरा रखने में भी हम अपना योगदान दे सकते हैं। इसलिए वेस्टेज को फेंके ना, उससे ऊर्जा बनाए।
1: तो बायोगैस इनिशिएटिव एक और ग्रीन इनिशिएटिव है इंडियन आर्मी का, जिसमें हमने देखा कि किस तरीके से कचरा यानी वेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस तरीके के इनिशिएटिव से आप क्या कर सकते हैं, या हम क्या कर सकते हैं, या हमारा देश क्या कर सकता है, वो ये है कि हम इस तरीके के इनिशिएटिव से वेस्ट को कम करके उन सभी एसेट्स को अपने पास इस्तेमाल कर सकते हैं, उन सभी रिसोर्सेज की बाहरी खपत को कम करके अपने ही आसपास की चीजों को इस्तेमाल करके रिसोर्सफुल बनकर हम वो सभी एसेट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं, वो रिसोर्सेज प्रोड्यूस कर सकते हैं। आइए इसके बारे में थोड़ा और विस्तार से जानते हैं। हवलदार राजकुमार जी, हमें प्लीज बताइए कि इसमें एक दिन में कितना वेट वेस्ट डाला जाता है और इससे कितनी गैस उत्पन्न होती है?
0: जी हाँ, ये प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे पास जो प्लांट लगे हुए हैं, इसमें एक दिन में 20 से 22 केजी वेस्ट डाला जाता है, जो कि 3 से 4 kg गैस को प्रोड्यूस करके इसको हम इस्तेमाल में ला सकते हैं।
1: इसको इस्तेमाल करने से कितने एलपीजी की बचत होती है, कितने सिलेंडर्स की बचत होती है, अगर आप हमें बता पाए?
0: ये भी प्लांट की कैपेसिटी पर निर्भर करता है। हमारे कुक हाउस में जो प्लांट लगे हैं, इसमें हर एक प्लांट से एक महीने में 4 से 5 एलपीजी सिलेंडर की बचत होती है।
1: और सर, इसको कितनी मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है, इसमें क्या क्या चीजें लगती हैं, अगर आप हमें बताएं?
0: जी, सबसे इसकी खासियत यही है कि प्लांट को मेंटेनेंस करने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। हमारे पास प्लांट लगा हुआ है तकरीबन 6 महीने से लगा हुआ, अभी तक इसकी कोई भी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ी।
1: बायोगैस प्लांट है इंडियन आर्मी का एक और ग्रीन इनिशिएटिव, जिसमें हम वेस्ट से बायोगैस प्रोड्यूस करते हैं। एलपीजी सिलेंडर्स, 4 से 5 सिलेंडर्स की खपत जितनी होती है, उतना हमें प्रोड्यूस यहां से इस मशीन से मिलता है।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

0: देश पर जान निछावर करने वाले हमारे जवान सरहद और देश के भीतर ही नहीं बल्कि पर्यावरण के लिए भी जी जान से मेहनत कर रहे हैं। आइए अब हम जानते हैं यूज्ड कुकिंग ऑयल को कैसे फिर से इस्तेमाल में लाया जा रहा है और इस बारे में जानकारी दे रहे हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार।
1: यूज कुकिंग ऑयल के बारे में हम सब जानते हैं, इस ऑयल को अगर बार बार इस्तेमाल किया जाए तो ये सीरियस इंजरी, सीरियस हार्म दे सकता है ह्यूमन बॉडी को। इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है किस तरीके से यूज कुकिंग ऑयल को इस्तेमाल किया जाए, घर घर से इकट्ठा किया जाए। इसके लिए हमारे साथ हैं सूबेदार मेजर वरिंदर कुमार जी। सर, हमें प्लीज इस ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में प्लीज बताइए।
2: सर, जैसे कि FSA की गाइडलाइन के अनुसार जो भी हमारा कुकिंग ऑयल है उसको हम बार बार यूज नहीं कर सकते हैं क्योंकि इससे काफी सेहत के ऊपर भी असर डालता है, इसे कैंसर जैसी बीमारियां भी हो सकती हैं। तो इसी को देखते हुए हमने इसको अलग करके जो भी हमारा कुकिंग ऑयल जो था इसको यूज है उसको हम अलग करके किसी रिकॉग्नाइज्ड संस्था को देते हैं ताकि उसकी रिसाइकल कर इसका बायोडीजल या सोप बनाया जा सके। इसको कलेक्शन करने के लिए हमने अलग अलग इसके लिए ड्रम्स जो केन्स रखे हुए हैं ताकि उसको सही तरीके से उसको डिस्पोज कर सके और इसको हम आगे डिस्पोज ऑफ कर सके। सर,
1: थैंक यू सर हमें यूज कुकिंग ऑयल के बारे में बताने के लिए। धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
0: अभी तक हम जान रहे थे वेट वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कि कैसे गीला कचरा रिसाइकल किया जा रहा है या अगर यूं कहें कि ये कचरा अपसाइकल किया जा रहा है। अब बहुत अहम और हमारी जिंदगी पर असर डालने वाला प्लास्टिक वेस्ट, इसे कैसे अपसाइकल करके फिर से यूजेबल बनाया जा सके जबकि प्लास्टिक के बारे में आम धारणा है कि ये कभी खत्म नहीं होता, इसकी जानकारी दे रहे हैं हवलदार अब्बास।
1: इंडियन आर्मी के ग्रीन इनिशिएटिव्स को हम आगे ले जा रहे हैं। फिलहाल हमने वेट वेस्ट की बात की, हमने यूज कुकिंग ऑयल की बात की, अब हम बात करेंगे प्लास्टिक वेस्ट की, अब हम बात करेंगे ड्राई वेस्ट की। हमारे साथ हैं हवलदार अब्बास जी। सर, हमें प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में प्लीज बताइए, कैसे ये कचरा इकट्ठा किया जाता है, किस किस तरीके से कैटेगराइज किया जाता है, कैसे आप इसको यहाँ पर रखते हैं और उसके बाद क्या होता है, प्लीज।
3: सभी को मेरा जय हिंद। प्लास्टिक आज के गंभीर विषय बन चुका है। हमारी कोशिश यही है कि प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल किया जाए। फिर भी जो प्लास्टिक जनरेट होकर हमारे पास आता है उसको सही से डिस्पोज कैसे करें, इसके लिए हमारे कैंप की तरफ से कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिसके दौरान हमारे ब्लॉक्स, लिविंग एरियाज, कैंटीन एरियाज में हमने प्लास्टिक कलेक्शन पॉइंट्स को इंस्टॉल किया गया है। वहां से ये प्लास्टिक सेग्रीगेट होकर हमारे इस मेन कलेक्शन पॉइंट पे लाया जाता है। इसमें प्लास्टिक के बोतल, पैकिंग मटेरियल, दूध की पन्नियां, नमकीन पैकेट्स, यहां से ये सारा मटेरियल, वेस्टेज मटेरियल मान्यता प्राप्त एजेंसीज में भेजा जाता है रिसाइकलिंग के लिए। इससे वहां पे फर्नीचर बनाया जाता है जैसे टेबल, चेयर, बेंच, कबर्ड, इसमें डेली यूज होने वाले प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं और इनका इस्तेमाल हम पब्लिक प्लेस पे किया जाता है ताकि लोगों को मोटिवेशन और अवेयरनेस मिले। जैकेट ग्लेशियर्स में डिप्लॉय हमारे सोल्जर्स द्वारा इकट्ठे किए गए हुए प्लास्टिक मटेरियल के वेस्टेज से बनाई गई है जो दर्शाती है कि आर्मी न खिलिफ रागिस्तानों में बल्कि ग्लेशियर्स में पर्यावरण को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रही है।
1: हवलदार अब्बास जी, मुझे ये भी बताइए कि रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर नॉर्मल फर्नीचर के मुकाबले कैसा होता है? अगर एक नॉर्मल फर्नीचर की बात की जाए और ये जो रिसाइकल प्लास्टिक फर्नीचर है इसकी बात की जाए, दोनों का कंपैरिजन कैसा है, कितना मजबूत है, हम सभी लिसनर्स को बताइए।
3: ये नॉर्मल फर्नीचर से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये मजबूत है, धूप

0: बारिश इस पे कोई असर नहीं पड़ता है और ये देखने में भी अट्रैक्टिव है और साथ में कंफर्टेबल भी है।
1: और सर, क्या ये रिसाइकल प्रोडक्ट्स आम लोग भी खरीद सकते हैं, इसके बारे में अगर आप बता पाए?
0: जी हाँ, बिल्कुल, ये आप खरीद भी सकते हो और प्लास्टिक के बदले इसको ले भी सकते हो।
1: और सर, हर आइटम पर कुछ प्लास्टिक नंबर लिखे हुए हैं, इसका मतलब क्या है अगर आप हमें बता पाए?
0: जी, ये जो मार्क 80 kg का लिखा है ये दर्शाता है कि 80 kg प्लास्टिक वेस्ट मटेरियल से इस बेंच को बनाया गया है। ये चीज भी दर्शाती है कि 80 kg वेस्ट को फैलने से रोका गया है।
1: Absolutely, 80 kg वेस्ट, आप सोचिए 80 kg वेस्ट कितना ज्यादा होता है। उस वेस्ट को इकट्ठा करना, उसको रिसाइकल करना, उसको प्रोसेस करना और उसके बाद ये मजबूत फर्नीचर, ये मजबूत बेंच, ये सब चीजें बनाना, कितनी अहम चीज है ये, कितना मजबूत इनिशिएटिव है, कितना फ्यूचर ओरिएंटेड है और कितना ज्यादा सस्टेनेबल है। सर, पब्लिक वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट की अगर बात की जाए, किस प्रकार के प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं, कितनी चीजें हैं
0: इसमें? डिफरेंट तकरीबन 28 आइटम्स बनाए जाते हैं, जिसमें टेबल, कबर्ड, तो बहुत सारी चीजें बनाई जाती है।
1: हमें प्लास्टिक वेस्ट के बारे में बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
0: थैंक यू सो मच सर।

0: तो इसी तरह कंधों से कंधे मिलाकर हम अपनी धरती को स्वच्छ और बेहतर बना सकते हैं और प्लास्टिक जैसे खतरनाक वेस्ट को भी अपसाइकल कर रहे हैं। अब बात करते हैं पेपर वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में और इस बारे में बता रहे हैं हमें नायब सूबेदार कुलदीप राज।
1: ड्राई वेस्ट में ही हमने पहले प्लास्टिक वेस्ट की बात की, अब हम बात करेंगे पेपर वेस्ट की। किस तरीके से पेपर्स को इकट्ठा किया जाता है, कैसे वेस्ट पेपर्स को यहाँ पर लाया जाता है और उसके बाद उसको श्रेड किया जाता है, इस पूरे प्रोसेस के बारे में हमें बताएंगे कुलदीप राज जी। सर प्लीज हमें इस पूरे प्रोसेस के बारे में समझाएं।
2: जय हिंद। पेपर का इस्तेमाल पूरे कैंप में कम से कम किया जाता है, जिससे पेपर और समय दोनों की बचत होती है और एनवायरमेंट में भी फायदा मिलता है, जिससे पेपर का इस्तेमाल कम होता है और पेड़ पौधे कटने से बचते हैं। जो भी पेपर वेस्ट होता है, जैसे कि शटल पेपर, गत्ता, किताबें, रजिस्टर इत्यादि, प्लास्टिक वेस्ट की तरह मान्यता प्राप्त एजेंसी को दिया जाता है और जिससे पेपर, किताबें, डायरी इत्यादि बनाए जाते हैं, जिसे इस्तेमाल में लाया जाता है। रीयूज करने से रिसोर्सेज की कमी और सर्कुलर इकोनॉमी में बढ़ावा मिलता है।
1: किस तरीके से डिजिटल इंडिया का एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहां पर चल रहा है, तो जैसा कि आपने देखा इंडियन आर्मी की ग्रीन इनिशिएटिव्स में एक और है प्लास्टिक वेस्ट और वेट वेस्ट के अलावा पेपर वेस्ट को किस तरीके से रिसाइकल और अपसाइकल किया जाता है, कैसे मान्यता प्राप्त एजेंसीज तक ये सारे पेपर्स पहुंचने हैं। डिजिटल इंडिया की प्रॉपर एग्जीक्यूशन तो आर्मी हेडक्वार्टर्स कैंप में की जा रही है। डिजिटलाइजेशन के बाद पेपर वेस्टेज या पेपर यूसेज कहें बहुत कम हो चुका है, डिजिटल चीजों का, डिजिटल माध्यम का उपयोग ज्यादा होता है, लेकिन जितने भी पेपर्स इस्तेमाल होते हैं जो जरूरी होते हैं उनको भी रिसाइकल किया जाता है। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
0: एक और वेस्ट जो हमारी जिंदगी का एक अभिन्न अंग बन चुका है और वो है ई वेस्ट या इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट, जिससे हमारे मोबाइल, टैबलेट्स, चार्जर्स, लैपटॉप्स, कंप्यूटर्स और भी कितने ही इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जिसमें शामिल हैं। और ये ई वेस्ट भी हमारी धरती के लिए और हमारे पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रहा है। और इस ई वेस्ट को कैसे अपसाइकल किया जा रहा है बता रहे हैं हवलदार अशफाक अहमद।
1: ड्राई वेस्ट की ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करते करते अब हम आ चुके हैं एक स्पेशल कैटेगरी वेस्ट की तरफ, जो कि है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट यानी ई वेस्ट। बेहद जरूरी चीज जो हम सभी के घरों में मिलती है, छोटे छोटे प्लास्टिक के टुकड़े, वायर्स, प्लग्स, आप सभी ने देखा होगा, क्या वो सब चीजें ई वेस्ट का हिस्सा है? आइए जानते हैं हवलदार अशफाक अहमद जी से। सर स्वागत है शो में। जितनी भी चीजें हमारे घरों में मिलती है क्या वो सब ई वेस्ट में आती है?
3: जय हिंद। हाँ बिल्कुल, वो सारी ई वेस्ट में आती है। ई वेस्ट एक अत्यंत गंभीर समस्या बन चुकी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, ई वेस्ट की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए कैंटोनमेंट, RWS और ऑफिस एरियाज में ई वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स को एस्टेब्लिश किया गया है, जो कि स्पेशल केयर वेस्ट के अंतर्गत आते हैं। इसमें न सिर्फ ऑफिस एरिया के इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट बल्कि जवान अपने घरों से भी बैटरी, चार्जर, बल्ब जैसे इत्यादि लाके इसमें डाल सकते हैं। जो आप ई वेस्ट बॉक्स है, इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है ये जवानों ने अपने घरों से लाके इसमें डाला हुआ है। इस ई वेस्ट को मान्यता प्राप्त एजेंसी के सेग्रीगेशन प्लांट्स में भेजा जाता है, जहाँ पर उन्हें साइंटिफिक तरीके से रिसाइकल करके उनमें से सिल्वर, कॉपर, अल्मीनियम जैसे एलिमेंट को निकाल के दोबारा से उपयोग में लाए।
1: बिल्कुल, मतलब ग्रीन मेटल्स को हार्वेस्ट किया जाता है। इस सभी ई वेस्ट का उपयोग करके हम इन ग्रीन मेटल्स

निकालते हैं, इनको बनाते हैं और उसके बाद इसका दोबारा से इस्तेमाल होता है। ग्रेट इनिशिएटिव, एक्सीलेंट इनिशिएटिव। सोचिए कितना ज्यादा कचरा हम घरों से, बाकी जितनी भी चीजें हैं वहां से इकट्ठा करके यहाँ पर लाते हैं और उसके बाद इससे कुछ और उपयोगी, कुछ यूजफुल बनाते हैं। एक्सीलेंट इनिशिएटिव आई वुड से।

0: ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए हमारी इंडियन आर्मी कन्वेंशनल फ्यूल को नहीं बल्कि हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले व्हीकल्स का इस्तेमाल कर रही है। इसके बारे में बता रहे हैं हवलदार आशीष जी।
1: जय हिंद, मैं हवलदार आशीष। एनर्जी कंजर्वेशन वेस्ट मैनेजमेंट की तरह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। ग्रीन इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए और ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और सोलराइजेशन यानी सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारतीय सेना में सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट और पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। ऑलरेडी इनमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स और हाइड्रोजन व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। आज हमारे पास आर्मी हेडक्वार्टर कैंप में 25 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का एक फ्लीट है जिनका इस्तेमाल डिपार्टमेंटल ट्रांसपोर्ट और इंटरनल मूवमेंट्स के लिए किया जा रहा है। एक इलेक्ट्रिक कार्स का एक फ्लीट है, साथ ही हाइड्रोजन बस और इलेक्ट्रिक बसेस का एक फ्लीट नजर आ रहा होगा, साथ एक इलेक्ट्रिक रिक्शा रखा हुआ है। इनके चार्जिंग पॉइंट्स लगे हुए हैं जहां पे इन व्हीकल्स को चार्ज किया जाता है। एक व्हीकल को फुली चार्ज होने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है और एक फुली चार्ज्ड व्हीकल तकरीबन 300 किलोमीटर की एवरेज देता है। ऐसा करने से हम मंथली तकरीबन 4000 लीटर और ईयरली 48000 लीटर तक तेल की बचत कर रहे हैं। इन इनिशिएटिव्स को और इन व्हीकल्स को यूज करके हम न सिर्फ अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को बचा रहे हैं बल्कि अपने एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रख रहे हैं।
0: संदेश टू सोल्जर्स के आज के हमारे ग्रीन इनिशिएटिव मिशन लाइफ स्पेशल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं और अब बहुत ही इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव के बारे में जानते हैं जो इमोशनली भी बहुत रिलेवेंट है और वो है वॉल ऑफ काइंडनेस। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें पुराने कपड़े, किताबें और यूनिफॉर्म शामिल हैं। हमारे फौजी भी अपनी यूनिफॉर्म के साथ भी इमोशनली अटैच्ड होते ही हैं। तो कैसे डिग्निफाइड वे में इन्हें डिस्पोज ऑफ किया जा रहा है, बता रहे हैं हवलदार विनोद कुमार और राइफलमैन दिनेश कुमार।
2: लेडीज एंड जेंटलमैन, देवियों और सज्जनों, आर्मी और ह्यूमैनिटी, ये दोनों शब्द हम सिनोनिम्स की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडियन आर्मी के ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स इतने हैं जिन्हें गिनवाया जाए तो शायद ये दिन ये रात सब कम पड़ जाए। हम ग्रीन इनिशिएटिव्स की बात करने आए थे लेकिन यहाँ पर इनिशिएटिव्स के साथ साथ जो पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण है उसी के साथ साथ एक ऐसा इनिशिएटिव भी है जो काइंडनेस को और ज्यादा दर्शाता है। कैबिनेट है ये 155 किलो प्लास्टिक को इस्तेमाल करके बना है। सोचिए 155 किलो प्लास्टिक अब सड़कों में या कचरे के डिब्बों के आसपास नहीं बिखरा हुआ है, उसको इस्तेमाल करके ये शेल्फ बनाया गया है। ये अपने आप में एक जबरदस्त ग्रीन इनिशिएटिव है जिसके बारे में हम पहले से बात कर चुके हैं और इसके साथ साथ ही दिस इज एक्चुअली अ वॉल ऑफ काइंडनेस व्हिच मींस डोनेट व्हाट यू कैन टेक व्हाट यू नीड, मतलब अपनी मर्जी से आप डोनेट कर सकते हैं और जो भी जरूरत है वो आप यहां से ले जा सकते हैं। अमेजिंग इनिशिएटिव, ऐसा एक काम जो इंडियन आर्मी ही सोच सकती थी, इंडियन आर्मी ही कर सकती थी। आइए इस वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में हम और कुछ जानते हैं। हमारे साथ हैं हवलदार विनोद कुमार जी।

0: सर स्वागत है शो में, प्लीज हमें वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में कुछ बताइए।
1: जय हिंद। आज मैं आपको वॉल ऑफ काइंडनेस के बारे में परिचित करवाऊंगा। वॉल ऑफ काइंडनेस यानी नेकी की दीवार, ये एक सोशल सस्टेनेबिलिटी प्रोजेक्ट है जो कि रीयूज के कंसेप्ट को प्रमोट करता है। हमारे यहाँ काफी सारे लोग आते हैं जो कि अपने साथ घर में पड़ा एक्स्ट्रा सामान, जो कपड़े, जूते, किताबें, जहाँ यूनिफॉर्म, वो सब इधर डोनेट करते हैं। बुक्स की शेल्फ है और यूनिफॉर्म की, कपड़ों की, जिस अलमीरा में ये डोनेट करके जाते हैं और जहाँ से जरूरतमंद लोग जहाँ से उठा के बिना किसी हिचकिचाहट के ले जाते हैं। और बेसिकली हमारा उद्देश्य है कि चैरिटी नहीं बल्कि डिग्निटी के साथ जहाँ से सामान ले जा सके। बाकी अभी तक डेटा के अनुसार 10 टन से 12 टन तक कपड़े जहाँ से डोनेट हुए थे और काफी सारा सामान जरूरतमंद लोगों को दिया जा चुका है।
0: सो वॉल ऑफ काइंडनेस के साथ साथ एक और शेल्फ है जिसमें ट्राई सर्विसेज यानी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की यूनिफॉर्म्स हैं, क्या इसके बारे में और बता सकते हैं?
1: देखिए अभी आपने सारे रैक्स देख लिए, अभी ये लास्ट में मैं बताता हूँ यूनिफॉर्म रैक्स। इसमें हम तीनों सेनाओं के यूनिफॉर्म रखते हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। देखिए फौजी आदमी के लिए सबसे बड़ा प्राइड होता है उसकी यूनिफॉर्म, ये हमारे इमोशन को टच करती है और दूसरा ये हमारा प्राइड है। हम चाहते हैं इसका सही तरीके से डिस्पोज ऑफ किया जाए, इसलिए हम इसे रिस्पेक्टफुल तरीके से इनको जहां रखते हैं तीनों सेना की यूनिफॉर्म को।
2: बता रहे हैं राइफलमैन दिनेश कुमार।
1: वॉल ऑफ काइंडनेस में अभी तक कपड़े, यूनिफॉर्म, इसके अलावा जहां पर बुक्स भी हैं। अभी हाल फिलहाल में एग्जाम खत्म हुए थे, फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक जिन लोगों ने अपने एग्जाम खत्म किए उनके बुक्स जहां पर काफी डोनेट की गई हैं और ये सभी डोनेट सामान जरूरतमंद लोगों के काम आएगा। और इसके अलावा अब जहां और भी बहुत सारी बुक्स हैं जैसे जेई, नीट, सीरियस और SSB, सभी तरह की बुकें आपको देखने को जहां मिल जाएंगी। और इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि हमारे यहां पर जितने भी फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के जो अफसर जवान, वो अपने बच्चों के खिलौने, किताबें, ये सब जहां पर डोनेट करते हैं।
2: हमारे फौजी भाई कई बार डिफिकल्ट टेरेन्स में पोस्टेड होते हैं जहां इलेक्ट्रिसिटी इजीली अवेलेबल नहीं होती है। ऐसे में हमारी आर्मी ने सोलर एनर्जी का प्रयोग कर डेवलप किए हैं सोलर हट्स और सोलर सिक्योरिटी चेक पोस्ट, जिसमें सोलर पावर से चलने वाले कई तरह के डिवाइसेस प्रयोग में लाए जाते हैं। आइए जानते हैं आर्मी के इस इनिशिएटिव के बारे में।
3: जब हम सस्टेनेबल ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं तो सबको पता है सन इज द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी, तो हम नेचुरल सनलाइट को इस्तेमाल करके सोलर हट का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो जिसको हमने बहुत सारी पब्लिक प्लेसेस में लगाया जिससे आने वाले कम्प्यूटर्स इसका बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। यह पूरा सोलर पावर्ड है जिसमें चार फैंस की सुविधा दी गई है, मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, वायरलेस चार्जिंग पॉइंट और साथ ही साथ में अगर हम चाहे तो रिकॉर्डिंग, CCTV रिकॉर्डिंग की भी इसमें क्षमता है। सोलर हट तो आपने देख लिया, अभी आपके सामने दर्शाई गई है सोलर संतरी पोस्ट। जैसे कि हम सभी जानते हैं आर्मी देश के विभिन्न विभिन्न भागों में डिप्लॉयड है, जैसे जब भी आर्मी रिमोट एरिया में डिप्लॉय होती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज होती है, तो उस समस्या को दूर करने के लिए हमने इस इलेक्ट्रिसिटी सिक्योरिटी चेक पोस्ट को बनाया गया है। जैसे इसके अंदर एक फैन की सुविधा दी गई है जो गर्म और ठंडी हवा भी देता है, साथ ही साथ में इसमें मोबाइल चार्जिंग पॉइंट और एक इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट की भी सुविधा दी गई है। ये एक मोबाइल संतरी पोस्ट है जिसको यहां से लेकर हम किसी भी जगह पे डिप्लॉय कर सकते हैं।
0: इंडियन आर्मी देश की सुरक्षा के साथ साथ पर्यावरण की सुरक्षा भी कर रही है। आज हमने ग्रीन इनिशिएटिव्स देखे जो इंडियन आर्मी ले रही है, किस तरीके से ई वेस्ट, वेट वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, पेपर वेस्ट, हर तरीके से कैसे इंडियन आर्मी हमारे पर्यावरण को बचा रही है, फ्यूचर को बचा रही है। यहाँ पर हेडक्वार्टर कैंप आर्मी में आके हमने सब जाना किस तरीके से आर्मी ये बेहतरीन इनिशिएटिव्स कर रही है और लगातार हमारे फ्यूचर को सेफगार्ड करके सस्टेनेबल तरीके से बेहतर बना रही है। हम इस वक्त प्रोजेक्ट इंचार्ज मेजर अजीत मोरे के साथ हैं। सर, कंक्लूडिंग रिमार्क्स में आप क्या कहेंगे, ये ग्रीन इनिशिएटिव्स कितने जरूरी हैं, किस तरीके से आर्मी पूरे देश के सामने इस प्रेरणा को रख रही है?
3: थैंक यू अभव, मैं आपको एक कहना चाहूंगा, जो हमारी सोच है वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ तक ही सीमित नहीं है बल्कि पर्यावरण सुरक्षा में है, हम इसको कल्चरल चेंजेस लाना चाहते हैं। जिस प्रोडक्ट पे हम अभी बैठे हैं ये अपसाइकल प्रोडक्ट, हमने एक चौथा पहलू भी इसमें जोड़ दिया है। साथ में आपको कहना चाहूंगा जब वेस्ट मैनेजमेंट या पर्यावरण संरक्षण की बातें आती है तो इसमें तीन बेसिक ह्यूमन टच पॉइंट्स, एक है इंडिविजुअल, एक है कम्युनिटी और तीसरा है अथॉरिटी, जिसमें आप लोकल बॉडीज होगी, आपके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है। तो जब तक ये इंडिविजुअल के अंदर से नहीं आएगा तब तक हमारा एरिया या हमारा पर्यावरण साफ नहीं होगा, ये आपको मैं जोर देकर कहना चाहूंगा। हमारे देश का हर एक सिटीजन, हर एक बंदा एक पर्यावरण योद्धा है और जब तक उसके अंदर से ये आएगा तभी हम हमारे देश के या हमारे गवर्नमेंट के स्वच्छ भारत अभियान को पूरा कर पाएंगे। तो कल हम 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस को मना रहे हैं, तो ये हमारे गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत अभियान, मिशन लाइफ अभियान, इसको सफल बनाने के लिए हम सब देशवासी मिलकर इसको योगदान दें। जय हिंद।
2: तो आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारा सा गीत।

देश की रक्षा और प्रकृति की रक्षा दोनों एक साथ वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पर सेना का संदेश है। 102.6 आकाशवाणी रेनबो पर आज का संदेश टू सोल्जर्स भारतीय सेना के ग्रीन इनिशिएटिव और मिशन लाइफ को समर्पित था, जिसमें जीरो वेस्ट जोन से लेकर सोलराइजेशन, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट से ई वेस्ट मैनेजमेंट, साथ ही ऑर्गेनिक वेस्ट का साइंटिफिक मैनेजमेंट और बायोगैस के अलावा हमने जाना कि एरोबिन कंपोस्टिंग क्या है और कैसे इससे खाद बनाई जाती है, और ये भी कि वॉल ऑफ काइंडनेस के माध्यम से पुराने कपड़े, जूते, किताबें, बच्चों के खिलौने डोनेट करके रीयूज कॉन्सेप्ट को प्रमोट किया जा रहा है। हम आशा करेंगे कि इंडियन आर्मी के अपनी धरती और प्रकृति के प्रति इस जज्बे से हम भी प्रेरणा लेकर अपना योगदान अवश्य देंगे और इसे बेहतर, स्वच्छ और स्वस्थ बनाने की कोशिश करते रहेंगे। आज के संदेश टू सोल्जर्स के इस स्पेशल शो की प्रस्तुतकर्ता थी राजलक्ष्मी और मेरे सहयोगी थे ओबी पर वैभव श्रीवास्तव, और आप सुन रहे हैं मेरी आवाज। मेरा नाम है शाहिद। जय हिंद।

FM 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। शाम के 5 बजने को हैं। कुछ ही पलों में समाचार हमारी दिल्ली केंद्र से रिले होंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रॉड्रिगेज से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने कहा कि वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। उन्होंने बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने भारत वेनेजुएला संबंधों को और मजबूत बनाने तथा विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। सुश्री रॉड्रिगेज कल 5 दिन की भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंची। उनके साथ विदेश मामलों, अर्थव्यवस्था और वित्त, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा परिवहन मंत्रियों का प्रतिनिधिमंडल भी आया है। ब्रिटेन की विदेश और राष्ट्रमंडल मामलों की मंत्री यवेट कूपर भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगी। सुश्री कूपर आज शाम विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। वे 2 दिन की आधिकारिक यात्रा पर कल रात नई दिल्ली पहुंची। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि उनकी यात्रा से भारत ब्रिटेन व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज से ब्रिक्स संस्कृति कार्य समूह की दूसरी बैठक शुरू होगी। 2 दिन की बैठक में चीन, ब्राजील, मिस्र, इथियोपिया और इंडोनेशिया सहित 11 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। गुजरात पुलिस ने राज्य में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन डेल्टा हंट की शुरुआत की है। इसके तहत पिछले 24 घंटों में गुजरात में अवैध रूप से रह रहे 424 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 782 से अधिक संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ जारी है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। इस प्रणाली के अंतर्गत ये सुनिश्चित किया जाता है कि आवेदन पत्र भरते समय जिस उम्मीदवार की फोटो अपलोड की गई थी, वही उम्मीदवार परीक्षा केंद्र पर प्रवेश पत्र के साथ परीक्षा देने आया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली में परिचालन दक्षता बढ़ाने के लिए फील्ड कमांडरों के वित्तीय अधिकार 2 गुना करने को मंजूरी दी। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन उपायों से 1

0: 1,25,000 करोड़ रुपए से अधिक की खरीद में सुविधा होगी। मंत्रालय ने कहा कि वित्तीय शक्तियों में वृद्धि 100% तक की गई है और कुछ मामलों में ये 2 गुने से भी अधिक है। मंत्रालय ने कहा कि इससे फील्ड कमांडरों की परिचालन दक्षता और मजबूत होगी। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज विभिन्न मंत्रालयों और संस्थानों के अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में सरकारी भवनों के छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली लगाने की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री जोशी ने सोशल मीडिया पर बताया कि अब तक निर्धारित लक्ष्य का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि देश भर में 53,000 से अधिक सरकारी भवनों पर सौर ऊर्जा प्रणालियों लगाई जा चुकी है। इनकी कुल स्थापित क्षमता 855 मेगावाट है। वयोवृद्ध निर्माता और केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड CBFC के पूर्व अध्यक्ष पहलाज नेहलानी का आज मुंबई में निधन हो गया। वे 76 वर्ष के थे। भारत सैफ महिला फुटबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। गोवा के मडगांव में कल भारत ने सेमीफाइनल में भूटान को 1-0 से हराया। भारतीय टीम 6 साल बाद सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंची है। फाइनल शनिवार शाम 6:30 बजे से खेला जाएगा, जहां 5 बार की विजेता भारतीय टीम और मौजूदा चैंपियन बांग्लादेश आमने सामने होंगे। मौसम विभाग ने आज केरलम में दक्षिण पश्चिम मानसून के आगमन की पुष्टि की है। मानसून 3 दिन देर से आया है। विभाग ने 9 जून तक केरलम और माहे में कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। श्रोताओं, हमारी सभा के सभी प्रसारण आप मीडियम वेव 187.3 मीटर यानी 1602 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी पिथौरागढ़ और 101.5 मेगाहर्ट्ज पर FM बागेश्वर से भी सुन सकते हैं। आइए शैलस्वर कार्यक्रम में आज सुनते हैं जगदीश फुलारी का गाया ये कुमाऊनी लोकगीत।

बजारा ओ काजल कटिक दरिया लागली नजरा ओ आ जाए बिमला अलमाला बजारा ओ काजल कटिक दरी लागली नजरा ओ आ जाए बिमला अलमाला बजारा ओ काजल

जगदीश फुलारी के गाए इस कुमाऊनी लोकगीत के साथ आज का शैल स्वर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। हमारी सभा में रात्रि 8:30 पर कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन और रात्रि 10:00 क्षेत्रीय लोक एवं सुगम संगीत का अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगी श्रीमती सौम्या मिश्रा से मैथिली लोकगीत और संगीत संयोजक विजय कुमार सामंत रॉय के आधुनिक उड़िया गीत। ये दोनों कार्यक्रम हमारे दिल्ली केंद्र से रिले होंगे। 6:50 पर गढ़वाली में और 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। अब से कुछ ही देर में 5:15 पर युवाणी कार्यक्रम में युवा साथियों से आज बातें होंगी पर्यावरण के लिए जीवन शैली विषय पर। साथ ही युवा साथी सुनेंगे रोजगार समाचार। 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में आज की चर्चा केंद्रित होगी अतिक्रमण के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर। भक्ति संगीत में 6:41 पर आज आप सुनेंगे विजय शर्मा और पंडित भीमसेन जोशी के गाए भक्ति गीत। किसान वाणी कार्यक्रम का समय रहेगा 7:00, जिसमें आज किसान भाइयों से बातें होंगी कृषि में नवाचार और लाभ विषय पर। साथ ही किसान भाई सुनेंगे पहाड़ी महिला कृषकों के लिए पशुपालन संबंधी श्रम साध्य कार्य कम करने वाली प्रौद्योगिकियां विषय पर डॉक्टर दीप्ति कोठारी से भेंट करता होंगे प्रमोद पांडे। इसके अलावा सुनिएगा खेती बचाओ अभियान टिकाऊ कृषि पद्धतियां फसल चक्र संरक्षण जुताई विषय पर विज्ञान विषय के शोध छात्र हेमेश द्विवेदी से श्याम भट्ट की क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। रात्रि 9:30 पर धरोहर कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे संगीत रूपक जीतू बगड़वाल का पहला भाग। फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे 7:40 पर और रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत। सुगम संगीत सुनिएगा आज रात्रि 8:00 सबरस कार्यक्रम के तहत। ये थी रूपरेखा हमारे इस सभा के शेष कार्यक्रमों की। अब एक नज़र हमारे कल के प्रसारणों पर। हर दिन की तरह है हमारी कल की प्रातःकालीन सभा आरंभ होगी 5:55 पर। 6:05 पर विचार बिंदु के पश्चात 6:10 पर आप सुनेंगे भक्ति संगीत आराधना। कल 6:40 पर आज की बात, 6:45 पर कार्यक्रम विविधा और श्री रामचरितमानस से अगला प्रसंग आप सुनेंगे 7:10 पर। कल 7:30 पर आप सुनेंगे विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन का हिमालयी क्षेत्र पर प्रभाव विषय पर डॉक्टर खगेंद्र सिंह कनवाल, वरिष्ठ वैज्ञानिक गोविंद बल्लभ पंत हिमालय एवं पर्यावरण संस्थान कोसी कटारमल से भेंट करता होंगे संजय जोशी। कल 7:50 पर हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम गांधी चर्चा और 8:30 पर आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत। कुमाऊनी और गढ़वाली लोकगीत आप सुनेंगे 11:30 पर लोकसुर कार्यक्रम में और 2:00 उत्तराखंड के लोकगीत कार्यक्रम के तहत। 12:30 पर घर संसार कार्यक्रम में बहनों से चर्चा का विषय होगा पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। कल 1:30 पर आप सुनेंगे एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग। 2:30 पर किसान भाई सुनेंगे खेती की बातें।

केंद्र से रिले होगा शाम 6:50 पर कुमाऊनी में और शाम 7:30 पर माफ कीजिएगा शाम 6:50 पर गढ़वाली में और शाम 7:30 पर कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। शाम 5:05 पर शैलस्वर कार्यक्रम में हमारी कलाकार होंगी ज्योति उप्रेति। युववाणी कार्यक्रम में कल शाम 5:15 पर बातचीत होगी विश्व पर्यावरण दिवस पर। सिने जगत से सेगमेंट के तहत चर्चा करेंगे अभिनेता सुनील दत्त के बारे में। साथ ही युवा साथी सुनेंगे रुखसार खातून की वार्ता, विषय होगा जलवायु परिवर्तन गंभीर चुनौती। शाम 5:45 पर उत्तरायण कार्यक्रम में चर्चा होगी विश्व पर्यावरण दिवस पर। साथ ही सुनिएगा पर्यावरण संरक्षण हेतु बच्चों में जागरूकता विषय पर क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। शाम 6:41 पर भक्ति संगीत में सुनिएगा शर्मा बंधु और उदित नारायण के गाए भक्ति गीत। ग्राम जगत कार्यक्रम में कल शाम 7:00 श्रोताओं से बातें होंगी फसलों पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव विषय पर। इसके अलावा चर्चा होगी औषधीय पौधों की खेती से पर्वतीय क्षेत्र में रोजगार विषय पर। कल हमारे केंद्र से फिल्म संगीत का आनंद आप लेंगे। सुबह 9:05 पर गीत नजर कार्यक्रम में, सुबह 10:35 पर सुरबहार, सुबह 11:00 सैनिकों के लिए, दोपहर 12:00 मेरी पसंद, दोपहर 2:45 पर एक ही फनकार और अपराह्न 3:00 आप सुनेंगे सदाबहार फिल्मी गीत। फिल्म संगीत पुनः सुनेंगे शाम 7:40 पर, रात्रि 9:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम के तहत, रात्रि 9:30 पर होगा फरमाइशी फिल्मी गीतों का हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम आपके अनुरोध पर, और फिल्म संगीत पुनः सुनिएगा रात्रि 10:30 पर। कल सुगम संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:05 पर सबरंग कार्यक्रम में, दोपहर 1:15 पर, रात्रि 8:00 सबरस कार्यक्रम के तहत और रात्रि 10:00 पुनः सुगम संगीत प्रसारित किया जाएगा। ये थी रूपरेखा हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष और कल की दोनों सभाओं में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब युवा साथी सुनेंगे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी प्यारे मित्रों का हमारे कार्यक्रम युववाणी में। और मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो मित्र हिमानी बोरा। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे विषय की जो हमारे जीवन में सबसे अहम भूमिका निभाता है। आज पूरी दुनिया जलवायु परिवर्तन, बढ़ते प्रदूषण, ग्लोबल वार्मिंग और जैव विविधता के नुकसान जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। इन समस्याओं के लिए केवल सरकारें या बड़े उद्योग ही नहीं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की आदतें भी कहीं ना कहीं इसका कारण हैं। दोस्तों, हमें पर्यावरण के प्रति एक ऐसी जीवन शैली अपनानी होगी जो प्रकृति के प्रति जिम्मेदार और संवेदनशील हो, जो बड़े बड़े बदलावों की नहीं बल्कि छोटे छोटे प्रयासों की बात करती हो, जिसमें संसाधनों का दुरुपयोग न करना, बिजली जल का संरक्षण करना, प्लास्टिक के यूज़ को बंद करना, सार्वजनिक वाहनों का प्रयोग करना और जितना संभव हो सके वृक्षारोपण करना। दोस्तों, आज का युवा तकनीकी से जुड़ा है और बदलाव लाने की क्षमता रखता है। यदि हर युवा ये संकल्प ले कि वो अपने जीवन में पर्यावरण हितैषी आदतों को अपनाएगा तो समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन देखा जा सकता है। हमें ये समझना होगा कि पर्यावरण संरक्षण कोई एक दिन का अभियान नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े का बैग यूज़ करते हैं, भोजन की बर्बादी को रोकते हैं, स्थानीय उत्पाद

0: उत्पादों को प्राथमिकता देते हैं, प्लास्टिक का यूज बंद करते हैं, तब हम कहीं न कहीं पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान दे रहे होते हैं। दोस्तों, प्रकृति हमें बिना किसी भेदभाव के स्वच्छ हवा, पानी और जीवन जीने के लिए सभी आवश्यक संसाधन देती है। इसलिए हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम इन सब का जिम्मेदारी से प्रयोग करें और आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ पर्यावरण देना हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। तो आइए दोस्तों, हम सब संकल्प लें कि जितना संभव हो सके पर्यावरण के प्रति संवेदनशील रहेंगे और पृथ्वी को स्वच्छ और हरा भरा रखने में अपना योगदान देंगे। चलिए दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। अब सुनाते हैं कार्यक्रम में आपको जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को लेकर राहुल के साथ हुई ये भेंट वार्ता। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है राहुल आपका हमारे कार्यक्रम युवाणी में।
1: बहुत धन्यवाद हिमानी आपका।
0: तो राहुल, आप हमारे श्रोताओं को ना थोड़ा सा परिचय दीजिए।
1: जी, सबसे पहले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम राहुल है, मैं मूल रूप से सेराघाट क्षेत्र का निवासी हूँ और यहाँ अभी अल्मोड़ा में मेरा ज्योग्राफी से मास्टर्स की पढ़ाई चल रही है।
0: जी राहुल, बिल्कुल सही। तो राहुल, जैसा कि आज हम सब लोग जलवायु परिवर्तन देख रहे हैं और ग्लोबल वार्मिंग इतनी बढ़ रही है, तो आप हमें ये बताइए कि जो जलवायु परिवर्तन है और जो ग्लोबल वार्मिंग है, क्या वो दोनों एक ही हैं या फिर उन दोनों का कारण एक ही है?
1: जी, अक्सर लोग जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग को एक ही समझ लेते हैं, जबकि दोनों में थोड़ा अंतर है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के औसत तापमान में लगातार वृद्धि होना, जिसका मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन का बढ़ना है। वहीं जलवायु परिवर्तन एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें तापमान बढ़ने के साथ साथ वर्षा के पैटर्न में बदलाव, सूखा, बाढ़, चक्रवात और अन्य चरम मौसमी घटनाएं भी शामिल है। सरल शब्दों में कहें तो ग्लोबल वार्मिंग जलवायु परिवर्तन का एक प्रमुख कारण है। आज हम जो आप असामान्य गर्मी, बेमौसम बारिश और प्राकृतिक आपदाएं देख रहे हैं, वे इसी परिवर्तन के संकेत है। यह केवल पर्यावरण का नहीं बल्कि मानव जीवन, कृषि, स्वास्थ्य और अर्थव्यवस्था का विषय भी बन चुका है।
0: जी राहुल, आपने बिल्कुल सही बात कही है। राहुल, तो आप ये बताइए कि पिछले कुछ वर्षों में मौसम में जो असामान्य बदलाव देखने को मिल रहे हैं, ये जलवायु परिवर्तन की ओर संकेत करते हैं?
1: जी हाँ हिमानी, बिल्कुल। पिछले कुछ वर्षों में जो बदलाव हम देख रहे हैं, वे जलवायु परिवर्तन के स्पष्ट संकेत है। पहले मौसम अपेक्षाकृत स्थिर हुआ करता था, लेकिन अब रिकॉर्ड तोड़ गर्मी, अचानक भारी बारिश, लंबे सूखे और बार बार आने वाली बाढ़ जैसी घटनाएं भी बढ़ रही है। कई क्षेत्रों में सर्दियां छोटी होती जा रही है और गर्मी का मौसम लंबा हो रहा है। हिमालयी ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे भविष्य में जल संकट की आशंका बढ़ रही है। वैज्ञानिक लगातार चेतावनी भी दे रहे हैं कि यदि ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन कम नहीं किया गया तो ऐसी घटनाएं और भी गंभीर हो सकती है। इसलिए यह केवल भविष्य का नहीं बल्कि वर्तमान का संकट है, जिसे हम अपनी आंखों से देख रहे हैं।
0: जी हाँ राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा है। आजकल चरम मौसम संबंधी घटनाएं हो रही हैं, जैसे कि मई जून के महीने में लगातार बारिश का होना, जो कि बहुत ही असामान्य है।
1: जी
0: राहुल, ये बताइए कि युवा पीढ़ी क्या मानती है कि पर्यावरण केवल सरकार की जिम्मेदारी है या फिर केवल सरकारें ही उसको लेकर कोई सही कार्य करेंगी या फिर युवा भी अपनी तरफ से उसमें कुछ कर सकता है, आपकी क्या सोच है इसे लेकर?
1: नहीं, ये सोच पूरी तरीके से सही नहीं है। सरकारें नीतियां बना सकती है, कानून लागू कर सकती है और बड़े स्तर पर योजनाएं भी चला सकती है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण केवल सरकारी प्रयासों से संभव नहीं है। हर नागरिक की भूमिका उतनी ही महत्वपूर्ण है। यदि हम बिजली बचाए, पानी का संरक्षण करें, प्लास्टिक का कम उपयोग करें या अधिक से अधिक पेड़ लगाए, तो इसका बड़ा सकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। युवा समाज का सबसे ऊर्जावान वर्ग है और वे जागरूकता फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े बदलाव हमेशा समाज की भागीदारी से आए हैं। इसलिए पर्यावरण बचाने की जिम्मेदारी सरकार और जनता दोनों की साझा जिम्मेदारी है।
0: जी राहुल, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि हमेशा जो भी बदलाव हो

0: होते हैं वो समाज की भागीदारी की वजह से ही संभव हो पाते हैं। और सरकारें केवल नीतियां बना सकती हैं, लेकिन उन्हें अच्छी तरीके से अमल में लाना ये काम समाज और हमारा युवा वर्ग ही कर सकता है। राहुल, आप हमें ये बताइए कि विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन कैसे बनाया जा सकता है, क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है विकास को रोकना संभव नहीं है, केवल एक संतुलन ही बनाकर हम दोनों के बीच समन्वय कर सकते हैं।
1: जी हाँ हिमानी, विकास और पर्यावरण एक दूसरे के विरोधी नहीं है, बल्कि दोनों का संतुलन ही सतत विकास का आधार है। हमें ऐसे विकास मॉडल अपनाने होंगे जो आर्थिक प्रगति के साथ साथ पर्यावरण की रक्षा भी करे। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों में स्वच्छ तकनीकों को अपनाया जा सकता है और शहरों को हरित क्षेत्र में बदला जा सकता है। विकास का उद्देश्य केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करना नहीं होना चाहिए।

0: साथ पर्यावरण की रक्षा भी करें। उदाहरण के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर और पवन ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सकता है। उद्योगों में स्वच्छ तकनीकों को अपनाया जा सकता है और शहरों को हरित क्षेत्र में बदला जा सकता है। विकास का उद्देश्य केवल वर्तमान पीढ़ी की जरूरतें पूरी करना नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के संसाधनों की रक्षा करना भी होना चाहिए। जब विकास प्रकृति के साथ सामंजस्य बनाकर होगा, तभी वह वास्तव में टिकाऊ और लाभकारी साबित होगा।
1: जी राहुल, बहुत अच्छी बात है। अंत में आप हमारे युवाओं को कोई संदेश देना चाहेंगे कि वो अपने दैनिक जीवन में ऐसे क्या कदम उठा सकते हैं कि वो जलवायु परिवर्तन की इस चुनौती में अपना कुछ योगदान दे सके?
0: जी हिमानी, मैं इस प्रोग्राम के माध्यम से सभी युवाओं को कहना चाहूँगा कि जलवायु परिवर्तन जैसी बड़ी चुनौती से लड़ाई केवल बड़े फैसलों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे प्रयासों से भी जीती जा सकती है। हम बिजली और पानी की बचत करें, एकल उपयोग वाले प्लास्टिक से दूरी बनाएं, सार्वजनिक परिवहन का उपयोग बढ़ाएं और अधिक से अधिक पौधे लगाएं। डिजिटल युग में पर्यावरण के प्रति सकारात्मक संदेश फैलाना भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। सबसे जरूरी बात यह है कि हम प्रकृति को केवल संसाधन नहीं बल्कि अपनी जीवन रेखा समझे। याद रखिए, पृथ्वी हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। इसलिए आज उठाया गया हर छोटा कदम भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
1: जी राहुल, आपने बहुत ही अच्छी बात हमारे श्रोताओं से कही है कि पृथ्वी जो है वो हमें हमारे पूर्वजों से विरासत में नहीं मिली है, बल्कि हमने इसे आने वाली पीढ़ियों से उधार लिया है। तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसके संसाधनों का उतना ही प्रयोग करें जितनी आवश्यकता है और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें।
0: जी हाँ,
1: तो राहुल बहुत बहुत धन्यवाद है आपका कि आपने हमारे श्रोताओं के साथ अपनी जानकारी साझा की।
0: धन्यवाद हिमानी।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: बेटी के लिए गहने बनवाए एकदम खरे हॉलमार्क के, और तो और दुकानदार ने खुद 15 मिनट में हॉलमार्क के निशान लगाकर भी दिए।
3: अरे बुद्धू, हॉलमार्क गहने तो सिर्फ BIS लाइसेंस होल्डर ज्वेलर ही बेचते हैं, और BIS हॉलमार्क करने के लिए 4-5 घंटे का वक्त लगता है।
4: अगर आप भी किसी ऐसे धोखे का शिकार हुए हैं तो BIS की वेबसाइट bis.org.in पर शिकायत करें। जागो ग्राहक जागो।
5: चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम में आज के अंक रोजगार समाचार की ओर, और देते हैं जानकारी इस सप्ताह निकले कुछ प्रमुख रोजगारों की। दोस्तों, संघ लोक सेवा आयोग नेशनल डिफेंस एकेडमी और नेवल एकेडमी एग्जामिनेशन सेकंड 2026 के लिए आधिकारिक विज्ञापन जारी कर चुकी है। कुल 394 पदों पर आवेदन किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 9 जून है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट upsc.gov.in पर। दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड में TGT फिटर ग्रेड सेकंड और अन्य पद रिक्त। कुल 1969 पद हैं, और इसकी जो प्रारंभिक तिथि है वो 16 जून है। अधिक जानकारी के लिए ऑफिशियल वेबसाइट dsssb.delhi.gov.in पर विजिट करें। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू ऑफिसर, असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर और कंप्यूटर असिस्टेंट की आवश्यकता। कुल 543 पद रिक्त हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 21 जून है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट allahabadhighcourt.in पर। कोल इंडिया लिमिटेड में मैनेजमेंट ट्रेनी के

पद रिक्त, कुल 660 पदों पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 11 जून है। विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट coalindia.in पर। दोस्तों, रेलवे भर्ती बोर्ड में असिस्टेंट लोको पायलट के पदों पर आवेदन नियुक्त, कुल 11,127 पदों पर आवेदन किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 14 जून है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें rrbapply.gov.in पर। भारतीय स्टेट बैंक में अप्रेंटिस की भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन जारी किए जा रहे हैं। ये भर्तियां विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में की जाएंगी। कुल 7,150 पदों पर आवेदन किए जाएंगे। आवेदन की अंतिम तिथि 8 जून है। विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट sbi.bank.in पर। दोस्तों, एसएससी ने कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन 2026 के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इसमें कुल 12,256 पद हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 22 जून रहेगी और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर। पंजाब एंड सिंध बैंक में अप्रेंटिस की रिक्तियां भरी जाएंगी। कुल 635 पदों पर ये रिक्तियां भरी जाएंगी। आवेदन की अंतिम तिथि 6 जून है और अधिक जानकारी के लिए विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट punjabandsindh.bank.in पर। चलिए दोस्तों, रोजगार समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। करते हैं कार्यक्रम में आपका मनोरंजन और सुनाते हैं आपको एक प्यार भरा गीत।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण में और ले चलते हैं आपको आज के इतिहास की तरफ, जिसमें आज हम देंगे जानकारी आज यानी 4 जून को घटी सभी महत्वपूर्ण घटनाओं की। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1919 में अमेरिकी नौसेना ने कोस्टारिका पर हमला किया था। आज के दिन वर्ष 1929 में जॉर्ज ईस्टमैन ने पहली रंगीन फिल्म का नमूना पेश किया था। आज के दिन वर्ष 1940 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की सेना फ्रांस की राजधानी पेरिस में प्रवेश किया था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1944 में अमेरिकी सेना ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान रोम में प्रवेश किया था। वर्ष 1959 में आज के दिन सी राजगोपालाचारी ने स्वतंत्रता पार्टी बनाने की घोषणा की थी। आज के दिन वर्ष 1964 में मालदीव ने संविधान का निर्माण किया था। वर्ष 1970 में आज के दिन ब्रिटेन से अलग होकर टांगा एक स्वतंत्र देश बना था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1979 में चीन की राजधानी बीजिंग में आनमन चौक पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे नागरिकों पर सैन्य कार्रवाई की गई थी। वर्ष 1991 में आज के दिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली गैर साम्यवादी सरकार यूरोपीय देश अल्बानिया में बनी थी। आज के दिन वर्ष 1997 में दूरसंचार उपग्रह 2D कक्षा में पहुंचा था। दोस्तों, आज के दिन वर्ष 1936 में हिंदी सिनेमा की जानी मानी अभिनेत्री नूतन का जन्म हुआ था। उन्हें वंदनी, सुजाता, अनाडी सहित अनेक फिल्मों में उनकी सदाबहार अदाकारी के लिए जाना जाता है। दोस्तों, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 4 जून को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। ये दिन बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया जाता है। चलिए दोस्तों, आज के इतिहास में बस इतना ही। अब सुनाते हैं आपको एक प्यारा सा गीत।

चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं कार्यक्रम के अंतिम चरण की ओर, जिसमें हम रोज पूछते हैं आपसे एक प्रश्न और देते हैं उत्तर बीते दिन पूछे गए प्रश्न का। दोस्तों, हमारा कल का प्रश्न था, विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है? जिसका सही उत्तर है, प्रतिवर्ष 3 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसका सही उत्तर हमें भेजा है ग्राम नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी साहू और बेबी आराध्या साहू, काटा रोड वाशिम महाराष्ट्र से मास्टर विठल सरोशे, सुषमा सरोशे, ग्राम पुतकी कला कवर्दा छत्तीसगढ़ से विनय शंकर पांडे, नयन पांडे, गुजरात गांधीग्राम से प्रवीण सोनी और एसएम जावेद गुमला झारखंड से। चलिए दोस्तों, कार्यक्रम युवाणी में नोट कीजिए हमारा आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, आक्रामकता के शिकार मासूम बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अगर जानते हैं आप इस प्रश्न का सही उत्तर तो लिख भेजिए हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9411011122 पर। हमें रहता है इंतज़ार आपके सही उत्तर का। चलिए दोस्तों, अब कार्यक्रम युवाणी में समय हो गया है आपसे विदा लेने का। कल मिलते हैं पुनः एक नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति अपनी रेडियो मित्र हिमानी को। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम उत्तरायण।

कार्यक्रम उत्तरायण सुनने सब दगड़न के मैं प्रमोद पांडे नमस्कार दगड़ियो आज अतिक्रमक शिकार मासूम नंतिनोक अंतर्राष्ट्रीय दिवस दगड़ियो यो दिवस प्रत्येक वर्ष 4 जून हूँ मनाए जा यो दिवस का उद्देश्य युद्ध हिंसा आतंकवाद और अन्य प्रकार के आक्रामक घटनाओं है प्रभावित नंतिनोक अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें प्रति संवेदना प्रकट करना है दगड़ियो यो दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1982 में घोषित करी गई थी। दुनिया कई हिस्सों में नंतिन युद्ध संघर्ष और हिंसा और अन्य आक्रामक गतिविधियों का शिकार बने। इन परिस्थितियों में नंतिनों के शारीरिक मानसिक और भावनात्मक कष्ट सहन पड़ने उन्हें बचपन शिक्षा और सुरक्षित जीवन प्रभावित हों। यह दिवस का मुख्य उद्देश्य लोगों के नंतिनों प्रति अधिकारों प्रति जागरूक करना और यह सुनिश्चित करना कि प्रत्येक बच्चे सुरक्षित वातावरण शिक्षा स्वास्थ्य और सम्मानजनक जीवन प्राप्त हो। यो दिन हमन के याद दिलों की नंतिनों की सुरक्षा केवल सरकार का नहीं बल्कि पूर्व समाज जिम्मेदारी है। आज ले विश्व के अनेक देशों में नंतिन युद्ध और हिंसा कारण विस्थापित होनी इस नंतिनों के विशेष सहायता शिक्षा और मानसिक सहयोग की आवश्यकता हो। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकार उन्हें संरक्षण लीजिए कार्य करने और तो यो दिवस हमन के नंतिनों प्रति संवेदनशील बना और उन्हें अधिकारियों की रक्षा करने की प्रेरणा दी। हमन के मिलवेर इस समाज में ऊँचे जहाँ हर नंतिन भयमुक्त सुरक्षित और खुशहाल जीवन जी सके। दगड़ियों मासूम नंतिन कोई राष्ट्र भविष्य होनी उन्हें सुरक्षा शिक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना हमर नैतिक कर्तव्य है। अंतर्राष्ट्रीय मासूम बच्चों के खिलाफ आक्रमकता शिकार दिवस हमन की यह जिम्मेदारी स्मरण करूँ। तो दगड़ियों यू तो आप लोगों ने बातचीत और अब कार्यक्रम में अगले सुनो दीवान करने वाला गई हुई शुलोक गीत।

0: एक निशान वाला कोई सामान मत लाया करो।
1: बिना सामान चेक किए शुरू मत हो जाया करो। सारा सामान ISI का ही है।
0: जब से आपने ISI के निशान वाला सामान लाना शुरू किया है, हमारी तो झगड़ा ही खत्म हो गया है।
1: ये तो है। ISI के निशान वाला सामान लाएं,
0: झगड़ा मिटाएं, विश्वास जगाएं।
2: और दगड़ियों कार्यक्रम में ये सुन लो किशन चंद सिराड़ी और उन दगड़ियों के ही यो लोकगीत।

0: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वहीं देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: कार्यक्रम है सुनो पशुपालन बटिक लाभ विषय पर कपकोट बक्सर निवासी पशुपालक भास्करानंद जोशी दगड़ करिए यो छेद संकलित भेंटवार्ता।
4: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं छेद संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आज हमारे साथ हैं कपकोट जिला बागेश्वर निवासी श्री भास्करानंद जोशी जी। जोशी जी से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पशुपालन से लाभ विषय पर। तो जोशी जी सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे छेद संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में। जोशी जी मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके पास कितने पशु हैं?
5: अभी खेती बाड़ी के साथ पशुपालन का कार्य कर रहा हूँ जिसमें अभी मेरे पास 10 भैंसे 2 गाय और 50 बकरियां हैं और ये सब्जी का काम भी करता हूँ। अभी मेरे पास ये 10 क्विंटल देसी कद्दू जो इसको जुगनी के नाम से जाना जाता है लंबा वाला कद्दू वो भी मैंने उत्पादन करके।
4: तो जो आपके पास गाय भैंसे हैं ना जोशी जी?
5: हाँ जी।
4: उनको आप कहाँ से लाए?
5: साहब उनको तो यही लोकल से लेके आए।
4: लोकल से? तो आपका जो दूध हो जाता है गाय और भैंसों से कितना हो जाता है?
5: गाय भैंसों का साहब अभी तो 30 लीटर हो पाता है।
4: तो इसको बेचने के लिए आप कहाँ कपकोट बाजार में बिक जाता है या आप बागेश्वर बेचते हैं?
5: कुछ लोकल में बिक जाता है कुछ बराड़ी यहाँ कपकोट में डेयरी है वहाँ दे के आते हैं।
4: अच्छा, यानी कि बेचने में कोई परेशानी आपको नहीं होती है। और के लिए आज हम देख रहे हैं कि हमारा जो पशुपालन विभाग है हमारी सरकार है वो भी पशुओं के को खरीदने में पशुपालन को बढ़ावा देने में अपना सहयोग दे रही है और सब्सिडी भी प्रदान कर रही है। तो आपने इसके लिए सब्सिडी प्राप्त करी?
5: सब ये कागज बना रखे हैं अभी तो सब्सिडी कुछ मिली नहीं है। बाकी ये फाइल बनाने में लगा हूँ एक मिनी डेयरी के प्लान के लिए।
4: जी तो कितने समय से कर रहे हैं आप पशुपालन का कार्य?
5: अभी हमको हो गए हैं साहब। वैसे तो पापा की पीढ़ी से ही करते आ रहे हैं। अभी मैं जब से शुरू किया हूँ तब से 5 साल हो रहे हैं।
4: जब 5 साल से आप भी कर रहे
5: हैं? कोरोना के टाइम से।
4: जब कोरोना के टाइम से आप भी कर रहे हैं? जोशी जी एक बात बताइए, जो बकरियां आपने बताई ना अभी 50 बकरियां आपके पास हैं, तो ये बकरियां अभी कौन सी हैं? पहाड़ी बकरियां हैं?
5: सब ये कुछ क्रॉस ब्रीड है जैसे देसी बकरा और पहाड़ी चगोरखा बकरी पे क्रॉस ब्रीड है। कुछ ओरिजिनल ब्रीड है तोतापरी बरबरी अजमेर ऐसी ब्रीड है मेरे पास सर। अलग अलग प्राइस अलग अलग साइज की बकरी रहती है। हाँ जी।
4: तो आप बकरियों का दूध भी बेचते हैं?
5: बकरियों का दूध नहीं बेचते सब बकरी ही बेचते हैं बस।
4: अच्छा, बकरी पूरी बकरी भी निकालते होंगे आप? और गाय भैंस जैसे घी किस हिसाब से बेचते हैं आप?
5: सब लोकल में 800 रुपए किलो ये भैंस का घी और 1000 रुपए किलो गाय
4: का। मतलब 800 रुपए किलो आपका भैंस का घी?
5: हाँ जी।
4: और 1000 रुपए आपका गाय का घी। इस चारे की क्या व्यवस्था है आपके वहाँ? आपके पास है चारा हो जाता है पर्याप्त? गाय ये घास हो जाती है?
5: हाँ जी हाँ जी।
4: और इसको
5: भूसा खिलाते हैं थोड़ा गेहूँ है थ्रेसर है मिनी थ्रेसर जो
4: जी
5: भूसा रख लेते हैं कुछ और कुछ
4: जी। अच्छा हाँ, हमने सुना हुआ है कि पशुओं को जब हम पानी देते हैं ना और पशुओं को नमक देना भी जरूरी होता है, क्या आप भी अपने पशुओं को नमक का सेवन करवाते हैं गाय भैंसों बकरियों को?
5: जी।
4: अच्छा, अगर हम नमक ना दें तो क्या होता है उससे?
5: होता तो क्या है वही जैसे मनुष्य को खाने के लिए नमक आयोडीन की पूर्ति करता है वैसे ही जानवरों पे भी है। ये है उनके मुंह का थोड़ा टेस्ट बदल जाता है जिससे उनका खाने में ज्यादा मतलब इंटरेस्ट हो या ज्यादा खाती है उससे।
4: अच्छा, बिल्कुल सही बात कह रहे आप कह रहे हैं जोशी जी। जिस हिसाब से मनुष्य के खाने का टेस्ट बदल जाता है वो इसी प्रकार से जानवरों का भी वही हाल होता है। तो इसके अलावा जो पशु गोबर होता है ना, उसका क्या कंपोस्ट बनाते हैं आप?
5: हाँ जी, उसका गोबर खाद कंपोस्ट बना के खेतों में यूज करते हैं, जिस पे सब्जी लगाते हैं।
4: कितने हैं आपके पास कंपोस्ट के गड्ढे?
5: अभी मेरे पास साहब हैं चार।
4: चार गड्ढे हैं। तो उस कंपोस्ट क्या करते हैं, बेचते भी हैं आप?
5: ना साहब, बेचते नहीं हैं, अपनी यूज के लिए। मेरे पास खेती काफी है, दो एकड़ खेती है।
4: अच्छा, दो एकड़।
5: हाँ, 50 नाली।
4: अच्छा, 50 नाली आपके पास खेत में खेती है। तो उन खेतों में आजकल क्या क्या लगा रखा है आपने?
5: अभी साहब मैंने सोयाबीन लगा रखी है, मडुआ लगा रखा है और मदीरा लगा रखा है, मनीर जिसको पहाड़ीवास।
4: जी जी, झूमरा हम कह सकते हैं।
5: जी, धान लगा रखा है मैंने, पूसा बासमती की पौध तैयार रखी है अभी, और वीएल 88 और एक धान आता है
4: जी,
5: वो लगा रखा है।
4: आप कह रहे हैं पूसा बासमती, उनके जो बीज, वो ये प्रजाति है, ये प्रजाति तो कहाँ से लेके आए आप?
5: इसको मेरे केवी के काफली घर से लेके आया था।
4: अच्छा, मतलब और लाल धान की प्रजाति?
5: वो भी केवी के काफली घर से लेके आया हूँ।
4: अच्छा, हमारे वहाँ एक पुराना धान होता था ना लाल, जो आज विलुप्त की कगार पे है, तो क्या आप उसको भी लगाते हैं?
5: हाँ जी, वही लगा रखा है इस बार।
4: और आपके वहाँ वो भी होती है, मैंने सुना है कि जो मुंशारी की राजमा है वो भी होती है, मैंने सुना है उधर को।
5: हाँ, होती तो है, मैंने लगाई नहीं।
4: और ये जो सब्जी है आपने, बीन्स है और आपकी और जो सब्जियाँ हैं, भिंडी है, इनकी बीज कहाँ से लाए आप?
5: ये कुछ बीज तो साहब काफी लेके आया, कुछ बागेश्वर गोविंद बीज भंडार के।
4: अच्छा, मतलब
5: शॉप है वहाँ से लेके आया।
4: मतलब आपका कहना है कि कुछ तो मैं काफली गैल से वैज्ञानिक बीज ले आते हैं आप, और जो कुछ बीज आप बाजार से भी ले लेते हैं?
5: हाँ, कुछ हाइब्रिड भी ले लेता हूँ साहब, क्योंकि पहाड़ में ये पहाड़ की जो अपनी प्रजाति है बीजों की, वो थोड़ा लेट होती है, बरसात में होती है, तो ये हाइब्रिड चीजें हैं वो थोड़ा जल्दी हो जाती है।
4: जल्दी हो जाती है, सही कह रहे हैं आप। जो अब ये बरसाती धान है, यानी कि सिंचित धान, ये होता है क्या?
5: हाँ साहब, यही होता है, हमारे वहाँ धान भी होता है और ये जो आप बता रहे हैं सिंचाई वाला धान, ये भी होता है।
4: तो मडुआ मदिरा कितना हो जाता है?
5: मडुआ मदिरा तो साहब जंगली जानवर काफी नुकसान कर दे रहा है।
4: हाँ बिल्कुल,
5: ये काफी नुकसान कर दे रही है उसको ज्यादा, इसलिए वो कमी मात्रा में हो पाता है।
4: तो आप लोगों ने जंगली जानवरों से छुटकारे के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है?
5: साहब ये कुछ बहुत तो पहाड़ी झाड़ियों जो काटे जा रही है उससे घेराबंदी कर रखी है, कुछ तार बार लेके लगा रखी है।
4: अच्छा, आप सरकार द्वारा दी जाने वाली कोई ऐसी योजना का लाभ उठा रहे हैं, जैसे फसल बीमा है, किसान क्रेडिट कार्ड है, सम्मान निधि है, इनका लाभ उठाते हैं?
5: हाँ साहब, किसान सम्मान निधि तो आती है मेरे पापा के खाते में, और जो ये फसल बीमा है, फसल बीमा तो साहब काफी कम मुआवजा मिल पा रहा है, जैसे जितना नुकसान है उतना मिल नहीं पाता है किसान को एग्जैक्ट फील्ड पे, और जैसे सरकारी विभागों के आदमियों ने लिख दिया वैसे ही मुआवजा मिलता है। एक फील्ड पे किसान को कितना नुकसान हो गया है ये सरकार नहीं देखती है, बस ऐसे ही पटवारी या जिस बड़े अधिकारी ने जो लिख दिया वही मुआवजा मिलता है। इस बार ओला, पिछली बार यहाँ ओलावृष्टि से पूरा गेहूँ नष्ट हो गया था, गेहूँ की फसल बिल्कुल काम की नहीं रही, और लास्ट में 1000 रुपये मुआवजा आया था, जिसमें कहीं 10-10 क्विंटल गेहूँ बर्बाद हो गया था।
4: अच्छा, उसके अलावा

0: कोई सिंचाई योजना का लाभ?
1: अभी तक तो वो ही लाभ नहीं मिल पाया है।
0: अपने पॉली हाउस लगा रखे हैं?
1: सब पॉली हाउस लगा रखा है।
0: कितने बाई कितने का है
1: ये? है आपका 15 मीटर लंबा है, 2.5 मीटर चौड़ा है।
0: अच्छा, इसमें क्या क्या लगा रखा है?
1: इसमें सब शिमला मिर्च लगा रखी है। अभी बरसात में तो क्योंकि बाहर हो नहीं पाती है, पॉली हाउस के अंदर ही लगा रखी है।
0: अच्छा, शिमला मिर्च लगा रखी है। शिमला मिर्च के पौधे कितने हो गए फूल आने लायक?
1: हाँ, फूल आने लायक हो गया है।
0: चलो,
1: अभी फलत पे कुछ पेड़ जो बाहर लगा रखे थे वो तो फलत में,
0: और बीन
1: पहले उसके अंदर थोड़ा लेट लगा रखा है क्योंकि वो बरसात में ही ज्यादा चलता है।
0: और बीन कितने बड़े हो गए?
1: बीन्स तो लगभग सब 50-60 किलो निकाल दिया है मैंने। अब बीन्स की बरसात थोड़ा धीमी हो गई है, थोड़ा जल्दी लगा लेते ना मैंने।
0: अच्छा। अब फिर हम लौट के पशुपालन पे आते हैं। तो पशुपालन एक हमारा ऐसा व्यवसाय है कि जो कृषि के साथ करना अनिवार्य हो जाता है। अगर हम कृषि कार्य करते हैं तो उस पशुपालन से हमें खाद मिल जाती है और गौमूत्र भी मिल जाता है। बहुत कुछ ऐसा है जो कृषि के लिए लाभकारी होता है।
1: बिल्कुल सर, और जो खेतों से घास हो रही है वो भी जानवरों के काम आ जाती है।
0: जानवर
1: काम से एक दूसरे के पूरक काम है। जो एक काम कर रहे हो तो दूसरा काम उसके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर खेती है तो आपको गोबर जो जैविक खाद है वो मिल जाती है उससे, और जो खेतों में आपका ये अवशिष्ट घास है या जो भी बेकार घास जिसको आप कहो वो जानवरों के काम आ जाती है।
0: बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं, बहुत बढ़िया बात आप कहेंगे। खेती के लिए कितना फायदा होता है करके, पशुपालन एक ऐसा रोजगार है कि अगर आदमी पशुपालन का कार्य ढंग से करे तो वो अपना रोजगार चला सकता है। तो जोशी जी, इसके अलावा आप पशुपालन से संबंधित हमारे श्रोताओं से और क्या कहना चाहेंगे?
1: सब पशुपालन से संबंधित यही कहना चाहूंगा कि पहाड़ में आज की डेट में रोजगार तो कुछ है नहीं। पशुपालन ही एक ऐसा साधन है जो पहाड़ में हो सकता है, जिसमें कि घास आज जंगलों से हमें निःशुल्क मिल जाती है, और ये है कि दूध की काफी डिमांड है। एकदम से आदमी बेरोजगार नहीं हो सकता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप।
1: पहाड़ में रोजगार की जिस हिसाब से कमी है उस हिसाब से ये पशुपालन एक अच्छा स्रोत है आय का।
0: बिल्कुल। तो जोशी जी, आपने पशुपालन और कृषि से संबंधित इतनी अच्छी जानकारी हमें बताई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पशुपालन बड़ी लाभ विषय पर दगड़ी वाला आप लोग नल कपकोट बक्सर निवासी पशुपालक भास्कर आनंद जोशी दगड़ करी गई उच्छेद संकलित भेंट वार्ता सुनी, और अब कार्यक्रम में अगिल सुनो अनिल कुमार गई हुई शुलोक गीत।

0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: और जाने जाने सुन लो नरेंद्र सिंह नेगी गई हुई जो गढ़वाली गीत।

उधर वाले वाला आप लोग ने नरेंद्र सिंह नेगी गई हुई यो गढ़वाल लोगी सुनो और अब बखते को आज उत्तराखंड कार्यक्रम संपन्न कर रहा है। थोड़ी देर में उत्तराखंड प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र बेटी रिले करी जल आप लोग प्रतीक्षा करिया एल मका आज्ञा दियो नमस्कार।

0: हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
1: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
2: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
1: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी के माध्यम से 9,74,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 176,59,00,000 की पेंशन राशि हस्तांतरित की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित कारलीगाड़ क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बजरंग सेतु और हिलांस हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण कर विकास कार्यों और स्थानीय आजीविका गतिविधियों की समीक्षा की और हरिद्वार जिले में कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं स्वाति कपिल और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज डीबीटी के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेश के 9,74,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में पेंशन राशि का हस्तांतरण किया। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम में लाभार्थियों के खाते में 176,59,00,000 की धनराशि का हस्तांतरण किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा मुक्त अभियान और वरिष्ठ नागरिकों के प्रति सम्मान और देखभाल की शपथ भी दिलाई। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं को समाज के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। श्री धामी ने कहा कि सरकार का उद्देश्य प्रत्येक पात्र व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव देरी और बाधा के योजनाओं का लाभ प्रदान करना है।
5: मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए, और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो ये नई नई शुरुआत हो रही है, एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है, और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी है, जो जरूरतमंद है, उनको मिले।
4: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास परिसर स्थित राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में विकसित किए जा रहे 3B गार्डन यानी बी फ्रेंडली, बटरफ्लाई फ्रेंडली और बर्ड फ्रेंडली गार्डन के निर्माण कार्य का शुभारंभ कृष्णा वट के पौधे का रोपण कर किया। इस उद्यान का विकास मधुमक्खियों, तितलियों और पक्षियों के संरक्षण व संवर्धन को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। इसके तहत परागण और जैव विविधता को बढ़ावा देने वाले विभिन्न प्रकार के पौधों का व्यापक स्तर पर रोपण किया जा रहा है। उद्यान के आसपास कीटनाशकों और अन्य हानिकारक रसायनों के प्रयोग को प्रतिबंधित रखा जाएगा, जिससे प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखा जा सके। इस विशेष उद्यान के बन जाने से मधुमक्खी पालन को प्रोत्साहन मिलने के साथ साथ जैव विविधता के संरक्षण व संवर्धन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। साथ ही आमजन में पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति जागरूकता बढ़ाने में भी यह उद्यान महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उद्यान में जामुन, शहतूत, सहजन, तुलसी और सूरजमुखी सहित कई प्रजातियों के पौधों का मिश्रित रूप से रोपण किया जा रहा है। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा के आपदा प्रभावित कारलीगाड़ क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने देहरादून के जिलाधिकारी को कारलीगाड़ क्षेत्र में जमा आपदा के मलबे को आगामी 15 दिनों के भीतर पूरी तरह हटाए जाने और भविष्य में किसी प्रकार की क्षति से बचाव के लिए मलबे का वैज्ञानिक ढंग से चैनलाइजेशन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इसके अलावा उन्होंने जिलाधिकारी को कारलीगाड़ के आपदा प्रभावित परिवारों के सुरक्षित पुनर्वास के लिए शीघ्र प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आपदा प्रभावित लोगों के साथ

अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल

0: पूरी संवेदनशीलता के साथ खड़ी है।
1: जब सरकार से ये मकान दोनों तरफ से नदी से घिरे हुए हैं, कभी भी कोई घटना घट सकती है और जान माल की सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। मैंने जाधेड़ को निश्चित कर दिया है कि इनका विस्थापन का प्रस्ताव बनाया जाए और उनको विस्थापित करने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं।
0: गढ़वाल मंडल के आयुक्त आनंद स्वरूप ने आज जिला चिकित्सालय पौड़ी का औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर मरीजों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं की समीक्षा की तथा अस्पताल प्रशासन को व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों, स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों को प्रदान की जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर बल दिया। निरीक्षण के दौरान आयुक्त ने अस्पताल में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराए जाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कर व्यवस्थाओं के संबंध में फीडबैक लिया।
2: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने आज टिहरी गढ़वाल के तपोवन स्थित बजरंग सेतु का स्थलीय निरीक्षण किया गया। इस दौरान उन्होंने सेतु परियोजना की प्रगति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने नरेंद्रनगर विकास खंड के प्लाजडा स्थित हिलांस हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण भी किया। मुख्य सचिव ने भोजनालय परिसर के आसपास ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण सुनिश्चित करने और मेनू को स्पष्ट व सुव्यवस्थित रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए, जिससे पर्यटकों और आगंतुकों को बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन और आजीविका से जुड़े ऐसे प्रयासों को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिससे क्षेत्रीय विकास को गति मिल सके। कांग्रेस के शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि उत्तराखंड के प्राकृतिक संसाधनों का बाहर के लोग उपयोग कर रहे हैं और प्रदेश सरकार को रिमोट कंट्रोल के जरिए दिल्ली से चलाया जा रहा है। वे आज अल्मोड़ा की एक जनसभा को फोन से संबोधित कर रहे थे। कांग्रेस नेता को आज अल्मोड़ा में जनसभा को संबोधित करना था, लेकिन खराब मौसम के कारण पंतनगर से उनका हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सका। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजा ने बताया कि श्री गांधी ने अपने संबोधन में देश की आर्थिक स्थिति और पेपर लीक समेत कई अन्य मामलों को लोगों के समक्ष रखा।
3: उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और कहा कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है और देश पर आर्थिक संकट आया हुआ है और उत्तराखंड के लोगों में जिस तरह से ये सरकार जो यहाँ से नहीं चल रही, मोदी जी के रिमोट कंट्रोल से यहाँ की सरकार चल रही है और यहाँ पे लोगों का अपना कुछ नहीं है, यहाँ के रिसोर्सेस सारे बड़े लोगों के हाथों में दिए जा रहे हैं, ये भाजपा की नीति है।
0: वही प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने दावा किया कि प्रदेश की जनता कांग्रेस की राजनीति को नकार चुकी है और भाजपा विकास के मुद्दों पर लगातार जनता का विश्वास जीत रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर हरिद्वार जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आज नगर मजिस्ट्रेट हरगिरी के नेतृत्व में ललतारो पुल से अपर रोड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले को देखते हुए यह अभियान शुरू किया गया ताकि मेले से पहले शहर को साफ और सुंदर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि अतिक्रमण के खिलाफ यह कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी।
4: जैसा कि आप सभी को विदित है कि अब हमारी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और निकट भविष्य में भी हमारा शहर में कुंभ है और उसको देखते हुए, क्योंकि ये पवित्र स्थल है और यहाँ पर प्रायः डेली हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान के लिए, पूरे शहर में बहुत भीड़ रहती है और उनका आवागमन सुव्यवस्थित हो, इससे जरूरी है कि जगह जगह जहाँ भी अतिक्रमण की वजह से लोगों को असुविधा होती है वो अतिक्रमण मुक्त हो। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने अभियान जारी रखा है और ये अभियान तब तक रहेगा जब तक अतिक्रमण मुक्त न हो।
0: अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के काउंटडाउन कार्यक्रमों की श्रृंखला के तहत आज चंपावत जिले के घटोत्कच मंदिर परिसर में हरित योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिला नोडल अधिकारी डॉ. उमेश भारती ने बताया कि कार्यक्रम में योग अनुदेशकों ने लोगों को योग की विभिन्न क्रियाओं का अभ्यास कराने के साथ ही शारीरिक और मानसिक रूप से स्वास्थ्य लाभों के प्रति जागरूक किया।
5: 21 जून 2026 को हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने जा रहे हैं। इसी क्रम में हमारे जनपद चंपावत में जिला आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर प्रकाश सिंह जी के निर्देशन में विभिन्न प्रकार की योग संबंधित गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। उसी क्रम में आज घटोत्कच मंदिर परिसर चंपावत में योगाभ्यास कार्यक्रम रखा गया, जिसकी थीम थी हरित योग। इसमें जनप्रतिनिधियों को, छात्र छात्राओं को, आम जनमानस को जोड़ने के साथ साथ नर्सिंग कॉलेज के स्टूडेंट्स, वहाँ के टीचर्स की सक्रिय भूमिका रही।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डीबीटी के माध्यम से 9,74,000 से अधिक लाभार्थियों के खातों में 176,59,00,000 की पेंशन राशि हस्तांतरित की। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आपदा प्रभावित कारलीगढ़ क्षेत्र का दौरा कर राहत और पुनर्वास कार्यों का जायजा किया। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने बजरंग सेतु और हिलांस हिमालयन भोजनालय का निरीक्षण कर विकास कार्यों और स्थानीय आजीविका गतिविधियों की समीक्षा की और हरिद्वार जिले में कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले को देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान लगातार जारी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
6: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। आइए अब संध्या काल की इस पावन बेला में चलते हैं भक्ति संगीत की ओर और सुनते हैं विजय शर्मा के स्वर में ये भक्ति रचना।

पंडित भीमसेन जोशी के गाए इसी भक्ति वंदन के साथ भक्ति संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में गढ़वाली में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: देहरादून बटाया गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में रुचि रावत। पहली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन प्रदेश का 9,74,000 लाभार्थियों का खातों में 176,59,00,000 की पेंशन राशि हस्तांतरित कारी। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल बजरंग सेतु और हिलांस हिमालयन भोजनालय को निरीक्षण कारी। हरिद्वार जिला में कांवड़ यात्रा और कुंभ मेला थे दिखित अतिक्रमण हटाओ अभियान का अंतर्गत लल तारो पुल भटे अपर रोड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया और दून अस्पताल में जल्दी ही अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत वाली। किफायती दरों पर उन्नत एक्सरे और विशेष जांच सुविधाएं मिलली। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिन आज डीबीटी का माध्यम से विभिन्न योजनाओं का तहत प्रदेश का 9,74,000 से अधिक पेंशनरों का खातों में पेंशन राशि को हस्तांतरण कारी। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम में लाभार्थियों का खातों में 176,59,00,000 की धनराशि को हस्तांतरण करेगा। ये मौके पर मुख्यमंत्री नशा मुक्त अभियान और वरिष्ठ नागरिकों का प्रति सम्मान और देखभाल की शपथ भी दिलाए। उन बोली कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं तहत समाज का अंतिम छोर पर खड़ा मन की तक पहुँचाने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाली। श्री धामिन बोली कि सरकार को उद्देश्य प्रत्येक पात्र मन की तय बिना कह भेदभाव देरी और बाधा का योजनाओं को लाभ प्रदान करण च।
1: मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे, उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो ये नई नई शुरुआत हो रही है, एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी है, जो जरूरतमंद है, उनको मिले।
0: मुख्य सचिव आनंद वर्धनल आज टिहरी गढ़वाल का तपोवन स्थित बजरंग सेतु को स्थलीय निरीक्षण कारी। ये दौरान उन सेतु परियोजना की प्रगति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दें। मुख्य सचिव नरेंद्र नगर विकास खंड का प्लास्टा स्थित हिलांस हिमालयन भोजनालय को निरीक्षण भी कारी। भोजनालय की संचालक बीना पुंडीरन मुख्य सचिव थे रोज आने वाला ग्राहकों बिक्री और परियोजना का वित्तीय सहयोग की जानकारी दे। मुख्य सचिवन भोजनालय परिसर का अमर समणी ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण सुनिश्चित करण और खान पान सूचित है अच्छा ढंग से प्रदर्शित करने का निर्देश दें, जहाँ से पर्यटकों और मेहमानों तक बेहतर सुविधा उपलब्ध हो सके। उन बोली की स्थानीय स्तर पर पर्यटन और आजीविका से जुड़े यूं प्रयासों तय और ज्यादा मजबूत करे जालू, जैसे क्षेत्रीय विकास तय गति मिल सकली। कांग्रेस का शीर्ष नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बोली कि उत्तराखंड का प्राकृतिक संसाधनों को बहरा का लोग उपयोग करना चन और प्रदेश सरकार तय रिमोट कंट्रोल का माध्यम से दिल्ली भटे चले जानो जो। वो आज अल्मोड़ा की एक जनसभा तय फोन से संबोधित करना चा। कांग्रेस नेता थे आज अल्मोड़ा में जनसभा संबोधित करण छो, लेकिन खराब मौसम का कारण पंतनगर बटे उनको हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भोड़ साकी। कांग्रेस की प्रदेश प्रभारी शैलजन बताए कि श्री गांधी अपना संबोधन में देश की आर्थिक स्थिति और पेपर लीक समेत कई अन्य मामलों थे लुखों का सामनी राखी।
2: उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और कहा कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है और देश पर आर्थिक संकट आया हुआ है और उत्तराखंड के दिनों में जिस तरह से ये सरकार जो यहाँ से नहीं चल रही, मोदी जी के रिमोट कंट्रोल से यहाँ की सरकार चल रही है और यहाँ पे लोगों का

0: इतना कुछ नहीं है, यहाँ के रिसोर्सेज सारे बड़े लोगों के हाथों में दिए जा रहे हैं, ये भाजपा की नीति है।
1: मुख्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्टन दावा कारी की प्रदेश की जनता कांग्रेस की राजनीति धरना करी च और भाजपा विकास का मुद्दों पर लगातार जनता को विश्वास जीतने च। गढ़वाल मंडल का आयुक्त आनंद स्वरूपन आज जिला चिकित्सालय पौड़ी को औचक निरीक्षण कैरी की स्वास्थ्य सेवाओं चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं को निरीक्षण कारी। ये दौरान उन विभिन्न विभागों को निरीक्षण कैरी की मरीजों तय उपलब्ध कराए जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा और अस्पताल प्रशासन तय व्यवस्थाओं तय और मजबूत बनाने का निर्देश देने। उन अस्पताल में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों तय दे जाने वाली सुविधाओं की जानकारी ले की आवश्यक संसाधनों तय बेहतर उपयोग पर जोर दे। निरीक्षण का दौरान आयुक्तन अस्पताल में अग्नि सुरक्षा ऑडिट करना का भी निर्देश देने। उन अस्पताल में भर्ती मरीजों से बातचीत कैरी की व्यवस्थाओं को संबंध में सुझाव ले।
2: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो छे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यु समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का निर्देश पर हरिद्वार जिला में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जाणो छ। ये क्रम में आज नगर मजिस्ट्रेट हरगिरी का नेतृत्व में लल तारो पुल से अपर रोड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया। नगर मजिस्ट्रेट ने बताया कि आने वाली कांवड़ यात्रा और कुंभ मेला तय दिखद यू अभियान शुरू करेगा ताकि मेला से पहले शहर तय साफ और सुंदर बने। जैसा कि उन बोली की अतिक्रमण का खिलाफ यह कार्रवाई अग्नि भी लगातार जारी रही।
3: जैसा कि आप सभी को विदित है कि अब हमारी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और निकट भविष्य में भी हमारा शहर में कुंभ है और उसको देखते हुए क्योंकि ये पवित्र स्थल है और यहाँ पर प्रायः डेली हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान के लिए, पूरे शहर में बहुत भीड़ रहती है और उनका आवागमन सुव्यवस्थित हो, इससे जरूरी है कि जगह जगह जहाँ भी अतिक्रमण की वजह से लोगों को असुविधा होती है वो अतिक्रमण मुक्त हो। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने अभियान जारी रखा है और ये अभियान तब तक रहेगा जब तक अतिक्रमण मुक्त न हो।
1: देहरादून का दून अस्पताल में जल्दी ही अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत होने वाली थी। यहाँ से मरीजों तक कई तरह का एक्सरे और विशेष जांच की पायती दरों पर उपलब्ध वेसा गली। दून अस्पताल की प्राचार्य डॉक्टर गीता जैनल बताया कि अस्पताल में लगातार आधुनिक मशीनें स्थापित करे जाने चिन जहाँ से प्रदेश भर बटे आने वाला मरीजों तक बेहतर उपचार मिल सकल।
4: दून मेडिकल कॉलेज में अभी नई हमारी DDR मशीन आ गई है, डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी कहते हैं इसको, और इसमें जो है आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके आप एक्सरेज ले सकते हैं और जैसे सीओ में बांझपन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम लोग ट्यूब का टेस्ट जो होता है HSG वो इसमें करा जा सकता है, या बेरियम मील आंतों की जाँच जो होती है डाई पिला के इंजेक्ट करके जो एक्सरेज लिए जाते हैं आंतों की, तो बेरियम मील या बेरियम फॉलो-थ्रू वो भी जाँच इसमें करी जा सकती है।
1: उन बोली अस्पताल में जल्द ही ERCP सुविधा भी शुरू करे जाली जहाँ से लीवर और पाचन तंत्र से जुड़ी गंभीर बीमारियों की जांच और उपचार में भी मदद मिलली।
4: एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS बोलते हैं उसको, वो आ गया है। उससे क्या फायदा होगा कि एंडोस्कोपी भी यूज करेंगे और अल्ट्रासाउंड दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जो है मरीज की आंतों में मान लो कोई कैंसर है या ट्यूमर है उसकी हम जांच कर सकते हैं, उससे बायोप्सी भी ले सकते हैं, तो इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ अब इंस्टॉल हो गई है और इसकी हमारे डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी करके आ गई है, तो हम इसको भी शुरू करने वाले हैं।
1: चारधाम यात्रा से सुरक्षित और सुगम बनाना खुणे परिवहन विभाग यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था और भी सख्त करेली। देहरादून का संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनिल बोली कि यात्रियों की सुरक्षा तय दिखत राती 10 बजे बटे सुबह 4 बजे तक कैबी यात्री वाहन तय पहाड़ी मार्गों पर संचालित निकरे जालू। उन बताए कि यात्रा अवधि के दौरान भारी और मध्यम माल वाहक वाहनों का संचालन पर भी रोक डाली ताकि यातायात सुचारू बढ़ियो रहा और जाम भी नहीं लागू।
5: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, उसके क्रम में जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे और आदेश भी जारी किए गए हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी पैसेंजर वाहन पहाड़ी मार्ग पर यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके क्रम में सभी जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय को भी पत्राचार कर दिया गया था और हमने अपने ARTOs को भी बोला है पुलिस से समन्वय बनाते हुए कोई भी ऐसी वाहन जो जा रही है उनको ऊपर पहाड़ में ना जाने दिया जाए।
1: आखिर मामू

0: समाचार एक बार दोबारा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश का 9,74,000 लाभार्थियों का खातों में 176,59,00,000 की पेंशन राशि हस्तांतरित करी। मुख्य सचिव आनंद वर्धनल बजरंग सेतु और हिलांस हिमालयन भोजनालय को निरीक्षण करी। हरिद्वार जिला में कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले से दिग्गज अतिक्रमण हटाओ अभियान का अंतर्गत लल तारो पुल बटे अपर रोड क्षेत्र में अतिक्रमण हटाया गया और दून अस्पताल में जल्दी ही अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत वाली। किफायती दरों पर उन्नत एक्सरे और विशेष जांच सुविधाएं मिलाली। यहाँ का दगड़ी गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
1: FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब किसान भाई सुनेंगे अपना कार्यक्रम किसान वाणी।

किसानवाणी कार्यक्रम सुनने सब श्रोताओं के श्याम भट्टो नमस्कार। श्रोताओं स्वागत छापू सब लोग नक हमारे आज एक कार्यक्रम में। हमारे आज एक कार्यक्रम में प्रायोजक छन कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार। श्रोताओं बढ़ने वाली जनसंख्या और जलवायु परिवर्तन वी कदगर जन प्राकृतिक संसाधन छन उन्हों सीमित रूप में हुनक चुनौतियों के बीच जो खेत बैठ से भी में नई नई तरीकों जरूरत बहुत बढ़ गए और अचानक वक्त में यू और बढ़ते चल लग रहे। यही कारण है अचानक जन तकनीक छन और वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग कर खेत बढ़ गए ज़्यादा उत्पाद देने वाले विकल लाभ मिलने वाले और टिकाऊ बनाई जा सकते। नवाचारक अर्थ छ कि नई तकनीकों और उपकरणों और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग कर बेर खेत के भल बनोन। अचानक वक्त में किसान ड्रोन सेंसर मोबाइल ऐप उन्नत बीजों जैव उर्वरक सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंपों या फिर अचानक जन नई नई कृषि यंत्र छन उन्होंने उपयोग करने लग रहे हैं। वी के अलावा संरक्षित खेती और सटीक खेतबाड़ी द्वारा या फिर जैविक खेत में जैसे नई पद्धति छन उनले लोकप्रिय होने लग रहे हैं। नवाचारक लाभों की बात करूँ तो खेतबाड़ में वील उन्नत बीजों और आधुनिक तकनीकों का प्रयोग फसलों की उपज बढ़ सी। वी के अलावा मशीनों और वैज्ञानिक तरीके प्रबंधन कर बेर लागत और श्रम मले कमी हो। वी के दगड़ सिंचाई भल तकनीकों जैसे कि ड्रिप सिंचाई या फिर स्प्रिंकलर सिंचाई अगर तकनीक उपयोग में लाई जाते एल पानी खपत ले कम हो। वी के अलावा जैव उर्वरकों और संतुलित पोषक तत्वों जो प्रबंधन से वील माटक उर्वरता ले बन्या की रहो। किसानों की आय में वृद्धि ले में भल मात्रा में हो और वी के दगड़ उनके गुणवत्तापूर्ण फसल ले मिल छे। वी के दगड़ जो सब हुए भल लाभ हों के मिल छो और पूरी दुनिया में एक असर हो उसे पर्यावरण संरक्षण रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का संतुलित उपयोग अचानक वक्त में पर्यावरण प्रदूषण कम होन एक बहुत भल बात हो। बात करूँ अगर अपन उत्तराखंड जैसे राज्य में थे या पर्वतीय क्षेत्र में पॉली हाउस टपक सिंचाई औषधि या फिर सुगंधित पौधों खेत कर बेर वी के दगड़ फलों का उत्पादन जैसे जन तकनीक छन उन्हों कर बेर किसान अपन आय बढ़ोन में महत्वपूर्ण योगदान दे सकनान और इन नई नई तरीक कम भूमि में ज़्यादा उत्पादन ले संभव बनान। श्रोताओं हम समझ सकनों कि खेतबाड़ में नई तरीकों का उपयोग किसानों की समृद्धि और हमारे देशक खाद्य सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है जहाँ और अचानक तकनीकों अपना बेर खेतबाड़ के ज़्यादा लाभदायक टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल ले बनाई जा सकते। एक लीजिए किसानों वैज्ञानिकों और सरकार के मिल बेर जो खेतबाड़ में नई तरीक छन उनका बढ़ावा दिन चाहें जो नवाचार के हमके खेत के सतत रूप में विकसित करण मले सुनिश्चित कर सकते। तो श्रोता यो तो छी कुछ बातचीत आप कार्यक्रम में अखिल आप लोगों के सुनो यो भेंट वार्ता खेती बचाओ।

0: अभियानक अंतर्गत टिकाऊ कृषि पद्धतियां, फसल चक्र और संरक्षित जुताई विषय पर विज्ञान विषयक शोध छात्र हेमेश द्विवेदी दगड़ करी हुई अपन दगड़ी श्याम भट्ट क्षेत्र संकलित भेंटवार्ता। श्रोताओं, क्षेत्र संकलित भेंटवार्ताओं के क्रम में आज हम बात कर रहे हैं खेती बचाओ अभियान के अंतर्गत टिकाऊ कृषि पद्धतियां, फसल चक्र और संरक्षित जुताई विषय पर विज्ञान विषय के शोध छात्र हेमेश द्विवेदी से। हम लेंगे इनसे जानकारी इस विषय पर। सबसे पहले स्वागत करते हैं इनका हमारे कार्यक्रम में।
1: धन्यवाद सर, नमस्कार।
0: तो हेमेश जी, सबसे पहले आप हमें कार्यक्रम की शुरुआत में यह बताइए कि जो ये टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं यह क्या हैं और इनकी जो वर्तमान में आवश्यकता है वह क्यों पड़ी है।
1: जी, दरअसल टिकाऊ कृषि पद्धतियां ऐसी कृषि तकनीक हैं जो उत्पादन बढ़ाने के साथ ही मिट्टी, जल और पर्यावरण का संरक्षण करती हैं।
0: जी,
1: और अगर हम देखें नॉर्मली कृषि पद्धतियों की बात करें तो कृषि पद्धतियों के अंतर्गत वे सभी पद्धतियां आ जाती हैं जो हम आमतौर पर कृषि कार्य के दौरान हम अपनाते हैं। उसके अंतर्गत जुताई, बुआई और मड़ाई के सभी प्रकार की तकनीकियां आ जाती हैं, लेकिन इनमें खास तौर से टिकाऊ कृषि पद्धति इसलिए जरूरी हो जाती है ताकि हम मिट्टी की उर्वरता और जल संरक्षण को लेकर के काम कर पाए, तो इसलिए टिकाऊ कृषि पद्धतियों का होना बहुत जरूरी है।
0: जी, जैसे आपने बताया कि जो टिकाऊ कृषि पद्धतियां हैं यह कहीं ना कहीं जो हमारी मृदा की उर्वरता बनाए रखने के साथ साथ ही जो जल संरक्षण है उसमें भी कार्य करती है, तो इसमें हम आगे आपसे जानना चाहेंगे कि जो यह फसल चक्र है वह क्या है और यह कृषि के लिए कैसे लाभदायक है, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी।
1: टिकाऊ कृषि पद्धतियों में प्रमुख रूप से मुख्यतः हम दो प्रकार की पद्धतियों पर बात करते हैं। पहला तो है फसल चक्र है और दूसरा संरक्षित जुताई ही महत्वपूर्ण तकनीक है। इसके अंतर्गत फसल चक्र से आशय है ऐसी पद्धति से जिसमें हम एक ही खेत में अलग अलग मौसम में विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाते हैं। आमतौर पर हम क्या करते हैं कि किसी भी एक खेत में एक ही प्रकार की फसलों को उगाते हैं, जबकि ऐसा करने से उस मिट्टी की उर्वरता और उसमें पाए जाने वाले जो पोषक तत्व हैं वो लगातार दोहन होता जाता है उनका। इसलिए फसल चक्र अपनाने से हमारी जो मूलभूत जो मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनका संरक्षण हो पाता है और लगातार एक ही प्रकार के पोषक तत्वों के दोहन से हम बच पाते हैं और जिससे कि अगली फसल को लाभ मिलता है और साथ ही मृदा में या फसल में जो विभिन्न प्रकार के कीट, रोग और खरपतवार उग जाते हैं उनका प्रकोप कम हो पाता है।
0: बिल्कुल, इसमें हमें कहीं ना कहीं जो खेती है उसमें लाभ मिलता है जिसमें मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने के साथ साथ ही जो हमारी फसलें हैं उनकी सुरक्षा भी रहती है और साथ ही हमें इनमें रासायनिक उर्वरकों की जो आवश्यकता है वह भी घट जाती है। तो जैसे आपने बताया कि जो फसल चक्र है उसके अतिरिक्त एक और उपाय है जो टिकाऊ कृषि पद्धतियों में, वह है संरक्षित जुताई, तो इसका क्या प्रमुख लाभ हो सकता है?
1: यह संरक्षित जुताई भी एक ऐसी प्रकार की पद्धति है जिसमें खेत की जुताई कम से कम की जाती है।
0: जी,
1: और ऐसा करने से जो फसलों के जो अवशेष होते हैं वो खेत में ही इसमें रहने दिया जाता है जिससे मिट्टी की ऊपरी परत सुरक्षित रहती है और जिस कारण से मिट्टी में जो नमी धारण करने की क्षमता होती है वो लंबे समय तक बने रहती है और मिट्टी के अंदर जीवाश्म की मात्रा एक लंबे समय तक बनी रह पाती है। और साथ ही ऐसा करने से हमारा मिट्टी का कटाव रुकता है और जैविक पदार्थों की मात्रा बढ़ती है जिससे किसानों को अपना श्रम और समय दोनों की लागत काफी हद तक बचती है।
0: बिल्कुल, यह उनके समय और लागत बचाने के साथ साथ उनके लाभ को बढ़ाने में भी मददगार साबित होता है। तो हेमेश जी, जैसे हम बात कर रहे हैं फसल चक्र और संरक्षित जुताई की, तो यह मिलकर के मृदा के स्वास्थ्य को किस प्रकार से सुधारने में अपनी भूमिका निभाते हैं?
1: जी हाँ, जैसे मृदा स्वास्थ्य मूल रूप से मिट्टी के स्वास्थ्य को दर्शाता है जिसमें मिट्टी में पाए जाने वाले पोषक पदार्थ, उसके नमी धारण क्षमता इत्यादि को दर्शाता है। अब किसी भी मृदा के स्वास्थ्य को हम उसमें पाए जाने वाले पोषक तत्वों के लगातार दोहन को रोककर कर सकते हैं। साथ ही अगर हम संरक्षित जुताई करें तो इससे लाभकारी जीव उसमें सुरक्षित हो पाते हैं मिट्टी के अंदर और जल धारण में वृद्धि होती है जिसके कारण हम मिट्टी को दीर्घकालीन उत्पादन के योग्य बना पाते हैं।
0: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो दोनों तकनीकें हैं यह मिट्टी को ज्यादा उपजाऊ बनाने, खेती को स्वस्थ बनाने और उसमें अधिक समय तक उत्पादन देने योग्य बनाए रखती है। तो इसमें जो कृषि पद्धतियां हैं यह पर्यावरण संरक्षण में भी अपना योगदान कहीं ना कहीं देती हैं, हमें लाभ देती हैं।
1: हम बिल्कुल, पर्यावरण का संबंध इन कृषि पद्धतियों से जरूर है।
0: जी,
1: अगर हम कृषि के अंतर्गत इन पद्धतियों को अपनाते हैं तो फसलों में उगने वाले जो कीट होते हैं या उसमें प्रयोग किए जाने वाले जो रासायनिक कीटनाशक होते हैं, खाद होते हैं, इनसे हम काफी हद तक इनको कम किया जा सकता है, इनके उपयोग को। तो अगर हम यही टिकाऊ कृषि पद्धतियां अपनाती हैं तो इससे वास्तव में पर्यावरण संरक्षण जरूर होता है जिससे संरक्षित जुताई से हम जान ही चुके हैं कि मिट्टी में कार्बन संचय बढ़ता है जिससे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव काफी हद तक कम करने में मदद मिलते हैं। साथ ही हम पर्यावरण अनुकूल कृषि की तरफ भी बढ़ते हैं।
0: जी बिल्कुल, हम कहीं ना कहीं इस तरह के उपायों को अपनाकर अपने पर्यावरण को संरक्षण करने में भी बहुत बड़ा योगदान देते हैं, और यह कहीं ना कहीं जो हमारी कृषि है उसकी पोषकता को बढ़ाता है और उसमें जो उत्पादित होने वाली फसलें हैं उनके जो पोषक तत्व हैं वह उनको भरपूर करता है। तो हेमेश जी, अगर हम बात करें अपने पर्वतीय क्षेत्रों की, तो इसमें जो फसल चक्र और संरक्षित जुताई है उसका क्या महत्व होता है?
1: जी हाँ, खास तौर पे ये पद्धतियां पर्वतीय क्षेत्रों में और भी ज्यादा जरूरी हो जाती हैं, क्योंकि
0: जी
1: तो पर्वतीय क्षेत्रों की अगर हम मृदा देखें तो मैदानी क्षेत्रों की अपेक्षा काफी कम उपजाऊ होती है,
0: जी
1: और छोटी छोटी जोताई होने के कारण यहाँ काफी किसानों को और भी ज्यादा दिक्कतें आती हैं, और भूमि के ढलानदार होने से मिट्टी का कटाव अधिक होता है,
0: जी
1: और साथ ही यहाँ सिंचाई की भी कम सुविधाएं हम पहाड़ों में देखते हैं,
0: जी
1: तो इसलिए इन पर्वतीय क्षेत्रों में फसल चक्र और संरक्षित जुताई का और भी महत्व बढ़ जाता है, क्योंकि
0: जी
1: ऐसी पद्धतियां वहां अपनाने से हम मिट्टी के कटाव को रोक पाते हैं, वर्षा जल को भूमि में संरक्षित कर पाते हैं और मिट्टी की नमी को लंबे समय तक बना पाते हैं। तो
0: जी
1: यही प्रयोग अगर हम पर्वतीय क्षेत्रों में अधिक अपनाते हैं तो इससे पर्यावरण अनुकूल हम कृषि कर पाते हैं और किसानों की इससे उत्पादन भी अधिक होगा और इसकी लागत भी कम होगी।
0: जी बिल्कुल, और जैसे कि हम जानते हैं जो हमारा उत्तराखंड राज्य है वह पर्वतीय राज्यों में शामिल है, तो इसमें इन तकनीकों का प्रयोग कहीं ना कहीं खेती को अधिक टिकाऊ, लाभकारी और पर्यावरण के अनुकूल बनाने में यह अधिक भूमिका निभा सकता है। तो हेमेश जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और हम समझ सकते हैं कि जो ये फसल चक्र और संरक्षित जुताई है ये कहीं ना कहीं हमारे किसानों के लिए लाभदायक भी होता है, तो इसमें आप अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहें?
1: यहाँ मैं यही कहना चाहूंगा कि हम लोग और किसान भाई बहन जितने भी हैं, तो
0: जी
1: हम वर्तमान में सिर्फ अधिक से अधिक उत्पादन पर ध्यान फोकस न करते हुए हम भविष्योन्मुख एक रवैया भी अपनाएं, जिससे कि हमारी जो मिट्टी है आसपास की वो लंबे समय तक उपजाऊ बनी रहे, उसकी उर्वरता बनी रहे। इसलिए किसानों को चाहिए कि वे ऐसी तकनीकियों का इस्तेमाल करें कृषि के अंतर्गत, और साथ ही साथ कृषि विज्ञान केंद्रों और विभागों के द्वारा दिए जाने वाले प्रशिक्षणों का लाभ लें
0: जी
1: और भविष्य के लिए एक अच्छे मृदा को हम अपने इनको।
0: जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो हम खेती बाड़ी कर रहे हैं अगर उसमें हम इन उपायों को नहीं अपनाएंगे तो वह कहीं ना कहीं भविष्य के लिए भी नुकसान पहुंचाने वाला हो सकता है, और इसमें जो भविष्य में फसल उत्पादन है उसमें कमी आ सकती है, साथ ही जो जलवायु परिवर्तन है उसके जो नुकसान सामने आ रहे हैं वह भी खेती को बड़ा नुकसान पहुंचा सकता है। हेमेश जी, आपने हमें इस विषय पर बहुत अच्छी जानकारियां दी और अपना समय हमें दिया, और हम यह आशा भी करते हैं कि जो हमारे श्रोता हैं, हमारे जो किसान भाई बहन हैं, वह इनसे जरूर लाभान्वित होंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताहरूले भेटवार्तामा आफ्नो सुन्दर रक्षा खेती बचाउ अभियानक अन्तर्गत टिकाउ कृषि पद्धतियाँ, फसल चक्र और संरक्षित जुताई विषय पर विज्ञान विषयक शोध छात्र हेमेश द्विवेदी दगड़ करी हुई क्षेत्र संकलित भेटवार्ता।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा।
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान, अब आपकी है बारी।
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: श्रोताओं, संदेशक बात कार्यक्रम में अगिल बढ़नु और आप लोगों का सुनो। पहाड़ी महिला कृषकों के लिए पशुपालन संबंधित श्रम साध्य कार्य का कम करने वाली प्रौद्योगिकियां विषय पर डॉक्टर दीप्ति कोठारी दगड़ करी हुई प्रमोद पांडे की भेंटवार्ता।
7: श्रोताओं नमस्कार। श्रोताओं, आज हमारी आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए हुए हैं कृषि विज्ञान केंद्र ग्वालदम चमोली से विषय वस्तु विशेषज्ञ डॉक्टर दीप्ति कोठारी। मैडम से आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे पहाड़ी महिला कृषकों के लिए पशुपालन संबंधी श्रम साध्य कार्य कम करने वाली प्रौद्योगिकी विषय पर। तो मैडम, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में।
8: धन्यवाद
7: मैम। मेरा पहला प्रश्न आपसे यही है कि श्रम साध्य कार्यक्रम करने वाली प्रौद्योगिकियों में आपका क्या तात्पर्य है?
8: ये जो एक बेसिक प्रश्न है, सबसे पहले मैं इसी का उत्तर देना चाहूंगी
7: जी।
8: तो जब हम कहते हैं कि ऐसी प्रौद्योगिकी

0: नीतियां जो कि श्रम साध्य कार्य को कम करती हैं, तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि श्रम साध्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कौन से कार्य हैं। श्रम साध्य कार्य वो हैं जो कि बहुत कठिन थकाऊ होते हैं, जिनमें बहुत दोहराव होता है, जो शारीरिक रूप से बहुत भारी और बहुत नीरस होते हैं करने
1: जी,
0: में
1: जी।
0: तो इसीलिए वो सारी आधुनिक उपकरण, मशीनें और तकनीकें जो कि ऐसे थकाऊ, जटिल और कठिन कामों को बड़े आसान और कम मेहनत में करने वाला बनाते हैं, उन्हें हम कहते हैं श्रम साध्य कार्य कम करने वाली प्रौद्योगिकियां। और सबसे महत्वपूर्ण बात इस संदर्भ में यह समझने की है, खासकर किसान भाई बहनों के लिए यह समझने की जरूरत है कि ये पूरे एक विज्ञान है जिसके आधार पर ये सारी प्रौद्योगिकियां बनाई जाती हैं। और अगर मैं बात करूं तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद दोनों के संस्थाएं मिलकर इन प्रौद्योगिकियों पर काम करती हैं, इनके निर्माण पर काम करती हैं। और यदि सरल भाषा में कहूं तो उन्होंने एक विज्ञान बनाया है जिसे हम कहते हैं कार्य आराम विज्ञान। तो उस विज्ञान के आधार पर ये सारी प्रौद्योगिकियां बनाई जाती हैं, टेस्ट की जाती है और फिर उसके बाद किसानों के लिए रिलीज की जाती है ताकि वो इस्तेमाल कर सके।
1: जी मैम, मैम पशुपालन में श्रम साध्य कार्य कम करने वाली प्रौद्योगिकियों की जरूरत क्यों पड़ी?
0: देखिए, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा इस वक्त, और मुझे ऐसा लगता है कि आज के संदर्भ में जब हम पशुपालन को लेकर, कृषि को लेकर एक आयाम रखते हैं कि हम उससे कुछ प्रॉफिट अर्न करेंगे या हम उसको लाभप्रद बनाएंगे, तो लाभप्रद बनाने का जो बेसिक वो है वो ये है कि हम कोई भी कार्य जब करें तो वो कार्य इस तरीके से करें कि उस कार्य को करते हुए हमें ये जो सारे आयाम हैं, मतलब हमारी कम ऊर्जा लगे, हमारा कम श्रम लगे और कहीं ना कहीं हम अपने स्वास्थ्य की तरफ ज़्यादा ध्यान दें ताकि हम उत्पादकता भी बढ़ाएं, लाभ भी अधिक लें। और अगर पहाड़ी क्षेत्रों की मैं बात करूं तो पहाड़ी क्षेत्र चुनौतियों से भरा हुआ है, और खासकर उत्तराखंड में अगर पशुपालन की बात करूं तो उत्तराखंड में पशुपालन करना कोई आम बात नहीं है। ये हम सभी जानते हैं कि जब असौज लगता है उत्तराखंड में तो महिलाएं ना दिन देखती है ना रात देखती है ना। तो कहीं ना कहीं पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है, पशुपालन एक ऐसी क्रिया है पूरे पहाड़ी परिप्रेक्ष्य में जिसमें कि अगर श्रम साध्य तकनीकी का इस्तेमाल हो तो कहीं ना कहीं हम महिला सशक्तिकरण और महिलाओं को सुदृढ़ करने के लिए कार्य कर सकते हैं। तो ये प्रौद्योगिकियां बहुत अधिक उपयोगी हैं और बहुत अधिक सार्थक भी सिद्ध होंगी इस संदर्भ में।
1: जी मैम, मैम पहाड़ी महिलाओं जो कि पशुपालन आधारित कृषि कार्य करती हैं, उनको इन प्रौद्योगिकियों को अपना कर क्या लाभ होगा?
0: ये मुझे लगता है पहले ही प्रश्न जैसा कुछ है, लेकिन है ये कि जैसे मैंने बताया कि श्रम साध्य कार्य घटाने वाली जो तकनीकियां हैं वो जब बनती हैं, जब उनका निर्माण होता है तो ये ध्यान में रखा जाता है कि वो ऐसे बनाई जाएं कि मानव शरीर की बनावट, उसकी शक्ति, ऊंचाई और क्षमता को ध्यान में रखा जाए। तो जहाँ तक इन प्रौद्योगिकी से होने वाले लाभ की बात है तो इन प्रौद्योगिकियों को अपनाकर महिलाएं शारीरिक थकान को कम कर सकेंगी, उनका स्वास्थ्य बेहतर होगा। जैसे अक्सर क्या होता है कि पशुपालन और खेती से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं वो ना केवल श्रमसाध्य होते हैं बल्कि ऐसी असुविधाजनक मुद्रा को अपनाकर किए जाते हैं कि चोटिल होने का खतरा ज़्यादा होता है, और अगर हम बहुत लंबे समय तक उन कार्यों को करें एक गलत मुद्रा अपनाकर तो कहीं ना कहीं हमारे शरीर में दर्द भी होता है ना, और आगे चलकर वो दर्द बहुत ऐसे उसका विकारों का रूप ले, जटिल विकारों का रूप ले लेता है जो कि हम नहीं समझ पाते हैं उस वक्त। तो इसलिए महिलाओं की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए, उनकी ऊर्जा और समय को बचाने के लिए, और इन सब चीजों से क्योंकि महिलाओं का आत्मविश्वास बढ़ेगा, वो नए अवसरों को तलाश पाएंगी कि किस तरीके से नए आय के अवसर, जो आय सृजन के अवसर है, उन पर काम किया जा सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान में देते हुए महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी होगा।
1: मैम, पहाड़ी महिला पशुपालकों के लिए वर्तमान में कौन सी योजना है?
0: देखिए, ये सबसे सटीक प्रश्न इसलिए है आज के संदर्भ में क्योंकि हम लोग अक्सर तकनीकियों की बात करते हैं, हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि महिलाओं के लिए काम किया जा रहा है, लेकिन एक जो अभाव है वो ये है कि हमें उन तकनीकों के बारे में पता नहीं होता
1: जी।
0: तो अब अगर पशुपालन के संदर्भ में ही मैं श्रम साध्य कार्य कम करने वाली तकनीकों की बात करूं, जिसे अंग्रेजी में हम कहते हैं ड्रजरी रिडक्शन टेक्नोलॉजीज, है ना। तो पशुपालन में ऐसे बहुत सारे कार्य हैं जो कि श्रम साध्य है। मुझे लगता है सारे ही कार्य पशुपालन के, चाहे वो दूध दोहना हो, चाहे चारा घास काटना हो, चाहे हम हरे चारे की बात करें, चाहे असोच के टाइम पे सूखे चारे को इकट्ठा करने की बात करें और पिरूल इकट्ठा करने की बात करें, और जानवरों के जो गोट होते हैं, जानवरों के जो घर होते हैं उनको साफ सफाई करने की बात करें, गोबर उठाने की बात करें, तो सारे ये कार्य श्रम साध्य कार्यों में आते हैं। तो इन कार्यों को जैसे महिलाएं परंपरागत तौर पर काफी सारे ऐसे उपकरणों का इस्तेमाल किया करती थी, तो अब जो तकनीकियां उपलब्ध हैं किसान भाई बहनों के लिए, पहाड़ी महिला कृषकों के लिए, वो इन्हीं तकनीकों को देखकर बनाई गई हैं। यानी कि पूर्व में अगर हम घास काटने के लिए, जैसे हम सभी को पता है क्योंकि हम खेती किसानी काफी लंबे समय से कर रहे हैं कि घास काटने के लिए दराती का इस्तेमाल होता था, लेकिन जब हम उन्नत तकनीकों की बात करें तो इसी दराती को लेकर इसमें देखा गया है कि किस तरीके से इसका एक उन्नत वर्जन लाया जा सकता है। तो जैसे उन्नत दराती आती है वो एक प्रौद्योगिकी हो गई, फिर उसके अलावा हंसिया जो है, हंसिया को भी उन्नत तरीके से डेवलप किया गया है। उसके अलावा जो चारा कटर है वो भी सुरक्षा गार्ड्स के साथ आता है अब, और उस दोनों उसमें आता है, अगर आप हाथ से चलाने वाला लेना चाहें या बिजली से चलने वाला लेना चाहें। उसके अलावा दूध दोहने के लिए नॉर्मली महिलाएं जो होती है, हमारी पहाड़ी महिलाएं, वो क्या करती हैं, उकड़ू मुद्रा का प्रयोग करती हैं। अब उस उकड़ू मुद्रा में एक तो हमारे पहाड़ के जानवरों का जो हाइट है, पहाड़ों के जानवरों की जो ऊंचाई है वो वैसे ही बहुत कम है, और उसमें अगर हम उकड़ू मुद्रा का इस्तेमाल करें तो क्या होता है कि लंबे समय तक हमें स्पॉन्डिलाइटिस की दिक्कत आ सकती है, स्लिप डिस्क की दिक्कत आ सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए रिवॉल्विंग मिल्किंग स्टूल बनाया गया है, जो कि जानवर की हाइट को देखकर बनाया गया है
1: जी।
0: उसके अलावा गोबर उठाने के लिए गोबर की ट्रॉली है, गोबर संग्राहक है, और लंबे हाथ वाला ब्रूम है। उसके अलावा प्रेशर वॉशिंग मशीन है, पशुओं के लिए पशु की चटाई है। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो कि पशुपालकों के लिए उपलब्ध है।
1: मैम, जो ये तकनीकें आपने बताई, इनको कृषक महिलाओं को कहाँ पर और कैसे उपलब्ध हो सकती हैं?
0: सबसे पहले तो मैं श्रोताओं को ये बताना चाहूँगी कि ये जो प्रौद्योगिकियाँ हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जो हैं वो उनके द्वारा विकसित किया जाता है। इसके अलावा जो कृषि विश्वविद्यालय हैं देश भर में 70 से ज़्यादा कृषि विश्वविद्यालय हैं, तो वो भी अपने शोध के माध्यम से नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने में एक पहल लेते हैं। उसके अलावा जो गैर सरकारी संस्थान हैं वो भी वैज्ञानिक मानकों को ध्यान में रखते हुए ये यंत्र बनाते हैं, इसलिए ये पूर्णतया सुरक्षित हैं
1: जी।
0: और इन प्रौद्योगिकियों को, अब बात आई कि इन प्रौद्योगिकियों को महिलाओं तक या फिर जो लाभार्थी हैं उन तक कैसे पहुंचाया जाए, तो इसके लिए भी सरकार ने एक व्यवस्था बनाई हुई है, और वो व्यवस्था ऐसी है कि जो हमारे रेखीय विभाग हैं, जैसे कि कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, इसके द्वारा अलग अलग केंद्र सरकार और राज्य सरकार की संचालित योजनाओं के माध्यम से कभी तो निःशुल्क या फिर बहुत न्यूनतम रियायती दरों पर कृषकों को ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं। और अगर मूल्य की बात करूं मैं, अब सब कुछ ऐसा है कि हम बाज़ार से ही खरीदते हैं, तो जैसे अगर आपकी दराती 100 रुपये की आती है तो न्यूनतम रियायती दरों पर आपको रेखीय विभाग से भी वो इसी के आसपास मिलेगी, क्योंकि उसमें कुछ ना कुछ अंशदान होता है जो कि कृषक को देना होता है, है ना। उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तकनीकें हैं जो कि अगर मैं जिनका मैंने अभी आपको जिक्र किया, वो सारी तकनीकें ऐसी है जो कि 500 मतलब 100 से लेके 500 तक के दरों में आपको उपलब्ध हो जाएंगी।
1: और उसमें सब्सिडी है मैडम अलग से?
0: जी, सब्सिडी उसमें अलग से है
1: जी। तो मैडम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे महिलाओं को दी, अब चलते चलते आप हमारी जो महिला पशुपालक है उनसे क्या कहना चाहेंगी?
0: ये कार्यक्रम को अंत की तरफ ले जाते हुए मैं पहाड़ की महिलाओं को बस यही कहना चाहूंगी कि जैसे आपके इरादे हिमालय की तरह मजबूत और अटल हैं, तो आपके जो इरादे हैं, आपकी जो काम करने की क्षमता है, उसी से हमारे राज्य की पहचान है, हमारे राज्य का प्रमुख चेहरा है, कृषि का प्रमुख चेहरा है आप। तो इसलिए समाज, राज्य और पूरे देश की तरक्की के लिए यह हम बहुत महत्वपूर्ण है कि महिला शारीरिक, मानसिक

0: मानसिक और आर्थिक तौर पर स्वस्थ, समृद्ध और सशक्त हो।
1: बिल्कुल।
0: और ये तभी संभव हो पाएगा जब महिलाएं उनके लिए मौजूद विकल्पों, तकनीकों और अवसरों के बारे में जागरूक होंगी और उनका पूर्ण लाभ उठाएंगी। आज आकाशवाणी के इस मंच के माध्यम से मैं हर सुनने वाली महिला श्रोता को यही कहना चाहूंगी कि विज्ञान और तकनीकी के प्रति वो सकारात्मक रवैया रखें और वैज्ञानिक सोच को, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने का प्रयास करें।
1: जी मैम, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं को दी। आप हमारे आकाशवाणी अल्मोड़ा के स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, भेंटवार्ता में आप लोग सुनने लग रहे हो पहाड़ी महिला कृषकों के लिए जी पशुपालन संबंधित श्रम साध्य कार्य कम करने वाले प्रौद्योगिकियां विषय पर डॉक्टर दीप्ति कोठारी दगड़ प्रमोद पांडे की बातचीत।
3: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

श्रोताओं, प्रहलाद सिंह मेहरा गई कुमाऊनी लोकगीत अग्दगढ़ हमारे आजक किसानवाणी कार्यक्रम संपन्न हो। हमारे कार्यक्रमक प्रायोजक छे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार और प्रस्तुतकर्ता संजय जोशी। आल अपने दगड़ी श्याम भट्ट के कार्यक्रम संपन्न करने की आज्ञा दियो। नमस्कार।

अभी किसान भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम किसान वाणी। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। कुछ ही पलों में कुमाऊनी में उत्तराखंड के प्रादेशिक समाचार हमारे देहरादून केंद्र से रिले होंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: हाली मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशक 9,74,000 लाभार्थियों खातों में 176,59,00,000 रुपए पेंशन डबल हस्तांतरित करी। मुख्य सचिव आनंद बर्दनल बजरंग सेतु और हिलान हिमालयन भोजनालय निरीक्षण करो। हरिद्वार जिले में कांवड़ यात्रा और कुंभ मेल के देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत ललतारो पुल बटी अपर रोड इलाक तक अतिक्रमण हटाए गो और दून अस्पताल में जल्दी अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत है। किफायती दरों पर उन्नत एक्सरे और विशेष जांच सुविधाएं मिले। अब समाचार विस्तारल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामील आज डीबीटी के माध्यम विभिन्न योजनाओं के तहत प्रदेशक 9,74,000 है वे ज्यादा पेंशनों खातों पेंशनक डबल हस्तांतरित करी। देहरादून में आयोजित राज्य स्तरीय सामूहिक जागरूकता अभिमुखीकरण कार्यक्रम लाभार्थियों खाते में 176,59,00,000 रुपए का हस्तांतरण करी गो। यह मौके पर मुख्यमंत्री नस मुक्त अभियान और वरिष्ठ नागरिकों प्रति सम्मान और देखभाल के शपथ ले दिले। उन्होंने कहा कि यह कार्यशाला सामाजिक कल्याण योजनाओं के समाजक अंतिम छोर पर ठड़ मैस तक पुजाणक दिशम महत्वपूर्ण भूमिका निभाल। श्री धामिल कहो कि सरकारक उद्देश्य हर पात्र व्यक्ति के बिना कसल भेदभाव देरी और बाधाक योजनाओं का लाभ देण छु।
1: मुझे पूरा विश्वास है कि इस जागरूकता कार्यशाला में जो विचार विमर्श होगा, आपस में बातचीत होगी, सुझाव मिलेंगे उनसे सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए और बेहतर उनका क्रियान्वयन होने में बहुत सहायक सिद्ध होगा। तो ये नई नई शुरुआत हो रही है, एक नई कार्य संस्कृति राज्य में लाने का प्रयास हो रहा है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी को मिलकर ये सुनिश्चित करना है कि डबल इंजन की सरकार की प्रत्येक जन कल्याणकारी योजनाएं बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी देरी के और बिना किसी बाधा के जो लाभार्थी जो जरूरतमंद है उनको मिले।
0: मुख्य सचिव आनंद बर्दनल आज टिहरी गढ़वाला तपोवन स्थित बजरंग सेतु के स्थलीय निरीक्षण करो। यह एक दौरान उन्होंने सेतु परियोजना प्रगति और सुरक्षा मानकों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश दी। मुख्य सचिव नरेंद्र नगर विकास खंडक प्लाजा स्थित हिलांश हिमालयन भोजनालय लय निरीक्षण करो। भोजनालय संचालक बीना पुंडिरल मुख्य सचिव के हर दिन आणवल ग्राहकों बिक्री और परियोजना वित्तीय सहयोगक जानकारी दी। मुख्य सचिव भोजनालय परिसरक आसपास ज्यादा है भी ज्यादा वृक्षारोपण और मेन्यू के स्पष्ट और सुव्यवस्थित रूप प्रदर्शित करने का निर्देश दी, जल पर्यटकों और आगंतकों के भर सुविधा मिल सको। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर पर्यटन और आजीविका है भी जुड़ी यश प्रयासों के आय ज्यादा सशक्त करी जल जैल क्षेत्रीय विकास के गति मिल सको। कांग्रेसक ठूल नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी कौ की उत्तराखंडक प्राकृतिक संसाधनों भारक मैस इस्तेमाल कर रही और प्रदेश सरकार के रिमोट कंट्रोलक जरिए दिल्ली बट्टी चलाई जा रो। वो आज अलमाड़ा के एक जनसभा के फोनल संबोधित कर रही। कांग्रेस नेताल कौ की आज अलमाड़म जनसभा के कांग्रेस नेताल आज अलमाड़म जनसभा के संबोधित कर रही, लेकिन खराब मौसम कारण पंतनगर बट्टी उन्हर हेलीकॉप्टर न्यूड सक। कांग्रेसक प्रदेश प्रभारी शैलजाल बता कि श्री गांधी अपन संबोधनम देशक आर्थिक स्थिति और पेपर लीकक दगड़ कई अन्य मामलों के जनता के सामने धरो।
2: उन्होंने यहाँ पर अपनी बात रखी और कहा कि जिस प्रकार से सरकार चल रही है और देश पर आर्थिक संकट आया हुआ है और उत्तराखंड के लोगों में जिस तरह से ये सरकार जो यहाँ से नहीं चल रही, मोदी जी के रिमोट कंट्रोल से यहाँ की सरकार चल रही है और यहाँ पे लोगों का अपना कुछ नहीं है, यहाँ के रिसोर्सेज सारे बड़े लोगों के हाथों में दिए जा रहे हैं, ये भाजपा की नीति है।
0: वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्टल दावा करो कि प्रदेशक जनताल कांग्रेसक राजनीति के नकार है और भाजपा विकासक मुद्दों पर लगातार जनताक विश्वास जीत रहे। गढ़वाल मंडलक आयुक्त आनंद स्वरूपल आज जिला चिकित्सालय पौड़ीक औचक निरीक्षण कर बे स्वास्थ्य सेवाओं चिकित्सा सुविधाओं और व्यवस्थाओं का जायजा लो। यह दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों का निरीक्षण कर बे मरीजों के उपलब्ध कराए जा रही सुविधाओं की समीक्षा करी और अस्पताल प्रशासन के व्यवस्थाओं के आयभल बढ़ाने का निर्देश दी। उन्होंने अस्पतालों में उपलब्ध चिकित्सा उपकरणों स्वास्थ्य सेवाओं और मरीजों के दी जा रही सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यक संसाधनों का बेहतर उपयोग पर बल दियो। निरीक्षण के दौरान आयुक्तल अस्पताल में अग्नि सुरक्षा ऑडिट कराए जाने के निर्देश दी। उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों हेतु बातचीत कर बेर व्यवस्थाओं बारे फीडबैक लियो। कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यह बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताज़ा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक।

0: आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर न्यूज समाचार हमार यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशों पर हरिद्वार जिले में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाए जा रहो। यो क्रम में आज नगर मजिस्ट्रेट हरगिरी के नेतृत्व लल तारो पुलबट्टी अपर रोड इलाके में अतिक्रमण हटाएगो। नगर मजिस्ट्रेटल बता कि आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेल के देखते हुए यो अभियान शुरू करी जा रहो, ताकि मेल हबेपली शहर के साफ और सुंदर बनाए जा सको। उन्होंने कहो कि अतिक्रमण खिलाफ यो कार्रवाई अगले लगातार जारी रही।
1: जैसा कि आप सभी को विदित है कि अब हमारी कांवड़ यात्रा शुरू हो जाएगी और निकट भविष्य में भी हमारा शहर में कुंभ है और उसको देखते हुए, क्योंकि ये पवित्र स्थल है और यहाँ पर प्रायः डेली हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं स्नान के लिए, पूरे शहर में बहुत भीड़ रहती है और उनका आवागमन सुव्यवस्थित, तो इससे जरूरी है कि जगह जगह जहाँ भी अतिक्रमण की वजह से लोगों को असुविधा होती है वो अतिक्रमण मुक्त हो। इसी क्रम में जिला प्रशासन ने अभियान जारी रखा है और ये अभियान तब तक रहेगा जब तक अतिक्रमण मुक्त न हो।
0: देहरादून दून अस्पताल में जल्दी अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीन की शुरुआत हो जा रही। यह मरीजों के बहुत तरीके के एक्सरे और विशेष जांच किफायती दरों पर उपलब्ध है सके। दून अस्पताल के प्राचार्य डॉक्टर गीता जनल बता कि अस्पताल में लगातार आधुनिक मशीन स्थापित करी जा रही, जैल प्रदेश भर बटी अणवल मरीजों के बहुत उपचार मिल सको।
2: दून मेडिकल कॉलेज में अभी नई हमारी DDR मशीन आ गई है, डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी कहते हैं इसको, और इसमें जो है आधुनिक टेक्निक का इस्तेमाल करके आप एक्सरेज ले सकते हैं। और जैसे CO में बांझपन की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम लोग ट्यूब का टेस्ट जो होता है HSG वो इसमें करा जा सकता है, या बेरियम मील आंतों की जाँच जो होती है डाई पिला के इंजेक्ट करके जो एक्सरेज लिए जाते हैं आंतों की, तो बेरियम मील या बेरियम फॉलोथ्री वो भी जाँच इसमें करी जा सकती है।
0: उन्होंने कहा कि अस्पताल में जल्दी ERCP सुविधा लय शुरू करी जाए, जय लीवर और पाचन तंत्र हबे जुड़ी गंभीर बीमारियों की जांच और उपचार में मदद मिले।
2: हमारे पास एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड EUS बोलते हैं उसको, वो आ गया है। उससे क्या फायदा होगा कि एंडोस्कोपी भी यूज करेंगे और अल्ट्रासाउंड दोनों के कॉम्बिनेशन से हम जो है मरीज की आंतों में मान लो कोई कैंसर है या ट्यूमर है उसकी हम जांच कर सकते हैं, उससे बायोप्सी भी ले सकते हैं, तो इसको एंडोस्कोपिक अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। तो ये हमारे यहाँ अब इंस्टॉल हो गई है और इसकी हमारे डॉक्टर्स ट्रेनिंग भी करके आ गए हैं, तो हम इसको भी शुरू करने वाले हैं।
0: चार धाम यात्रा के सुरक्षित और सुगम बनाना लीजिए परिवहन विभाग यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था आई सख्त कर है। देहरादून संभागीय परिवहन अधिकारी प्रशासन संदीप सैनिल को की यात्रियों की सुरक्षा के देखते हुए रात 10 बजे बटी रात्री 4 बजे तक कोई ले यात्री वाहनों के पहाड़ी मार्गों पर संचालित नहीं करी जान। उन्होंने बताया कि यात्रा बखत पर भारी और मध्यम मालवाहक वाहनों के संचालन पर ले प्रतिबंध रोल, ताकि यातायात सुचारू बनी रहो और जामक स्थिति ना हो।
3: माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा निर्देश दिए गए हैं कि यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, उसके क्रम में जो हमारे गढ़वाल कमिश्नर महोदय हैं उनके द्वारा निर्देश दिए गए थे और आदेश भी जारी किए गए हैं कि रात को 10 बजे से सुबह 4 बजे तक कोई भी पैसेंजर वाहन पहाड़ी मार्ग पर यात्रा के लिए नहीं भेजा जाएगा। इसके क्रम में सभी जिलाधिकारी महोदय और SSP महोदय को भी पत्राचार कर दिया गया था और हमने अपने ARTOs को भी बोला है पुलिस से समन्वय बनाते हुए कोई भी ऐसी वाहन जो जा रही है उनको ऊपर पहाड़ में ना जाने दिया जाए।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार आए सुनो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेशक 9,74,000 लाभार्थियों खातों में 176,59,00,000 रुपए पेंशनक डबल हस्तांतरित करी। मुख्य सचिव आनंद बर्दनल बजरंग सेतु और हिलांस हिमालयन भोजनालय निरीक्षण करो। हरिद्वार जिले में कांवड़ यात्रा और कुंभ मेल के देखते हुए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत लल तारो पुलबट्टी अपर रोड इलाके तक अतिक्रमण हटाई गो। और दून अस्पताल में जल्दी अत्याधुनिक डायनेमिक डिजिटल रेडियोग्राफी मशीनक शुरुआत हेल, किफायती दरों पर उन्नत एक्सरे और विशेष जांच सुविधाएं मिलल। यह के दगर कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो अंक समाप्त हो। नमस्कार।

आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत। कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं टू स्टेट्स फिल्म से। आवाज़ें हैं अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की। गीत है अमिताभ भट्टाचार्य का और संगीत दिया है शंकर।

आकाशवाणी एट 90 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल पुरानी यादें नया जोश है देश का रेडियो अब भी बॉस है आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।

श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं जावेद अली की आवाज़ में आक्रोश फिल्म से। इरशाद कामिल के लिखे गीत को संगीत दिया है प्रीतम ने।

श्रोताओं, FM 100.8 MHz और प्रसार भारती ऐप न्यूज ऑन AIR पर आकाशवाणी के अल्मोड़ा केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्म संगीत का कार्यक्रम का अगला गीत आइए अब सुनते हैं KK और जयेश गांधी की आवाजों में आहिस्ता आहिस्ता फिल्म से।

आहिस्ता आहिस्ता फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज़ों में भाग मिल्खा भाग फिल्म से ये नगमा। नगमा निगार हैं प्रसून जोशी।

भाग मिल्खा भाग फिल्म के इसी नगमे के साथ फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है कार्यक्रम सबरस। कार्यक्रम की पहली पेशकश अदनान सामी की आवाज़ में।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इकोसिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
1: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: श्रोताओ, सबरस कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं मिताली सिंह की आवाज में नसीम अजमेरी की रचना।

अभिजीत सावंत की आवाज़ में ये गीत अभी आपने सुना। कार्यक्रम की अगली पेशकश चंदनदास की आवाज़ में।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
3: संकल्प बेहतर उत्तराखंड का, कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
4: आइए अब कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं सलीम कौसर की लिखी ये गजल। फनकार हैं गुलाम अली।

गुलाम अली की गाई इसी गज़ल के साथ आज का सबरस कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र मणि राजेश। स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत। हम एक बार फिर मौजूद हैं, नए कलेवर, नए रंग, नए अंदाज, एक नई शुरुआत के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, सब कुछ अधिक विस्तार के साथ। तो शुरू करते हैं स्पोर्ट्स कैन के साथ खेल की हर बात। सबसे पहले मुख्य समाचार। अहमदाबाद में विश्व योगासन चैंपियनशिप का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया वर्चुअल उद्घाटन, कहा योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने शीर्ष स्थान हासिल किया, प्रिया घांगस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप 3 में जगह बनाई। इंडोनेशिया

0: बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन की जोड़ी मेंस डबल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। मेंस सिंगल्स, वीमेन सिंगल्स और मिक्स डबल्स में भारत की चुनौती समाप्त। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में मीरा एंड्रीवा फाइनल में पहुंची। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चुआनिस्का के बीच। जापान में एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में कल भारत की दोनों टीमें उतरेंगी। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस दौरान समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। प्रधानमंत्री ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए एक व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: विश्व योगासन चैंपियनशिप की और विस्तार से जानकारी के साथ अहमदाबाद से हमारी संवाददाता अपर्णा खूंट।
2: The city of Ahmedabad is buzzing with unprecedented energy as it hosts the first ever World Yogasana Championship from today. This is not just a competition, it is a defining moment in the evolution of Yogasana. For centuries, this practice was synonymous with spiritual wellness, but today it is being transformed into a globally competitive sporting discipline with its eyes firmly set on the Olympic moment. With the support of Ministry of Youth and Affairs and Sports, Ministry of Ayush and Sports Authority of India, this championship has brought together a massive international contingent from USA to Ghana, Kenya to Malaysia. Athletes are ready to push their boundaries of human potential. India, as the host nation, is fielding a strong 122 member squad competing across six age categories ranging from sub juniors to senior masters. The technical precision of this event is underscored by the introduction of an electronic scoring system, a first at the global level, ensuring that every posture, balance and flow is judged with absolute transparency. As this grand opening ceremony unfolds, the message is clear: Yogasana is India's greatest contribution to the world of sports. Whether it is individual events, artistic displays or traditional group performances, the world is watching to see how this ancient heritage thrives in the competitive arena.
0: Aur yogasan ke mat ke baad ab chalte hain boxing ke ring ki taraf, jahan vishw boxing ranking mein भारतीय खिलाड़ियों का जबरदस्त दबदबा देखने को मिला है। जैस्मीन लंबोरिया ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान अपने वर्ग में हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांगस और विश्वनाथ सुरेश ने टॉप तीन में जगह बना ली है। सुनते हैं रिपोर्ट।
3: विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में भारतीय मुक्केबाजों का दबदबा कायम है। जैस्मीन लंबोरिया महिलाओं की 57 किलोग्राम कैटेगरी में शीर्ष मुक्केबाज बन गई हैं। 60 किलोग्राम में एशियाई चैंपियन प्रिया घांगस और 50 किलोग्राम में विश्वनाथ सुरेश टॉप तीन में पहुंच गए हैं। महिला वर्ग में मीनाक्षी ने 48 किलोग्राम वर्ग में विश्व नंबर एक के तौर पर अपना दबदबा बनाए रखा है, जबकि प्रीति नंबर तीन पर पहुंच गई हैं। 70 किलोग्राम में अरुंधति चौधरी, 80 किलोग्राम में पूजा रानी और 80 से अधिक किलोग्राम वर्ग में नुपुर विश्व में दूसरे स्थान पर काबिज हैं। 51 किलोग्राम में निखत जरीन और 75 किलोग्राम वर्ग में लवलीना बोरगोहेन ने भी दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में अपनी जगह बनाए रखी है। पुरुषों की टीम में भी ऐसी ही निरंतरता है। सचिन और नरेंद्र लगातार अंतर्राष्ट्रीय सफलता के बाद टॉप पाँच में शामिल हो गए हैं। 70 किलोग्राम वर्ग में हितेश गुलिया छठे और 65 किलोग्राम वर्ग में अविनाश जम्वाल आठवें स्थान पर हैं। 75 किलोग्राम वर्ग में आकाश और 85 किलोग्राम वर्ग में लोकेश भी टॉप 10 में शामिल हैं। पुरुष वर्ग के 80 किलोग्राम वर्ग में अंकुश 11वें और 70 किलोग्राम वर्ग में दीपक 12वें स्थान पर हैं। विश्व रैंकिंग में भारत की ये जबरदस्त बढ़त विश्व बॉक्सिंग कप फाइनल्स और विश्व चैंपियनशिप में बेहतरीन प्रदर्शन के कारण ही संभव हुई है। आनंद पाठक, स्पोर्ट्स कैन।
0: बॉक्सिंग रिंग से अब चलते हैं रैकेट गेम की तरफ। इंडोनेशिया ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट में आज का दिन भारत के लिए थोड़ी सफलता और ज्यादा निराशा वाला रहा। एक तरफ जहां पुरुष डबल्स में भारतीय जोड़ी ने परचम लहराया, वहीं पुरुष सिंगल्स

0: महिला सिंगल्स के साथ साथ मिक्स डबल्स में निराशा हाथ लगी। प्रशांत बताइए, आज भारत के लिए क्या कुछ प्रदर्शन रहा?
1: जकार्ता में रफ्तार और चतुराई के खेल बैडमिंटन में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसा करुणन ने अपने लिए ऐतिहासिक प्रदर्शन किया। इस भारतीय जोड़ी ने मलेशियाई जोड़ी एरन ताई और कैंग खाईजिंग को 3 गेम तक चले कड़े मुकाबले में 16-21, 21-15 और 21-19 से शिकस्त देकर पहली बार किसी 1000 टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में अपना स्थान पक्का किया। पहले गेम में भारतीय जोड़ी कड़ी टक्कर देने के बावजूद पिछड़ गई। हालांकि दूसरे गेम में एक बार लय हासिल करते ही अर्जुन और अमसा करुणन का सफर जीत पर जाकर ही रुका। तीसरा गेम न सिर्फ मैच के लिहाज से बल्कि मानसिक रूप से भी काफी अहम था। एक समय दोनों जोड़ियां लगभग बराबरी की हालत में थी, लेकिन बेहतर नर्व कंट्रोल के चलते आखिरकार बाजी भारतीय जोड़ी ने अपने नाम कर ली। अब कल अर्जुन और अमसा करुणन मलेशिया के गोह जे फेई और नूर इजुजुद्दीन का सामना करेंगे। पुरुष सिंगल्स में आयुष शेट्टी कड़े संघर्ष के बावजूद पराजित हो गए। उन्होंने हांगकांग के ली चियोगी के खिलाफ पहला गेम आसानी से 21-16 से अपने नाम कर लिया, लेकिन आगे इस लय को बरकरार नहीं रख सके। दूसरे गेम में आयुष को आसानी से 13-21 से शिकस्त मिली। इसके बाद उन्होंने जैसे हथियार डाल दिए, क्योंकि तीसरे गेम में भी वे 14-21 से हार बैठे। महिला सिंगल्स में अनुभवी पीवी सिंधु से बेहद उम्मीदें थी, लेकिन दुनिया की नंबर एक खिलाड़ी दक्षिण कोरिया की एन से यंग के खिलाफ एक बार फिर उनकी चुनौती टिक नहीं सकी। सिंधु ने पहले गेम में काफी संघर्ष किया, लेकिन उन्हें तमाम कोशिशों के बाद भी 17-21 से हार का सामना करना पड़ा। दूसरे गेम में भी लगभग यही स्थिति रही। ये गेम सिंधु 15-21 से हारी और इसके साथ ही वे प्री क्वार्टर फाइनल से बाहर हो गई। एन की सिंधु के खिलाफ ये 10वीं जीत है। सिंधु उनके खिलाफ आज तक कोई भी मैच नहीं जीत सकी हैं। शाम ढलते ढलते मिक्स डबल्स में भी निराशाजनक खबर आई, जब रोहन कपूर और ऋत्विका शिवानी गद्दे की जोड़ी 4थी वरीयता प्राप्त फ्रांस के थॉम मार्क गिक्वेल और डेल्फिन आरो डेलरू की चुनौती को पार नहीं कर सकी। भारतीय जोड़ी को आसानी से 21-12, 21-13 से हार झेलनी पड़ी। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: और रैकेट गेम की बात चली है तो टेनिस की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि साल का दूसरा ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट इन दिनों चल रहा है और वहां से ताजा खबर यह है कि महिला सिंगल्स में मीरा एंड्रीवा फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरा सेमीफाइनल डायना श्नाइडर और माजा चोनेलिस्का के बीच खेला जा रहा है, और तो कमाल का प्रदर्शन पुरुष सिंगल्स में देखने को मिला, जहां पर उलटफेर हुआ है और 104वीं रैंकिंग वाले अर्नाल्डी ने अंतिम चार में जगह बना ली है। सुनते हैं ये रिपोर्ट।
2: इटली के मैटेओ अर्नाल्डी पहली बार किसी ग्रैंड स्लैम के सेमीफाइनल में पहुंचे हैं। हिप इंजरी के कारण मैटेओ बेरेटिनी को क्वार्टर फाइनल मुकाबला बीच में ही छोड़ना पड़ा, जिसके चलते अर्नाल्डी को विजेता घोषित किया गया। मैच के समय अर्नाल्डी 7-5, 5-2 से आगे चल रहे थे। दूसरे सेट में बेरेटिनी की चोट गंभीर हो गई और उन्हें मुकाबले से हटना पड़ा। मुकाबले की शुरुआत बेरेटिनी ने शानदार अंदाज में की थी। उन्होंने शुरुआती 3 गेम में 2 बार सर्विस ब्रेक करते हुए 3-0 की बढ़त हासिल कर ली थी। ऐसा लग रहा था कि अनुभवी बेरेटिनी पर पूरी तरह पकड़ बनाए हुए हैं। हालांकि अर्नाल्डी ने धैर्य नहीं खोया और धीरे धीरे मुकाबले में वापसी की। पहले सेट में दोनों खिलाड़ियों के बीच लंबी और कड़ी टक्कर देखने को मिली। 76 मिनट तक चले सेट में कई रोमांचक रैलियां हुई। बेरेटिनी ने एक गेम में 5 ब्रेक पॉइंट बचाए, लेकिन सेट के अंतिम गेम में वो अपनी सर्विस नहीं बचा सके और अर्नाल्डी ने 7-5 से सेट अपने नाम कर लिया। दूसरे सेट में 2-1 से पीछे होने पर बेरेटिनी ने मेडिकल टाइम आउट लिया। कोर्ट पर लौटकर उन्होंने आगे खेलने की कोशिश की, लेकिन दर्द लगातार बढ़ता गया। आखिरकार उन्होंने मुकाबला छोड़ने का फैसला किया। मैच के बाद बेरेटिनी ने बताया कि उन्हें पहले सेट के दौरान ही हिप में परेशानी महसूस होने लगी थी। उन्होंने दर्द को नजरअंदाज कर खेल जारी रखने की कोशिश की, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा और उन्हें ज्यादा सर्विस तथा फोरहैंड शॉट लगाने पड़े, दर्द बढ़ता गया। दूसरी ओर 25 वर्षीय अर्नाल्डी का शानदार सफर टूर्नामेंट में जारी है। विश्व रैंकिंग में 104वें स्थान पर मौजूद अर्नाल्डी इस साल फ्रेंच ओपन के सबसे बड़े सरप्राइज खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। वो 1997 के बाद फ्रेंच ओपन में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले सबसे कम रैंक वाले खिलाड़ियों में शामिल हो गए हैं। इसके अलावा 1990 के बाद अर्नाल्डी सिर्फ तीसरे ऐसे खिलाड़ी हैं जो टॉप 100 रैंकिंग से बाहर रहते हुए भी सेमीफाइनल का टिकट कटाने में कामयाब रहे हैं। अब सेमीफाइनल में अर्नाल्डी का सामना अपने ही देश के खिलाड़ी फ्लेवियो कोपोली से होगा। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
0: टेनिस के कोर्ट से चलते हैं हॉकी के मैदान की तरफ, क्योंकि जापान का काका मेगाहारा कल जूनियर हॉकी में कड़े मुकाबलों का गवाह बनेगा। एशिया अंडर 18 हॉकी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एक तरफ भारतीय टीम चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ 2-2

0: हाथ करेगी तो दूसरी तरफ महिला टीम की टक्कर चीन से होगी। जबरदस्त मुकाबला होगा, कैसे जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
1: टूर्नामेंट में अब तक मिले जुले प्रदर्शन के साथ भारतीय अंडर 18 पुरुष हॉकी टीम पूल ए में 3 जीत और 1 हार के साथ दूसरे स्थान पर रही। टूर्नामेंट के अपने अब तक के अभियान में भारत ने 32 गोल किए जबकि उसके खिलाफ सिर्फ 6 गोल हुए। पुरुष टीम ने अपने अभियान का आगाज कजाकिस्तान के खिलाफ 13-0 की शानदार जीत के साथ किया, लेकिन अगले ही मैच में उसे मेजबान जापान के हाथों 2-4 की पराजय झेलनी पड़ी। इस हार के बाद टीम ने जैसे हौसलों को फिर से समेटा और मजबूत कोरिया पर 4-1 की जीत के साथ जोरदार वापसी की। टीम का चौथा मैच बिल्कुल ही आसान रहा जिसमें उसने चीनी ताइपे को 13-1 से आसानी से पराजित कर अंतिम 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। कप्तान केतन कुशवाहा 7 गोल के साथ भारत के लिए सबसे अधिक गोल करने वाले खिलाड़ी हैं। आशीष टानी पूर्ति ने 6 गोल किए हैं। गाजी खान और शाहरुख अली के नाम 3-3 गोल हैं। उधर पाकिस्तान ने अपने 3 मैच में 2 जीत और 1 हार के साथ पूल बी में शीर्ष स्थान हासिल किया। पाकिस्तान के खिलाफ ये मुकाबला न सिर्फ मनोवैज्ञानिक रूप से काफी कठिन होगा बल्कि भारत के जूनियर खिलाड़ियों को पेनाल्टी कॉर्नर अटैक और डिफेंस में अपनी गलतियों को सुधार कर मुकाबले में उतरना होगा। उधर महिला वर्ग में टीम का प्रदर्शन अब तक जबरदस्त रहा। भारतीय टीम ने पूल ए में अपने 3 मैच जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया। इस सफर में टीम ने गोलों की झड़ी लगा दी। भारत की जांबाज लड़कियों ने जहां विरोधियों पर 30 गोल किए वहीं अपने खिलाफ सिर्फ 2 गोल करने का मौका दिया। भारत ने अपने पहले मैच में मजबूत मलेशिया को 2-1 से पराजित किया, फिर दक्षिण कोरिया पर 3-1 से जीत दर्ज की। इसके बाद उन्होंने अपने अंतिम पूल मैच में शानदार प्रदर्शन करते हुए सिंगापुर को 25-0 से धूल चटाकर अंक तालिका में शीर्ष स्थान पक्का किया। टूर्नामेंट में अब तक 10 गोल के साथ नौशीन नाज भारत की सबसे अधिक गोल करने वाली खिलाड़ी रही हैं। चीन 2 जीत और 1 ड्रॉ के साथ पूल बी में दूसरे स्थान पर रहा। जाहिर है भारत के लिए अब तक का सफर काफी शानदार रहा है, लेकिन असली लड़ाई तो अब शुरू हो रही है जहां जीत का मतलब खिताब के एक कदम और नजदीक पहुंचना होगा। टीम अगर पहले की तरह अपनी लय बनाने में सफल रहती है तो उसे जीतने से रोकना विरोधी के लिए मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी हो सकता है। अतहर सईद, स्पोर्ट्स कैन।
0: और अब कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। भारत की टीम सैफ फुटबॉल महिला चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई है जहां उसका मुकाबला शनिवार को बांग्लादेश से होगा। हिसोर में कल फीफा अंतर्राष्ट्रीय मैत्री मैच में भारत और मेजबान ताजिकिस्तान की टीम आमने सामने होगी। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में एक दिन के विश्राम के बाद 9वें दौर की बाजी आज खेली जाएगी। इस दौर की सबसे खास बात यह है कि पुरुष वर्ग में 2 भारतीय खिलाड़ी आर प्रज्ञानंद और डी गुकेश एक बार फिर आमने सामने होंगे। चीन के अरुडोस में 9 से 12 जुलाई तक होने वाली पहली एशियाई अंडर 23 एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लिए भारत की 54 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी गई है। और अब घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि श्रोताओं, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर होगी मुलाकात खेल के मैदान की हर खबर के साथ। लेकिन आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा इस पर अपनी राय और अपना सुझाव हमें स्पोर्ट्स कैन की ईमेल आईडी sportscan.air@gmail.com पर जरूर भेजिए। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। मानसून ने दी केरल

0: में दस्तक, केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। और भारतीय मुक्केबाज जैस्मिन लेम्बोरिया विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में पहले स्थान पर पहुंची। प्रिया घंघास और विश्वनाथ सुरेश ने शीर्ष 3 में जगह बनाई। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमेरिका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी तथा केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज नई दिल्ली में भारत की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार का लोकार्पण किया। इसका निर्माण मारुति सुजुकी ने किया है। इस अवसर पर श्री पुरी ने कहा कि यात्री वाहनों में फ्लेक्स फ्यूल तकनीक की शुरुआत भारत की ऊर्जा परिवर्तन यात्रा का एक नया अध्याय है। श्री नितिन गडकरी ने कहा कि फ्लेक्स फ्यूल वाहनों से प्रदूषण कम करने, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता घटाने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में मदद मिलेगी।
2: हमारे देश से करीब 22 से 23 लाख करोड़ रुपए हम फॉसिल फ्यूल के इंपोर्ट के लिए खर्चा करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हमको आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अगर आत्मनिर्भर भारत बनाना है तो हमें इंपोर्ट को कम करना पड़ेगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। हमारे देश में अगर ये इंपोर्ट को कम करना है तो हमें अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल पर काफी काम करने की आवश्यकता थी, और इसलिए ये जो इंडस्ट्री है यही हमारे देश के ग्रोथ का ग्रोथ इंजिन है।
0: फ्लेक्स फ्यूल वाहन पेट्रोल और एथेनॉल के विभिन्न मिश्रणों पर चल सकते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
3: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन

0: सभी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों के आधार पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार सरकार के पिछले 12 वर्षों के विभिन्न क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम इस श्रृंखला में बात करेंगे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों के बारे में।
2: केंद्र सरकार ने पिछले 12 वर्षों में व्यापार और उद्योग को बढ़ावा देने के साथ साथ कारोबार को आसान बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए हैं। इन सुधारों से निवेशकों का भरोसा बढ़ा है और भारत दुनिया में प्रतिस्पर्धी व्यापारिक केंद्र के रूप में मजबूत हुआ है। 2016 में शुरू की गई स्टार्टअप इंडिया योजना नवाचार, उद्यमिता और निवेश आधारित विकास को बढ़ावा दे रही है। सरकार के प्रयासों के कारण देश में स्टार्टअप की संख्या 2016 में लगभग 500 से बढ़कर इस साल मार्च तक 2,23,000 से अधिक हो गई है। वहीं जून 2021 में आयकर विभाग ने नया ई फाइलिंग पोर्टल शुरू किया ताकि करदाताओं को अधिक सुविधा और बेहतर ऑनलाइन सेवाएं मिल सकें। महाराष्ट्र के ठाणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट मनोज बासेर ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में किए गए सुधारों से अर्थव्यवस्था को स्थिरता मिली है।
3: केंद्र सरकार के अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष कर के ऊपर किए गए रिफॉर्म्स देश की इकोनॉमी के लिए बहुत बड़ा स्टेप है स्टेबिलिटी के लिए। अप्रत्यक्ष कर के रिफॉर्म से वन नेशन वन टैक्स का एडवांटेज काफ़ी क्लियरिटी देता है कि हमें बिजनेस कैसे करना है। लोगों को टैक्स के बारे में पूरा नॉलेज और क्लियरिटी आती है। इससे एक देश की इमेज भी बहुत अच्छी हुई है और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हुई है।
2: वहीं सरकारी खरीद प्रक्रिया को डिजिटल, सरल और सभी के लिए सुलभ बनाने के लिए 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम की शुरुआत की गई। जेम पर अब तक कुल 18 लाख करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हो चुका है। जेम से जुड़ी एक विक्रेता कामिनी गुप्ता ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि जेम की प्रक्रिया काफी सरल और पारदर्शी है और सरकारी खरीदारों तक पहुँच प्रदान करता है।
4: ये डिजिटल खरीद मंच है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का और इनकी जो टेक्निकल टीम है और जो भी हमारे लोग जुड़े हैं जेम से, ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह काम करते हैं। इनका सहयोग मिलता रहता है। एमएसएमई, स्टार्टअप, महिला उद्यमियों और निर्माताओं को सीधे सरकारी खरीदारों तक पहुंच प्रदान करता है।
2: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम एमएसएमई के पंजीकरण को आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने उद्यम पंजीकरण पोर्टल की शुरुआत की। इस पोर्टल पर पंजीकरण की संख्या अक्टूबर 2020 में 10,000 थी, जो बढ़कर अब 8,31,000 से अधिक हो गई है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
5: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एकजुट करता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
6: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा। चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो, हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
1: हमारी संवाददाता ने बताया कि विश्व योगासन चैंपियनशिप का आयोजन युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय, आयुष मंत्रालय और भारतीय खेल प्राधिकरण के सहयोग से किया गया है।
7: अहमदाबाद का एका एरिना आज से शुरू हुई पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप के साथ ही एक बड़े ऐतिहासिक बदलाव का गवाह बन रहा है। इस वैश्विक प्रतियोगिता में अमेरिका, घाना, केन्या और मलेशिया सहित 60 से अधिक देशों के 400 से अधिक प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। मेजबान

0: भारत ने 6 आयु श्रेणियों में मुकाबले के लिए अपनी 122 सदस्यों की टीम उतारी है। परणा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: जकार्ता में इंडोनेशिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में एमआर अर्जुन और हरिहरन अमसाकुरणन ने क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। पुरुष डबल्स में आज भारतीय जोड़ी ने मलेशिया के एरोन ताई और कैंग खाईजिंग को शिकस्त दी। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मिन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। वहीं प्रिया घांघस 60 किलोग्राम भार वर्ग और विश्वनाथ सुरेश 50 किलोग्राम भार वर्ग में शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल हुए हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए फेस ऑथेंटिकेशन प्रणाली की शुरुआत की है। आयोग ने इस तकनीक का सफल उपयोग हाल ही में आयोजित प्रारंभिक सिविल सेवा परीक्षा और इस वर्ष हुए भारतीय वन सेवा परीक्षा में किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पूनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा ओडिशा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर भी उपचुनाव कराए जाएंगे। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज एक नए डिजिटल पोर्टल की घोषणा की, जिससे अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य भारत के शोध तंत्र को मजबूत करना है। और बात मौसम की, दक्षिण पश्चिम मानसून आज केरलम पहुंच गया। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुदुचेरी और काराईकाल में भी कल तेज बारिश की संभावना है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और उत्तर प्रदेश में 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आज तेज बारिश हुई। लोगों को गर्मी और उमस भरे मौसम से थोड़ी राहत मिली। आज रात भी हल्की वर्षा की संभावना है। महिला और बाल विकास मंत्रालय ने अगस्त सितंबर सत्र के लिए अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में भाग लेने के लिए महिलाओं से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसमें छात्राएं, शोधकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता और शिक्षक शामिल हो सकते हैं जो किसी विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षणिक गैर शैक्षणिक संस्थान से जुड़े हों। आवेदन ऑनलाइन पोर्टल wcd.intern.nic.in के माध्यम से किए जा सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और वेनेजुएला ने द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य सेवा तथा अन्य क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसर तलाशने पर चर्चा की। गृहमंत्री अमित शाह ने पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ब्लॉकचेन के बुनियादी ढांचे पर ध्यान देने को कहा। अहमदाबाद में विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप का शुभारंभ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि इससे योगासन को वैश्विक खेल पहचान मिलेगी। पेट्रोल और एथेनॉल की अलग अलग मात्रा के मिश्रित ईंधन से चलने वाली देश की पहली फ्लेक्स फ्यूल यात्री कार लॉन्च। और मानसून ने दी केरलम में दस्तक। केरलम, कर्नाटक और तमिलनाडु में अगले 7 दिन तक मूसलाधार बारिश का अनुमान। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: Good evening. This is Akashvani and I'm Saira Mujtaba with the news at 9. The headlines. India and Venezuela review full spectrum of bilateral relations and explore new avenues of cooperation in energy, trade and healthcare. Home Minister Amit Shah asked the chief ministers of northeastern states to focus on AI, machine learning and blockchain infrastructure for new generations. World Yogasan Sports Championship begins in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi hopes it will give Yogasan a global sports identity. India launches first flex fuel passenger vehicle operating on a wide range of ethanol petrol blends. Southwest monsoon hits Kerala. IMD forecasts heavy to very heavy rainfall over Kerala, Karnataka and Tamil Nadu during the next 7 days. And in world boxing rankings, India's Jasmine Lamboria climbs to world number one, while Priya Ghangas and Vishwanath

एफएम 100.8 मेगाहर्ट्ज़ और प्रसार भारती ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। लीजिए अब पेश है फिल्म संगीत का कार्यक्रम इंद्रधनुष।

कार्यक्रम का पहला गीत आइए सुनते हैं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में इशारा फिल्म से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी और संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: बादशाह है जब से तुम्हें देखा सनम, दिल बेकरार।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत आइए सुनते हैं मुकेश की आवाज में, लाल बंगला फिल्म से। इंदिवर के लिखे गीत की धुन बनाई है उषा खन्ना ने।

मनमौजी फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। शब्द रचना थी राजेंद्र कृष्ण की और संगीत दिया था मदन मोहन ने। आइए कार्यक्रम के समापन में सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश का गाया गीत फिर कब मिलोगी फिल्म से। गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी।

फिर कब मिलोगी फिल्म के इसी नगमे के साथ आज का इंद्रधनुष कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम धरोहर। श्रोताओं, इस कार्यक्रम में आइए आज सुनते हैं संगीत रूपक जीतू बगडवाल का पहला भाग। आलेख है जीत सिंह नेगी का। प्रस्तुति है कालिका प्रसाद काला की।

इतिहास कल्पना और अलौकिक तत्व का सम्मिश्रण है जीतू बग्द्वाल की लोक गाथा। आज से करीब 400 साल पहले जीतू बग्द्वाल टिहरी गढ़वाल के बगुड़ी गांव का एक छोटा सा सामंत था। वो सुंदर और कला प्रेमी युवक था, पर साथ ही बड़ा जिद्दी और मन चला। गजब की बांसुरी बजाता था वो।

वो भूल गया माँ की हिदायत और खो गया उस रमणीयता में। उसकी नौसरिया मुरली के सुरों से घाटी गूंज उठी, जड़ चेतन भी मुग्ध हो गए उसके संगीत पर। स्वर्ग की अप्सराओं और खेंट की आचरियों के मन भी डोल गए और वे भोर के सूरज जैसे सुंदर उस युवक और उसकी बांसुरी पर मोहित होकर नाचने लगी। वे उसे छोड़ने को तैयार न थी। जीतू उन्हें अपनी यात्रा का उद्देश्य बताता है, तब वे इस शर्त पर जाने देती हैं कि वो छह गते अषाढ़ धान की रोपाई के बाद उनके साथ चलेगा। जीतू सोगनी के ससुराल जाता है और अपनी साली व प्रेयसी भरणा से मिलता है। विदा के समय वो भरणा से कहता है कि सूरज वैसा ही उगता रहेगा, फ्योली और बुरांस वैसे ही फूलते रहेंगे, कप्फू और हिलांस वैसे ही गाते रहेंगे, पर शायद हम न मिल सकेंगे। सोगनी को लेकर वो अपने गांव वापस आ जाता है। छह गते अषाढ़ जब उसके मलारी के खेत में धान की रोपाई हो रही होती है तो कुछ डरावनी धुनियां हवा में तैरने लगती हैं और देखते ही देखते पक्षियों की टोली सी कोई विचित्र चीज जीतू को हर ले जाती है। संगीत नाटिका का आरंभ उस समय की परिस्थिति, जीतू, उसके स्वभाव और उसके परिवार के वर्णन से होता है।

अपनी बहन सोगनी की ननद वरुणा से अवैध प्रेम उसके जीवन का खोटा ग्रह बना। एक बार धान की रुपाई का मुहूर्त उसकी बहन सोगनी की राशि पर जुड़ा तो वो चल पड़ा सोगनी को बुलाने उसकी ससुराल। बहाना बहन को बुलाना, आकांक्षा भरना से मिलना। उसकी माँ उसे सख्त हिदायत देती है कि न तो वो कहीं रास्ते में रुके न बांसुरी साथ ले जाए, पर वो सब अनसुनी कर देता है। एक सुरम्य स्थान पर वो आराम करने लगता है। दोपहर की धूप, सेड़ंगी वृक्ष की घनी छाया, शीतल जलधारा। मन का बावरा था, स्वभाव का रसिया।

अरे भूलीवा दिवई छई कठे तू का गऊ।

बला हाले बला सोबनी को भाई जी तू गीतांग छो ज्ञानी हर ननद भरना छई रूपा की खजानी।

हरे हाले बला हाले बला तैकी बैठे बगडाली माता बोलदा हाछा अरे बगडालो का सत्यों का फेरा भरिया रहना छाया।

संगीत रूपक जीतू बगडवाल का पहला भाग अभी आप सुन रहे थे। आलेख था जीत सिंह नेगी का और प्रस्तुति थी कालिका प्रसाद काला की। इसी के साथ आज का धरोहर कार्यक्रम अब यहीं पर संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये अल्मोड़ा केंद्र है, कृपया हमारे अगले प्रसारण की प्रतीक्षा करें।

0: मैथिली लोक एवं सुगम संगीत के कार्यक्रम में हम सुनवा रहे हैं मैथिली लोक संगीत, जिसे प्रस्तुत कर रही हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा। सौम्या मिश्रा बिहार के मधुबनी जिले की निवासी हैं। वे एक प्रतिभाशाली लोक गायिका हैं, जिन्हें मैथिली, हिंदी और भोजपुरी में अपनी भावपूर्ण प्रस्तुतियों के लिए विशेष पहचान प्राप्त है। आपके संगीत में मिथिला की समृद्ध सांस्कृतिक परंपराओं की गहरी छाप दिखाई देती है, साथ ही उसमें आधुनिक श्रोताओं को आकर्षित करने वाली नवीनता भी विद्यमान है। सौम्या मिश्रा देश भर के अनेक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक समारोहों और मंचीय कार्यक्रमों में अपनी मधुर एवं भावपूर्ण गायकी से श्रोताओं का मन मोहती रहती हैं। आइए सुनते हैं आकाशवाणी की ए श्रेणी की कलाकार सौम्या मिश्रा की स्वरबद्ध प्रस्तुति में मनमोहक मैथिली लोकगीत। आज के कार्यक्रम में संगत करता है तबले पर हरिभूषण झा, ऑक्टोपैड पर ललित, ढोलक पर अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर शशिभूषण झा। सौम्या मिश्रा अपने कार्यक्रम का आरंभ कर रही हैं महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर्रे से।
1: दिस इज आकाशवाणी इन टुनाइट्स नेशनल प्रोग्राम ऑफ रीजनल फोक एंड लाइट म्यूजिक

0: अभी आप सुन रहे थे सौम्या मिश्रा से महाकवि विद्यापति की एक रचना चानन भेल विषम सर रे। आइए अब सुनते हैं एक लगनी गीत जिसके बोल हैं एकता हम बारी कुमारी।
1: We just heard a composition titled Chanan Bhel. Continuing this program, she now presents a composition titled Ekta Hum Bari Kumari.

0: आप सुन रहे हैं सौम्या मिश्रा द्वारा प्रस्तुत मैथिली लोकगीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक चैती जिसके बोल है कोहके बारी कोयलिया हो रामा।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. We will now listen a composition titled Kuhke Bari Koyaliya Ho Rama.

0: अभी आप सुन रहे थे चैती गीत। कार्यक्रम में अगली प्रस्तुति है एक पूर्वी, जिसके बोल हैं, बाट हेरी दिन काटी नोर बहैया।
1: That was a Maithili composition performed by Soumya Mishra. She concludes her rendition with a composition titled Baate Heri Din Kaati Nor Bahiye.

0: इसी के साथ आज के कार्यक्रम में मैथिली लोकगीत की ये प्रस्तुति अब यहीं संपन्न होती है। इस कार्यक्रम में तबले पर संगत की हरिभूषण झा ने, ऑक्टोपैड पर थे ललित कुमार, ढोलक पर थे अमन कृष्ण और सिंथेसाइजर पर साथ दिया था शशि भूषण झा ने। ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम को जारी रखते हुए अब आप सुनेंगे आकाशवाणी जयपुर ओडिशा की प्रस्तुति।
1: With that, she concludes her rendition of Maithili folk compositions. This part of the program was recorded in the studio of Akashwani Delhi. Continuing the broadcast from Akashwani Delhi, now we will listen to the presentation of Akashwani Jaipur, Odisha.

क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आपका स्वागत करती हूं। मैं अमीना हुसैन, नमस्कार। आज हम आपको सुनवा रहे हैं ओडिशा प्रदेश के कुछ मधुर और मन मोह लेने वाले आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा। इन गानों को सुरों में सजाकर आप तक पहुंचाया है आकाशवाणी जयपुर केंद्र ओडिशा के सुप्रसिद्ध टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर श्री विजय कुमार सामंतराय। श्री विजय कुमार सामंतराय माता श्रीमती स्नेहलता सामंतराय और पिता श्री चंद्रशेखर सामंतराय के सुपुत्र हैं। आपने गुरु श्री हेमंत कुमार त्रिपाठी के तत्वावधान में बचपन से ही बैला यानी कि वायोलिन की शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर दिया था। सन 1994 में आपने आकाशवाणी जयपुर केंद्र में स्टाफ आर्टिस्ट के तौर पर योगदान दिया। उसके बाद से आपने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। एक के बाद एक सीढ़ियों को पार करते हुए सन 2023 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय, आकाशवाणी और दूरदर्शन की तरफ से टॉप ग्रेड म्यूजिक कंपोजर का मान्यता हासिल किया। आपने सन 2015 में आकाशवाणी संगीत सम्मेलन के अखिल भारतीय संगीत कार्यक्रम में बेला वादक के तौर पर संगत भी किया है। आपने आकाशवाणी के विभिन्न कार्यक्रम में संगीत देकर 20 से भी अधिक नेशनल और इंटरनेशनल एनुअल अवार्ड भी प्राप्त किया है। तो लीजिए, आज हम आपको सुनवा रहे हैं विजय कुमार सामंतराय के बनाए हुए सुरों से सजे कुछ आधुनिक ओडिया गीत। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे हैं तबला पर सुशांत कुमार

कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर हैं राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपैड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर हैं उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय। स्पेशियल इफेक्ट दिया है गुप्तेश्वर पाणिग्राही। तो प्रस्तुत है पहला गाना जिसका बोल है, मन हृदय जेते सबू कथा तम आगे प्रिय कही दिली। मतलब है, अपने दिल की हर बात लो आज कह दिया हमने आपके सामने। ये बोल लिखा है गीतकार रंजन कुमार बेहरा और मधुर आवाज है प्रीति पंडा की।

अभी सुनते हैं जिंदगी की कुछ भूल भुलैया अनजान राहों की बात। ये बोल लिखा है गीतकार बसंत कुमार दास, आवाज है सनातन पुरोहित दास की। पांथ शाड़ार रातिटीए पाई घड़ीए पड़ुछी उणा, हेले मधुशाला अजणा कोणरे सरुनाही बिका किणा। जीवन हेउ केते बाट बणा, हेउ केते बाट बणा।

अभी सुनते हैं गीतकार किशोर चंद्र नंद के लिखे हुए गीत आवेगरे के ही कही थी बा कथा मनो तुली ने किया अंके। इस गाने को आवाज दिया है प्रीति पंडा। किसी ने जो दिल से कह दिया कुछ बातें, आज ये मन उन्हें ही क्यों ढूंढे।

कार्यक्रम के अगले गाने को अपने मन मोह लेने वाले आवाज से प्रस्तुत कर रहे हैं सनातन पुरोहित दास। गीतकार हैं गौर पटनायक। बोल है नाटकर मिछ अभिनय छड़ा आऊ किछि जाने नाही, मतलब है जीवन के रंगमंच में मैं हूँ एक अभिनेता, झूठा अभिनय के सिवाय और कुछ भी तो नहीं आता।

में प्रस्तुत है एक युगल गीत, गीतकार रंजन कुमार बेहरा, आवाज है सनातन पुरोहित दास और प्रीति पंडा की। बोल है, प्रथम देखारे तुम्हें मनकल चोरी, अल्प कथारे आहा लागिगला टोरी, पहले ही मुलाकात में मन चुरा लिया, थोड़े ही बातों में हाय दिल लगा लिया।

अभी आप सुन रहे थे क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ ओडिया आधुनिक गीत, जिनको प्रस्तुत किया था आकाशवाणी जयपुर केंद्र उड़ीसा में और प्रसारण किया गया आकाशवाणी दिल्ली से। विभिन्न वाद्य यंत्र पर संगत कर रहे थे तबला पर सुशांत कुमार अधिकारी, बांसुरी पर वी कुर्मनाधन, वायोलिन पर हिमांशु भूषण शतपथी, मैंडोलिन पर के ईश्वर सराफ, गिटार पर इंदर सिंह, ऑर्गन पर के संतोष कुमार राव, सैक्सोफोन पर थे राहुल देव सामंतराय, ऑक्टोपेड पर बी जगदीश कुमार, ढोलक पर उमेश कुमार पाणिग्राही और आकाश कुमार सामंतराय, स्पेशियल इफेक्ट दिया था गुप्तेश्वर पाणिग्राही। इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग में सहायता किया था रंजन कुमार बेहरा, यांत्रिक सहायता किए थे शरद कुमार पाढ़ी और एन योगेंद्र। इसी के साथ क्षेत्रीय लोक और सुगम संगीत के अखिल भारतीय कार्यक्रम अब समाप्त होता है। विदा चाहती हूँ मैं अमीना हुसैन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज से बातचीत की। दोनों नेताओं ने भारत और वेनेजुएला के बीच संबंधों पर चर्चा की तथा ऊर्जा, व्यापार, निवेश, स्वास्थ्य सेवा और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के नए अवसरों पर विचार किया। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पर बताया कि दोनों देशों के बीच ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने कहा कि लैटिन अमरीका में एक महत्वपूर्ण साझेदार के रूप में वेनेजुएला के साथ भारत का घनिष्ठ सहयोग विकासशील देशों के उत्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। बैठक के बाद विदेश मंत्रालय में पूर्वी क्षेत्र के सचिव रुद्रेंद्र टंडन ने मीडिया को बताया कि आज की बातचीत का मुख्य विषय ऊर्जा क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करना था।
1: आर्थिक सहयोग को सिर्फ ऊर्जा क्षेत्र तक सीमित न रखकर खनन, पशुपालन, परिवहन, कृषि उपकरण, ऑटोमोबाइल और दवा उद्योग जैसे क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर चर्चा हुई। चर्चा का उद्देश्य ऐसे अवसर और तरीके तलाशना है जिनसे भारतीय कंपनियां वेनेजुएला के बाजार में सफलतापूर्वक अपना कारोबार बढ़ा सकें।
0: गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने पूर्वोत्तर में हिंसा के युग का अंत करके इस क्षेत्र को विवादों के केंद्र से अवसरों के केंद्र में बदल दिया है। पूर्वोत्तर परिषद के 73वें पूर्ण सत्र में भाग लेने के बाद सोशल मीडिया पोस्ट में गृह मंत्री ने कहा कि पूर्वोत्तर परिषद इस क्षेत्र के विकास के लिए रणनीतिक योजना बनाने का कार्य कर रही है। बैठक में गृह मंत्री ने मुख्यमंत्रियों से कहा

0: कहा कि वे कानून व्यवस्था पर ध्यान देने के बजाय नागरिकों के अधिकारों की रक्षा पर ध्यान केंद्रित करें, क्योंकि उग्रवाद अब कोई मुद्दा नहीं रह गया है। उन्होंने राज्यों को नई पीढ़ी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का बुनियादी ढांचा तैयार करने को भी कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि योग मानवता को भारत का एक अनमोल उपहार है। अहमदाबाद में आयोजित विश्व योगासन खेल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि योग मन, शरीर और आत्मा को एक दूसरे से जोड़ता है। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि प्रथम विश्व योग चैंपियनशिप योगासन को वैश्विक खेल की पहचान दिलाएगी और युवाओं के लिए व्यापक अवसर उपलब्ध कराएगी।
1: इस चैंपियनशिप के माध्यम से योगासन को एक कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स के रूप में नई पहचान मिलेगी। मुझे विश्वास है कि भविष्य में योगासन भी अंतर्राष्ट्रीय खेलकूद में अपनी जगह बनाएगा, चाहे ओलंपिक्स हो या मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट्स हो। हम जितनी मेहनत करेंगे सुखद परिणाम आ भी सकता है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आज राज्यसभा चुनाव और उपचुनाव के लिए अपने 11 उम्मीदवारों की सूची जारी की है। पार्टी ने मध्य प्रदेश से राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल को उम्मीदवार बनाया है। राजस्थान से डॉक्टर अलका गुर्जर और डॉक्टर सतीश पुनिया को मैदान में उतारा गया है। राज्यसभा की 24 सीटों के लिए चुनाव 18 जून को होने हैं। इसके अलावा उड़ीसा, महाराष्ट्र और तमिलनाडु की एक एक सीट पर उपचुनाव भी कराए जाएंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने आज मिजोरम के चम्फाई जिले में 9 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्रवाई म्यांमा से अवैध रूप से लाई जा रही सुपारी की तस्करी और 970 करोड़ रुपए से अधिक की आपराधिक आय से जुड़े धन शोधन के मामले में की गई। दक्षिण पश्चिम मॉनसून आज केरलम पहुंच गया है। मौसम विभाग ने केरलम और कर्नाटक में अगले 7 दिनों तक मूसलाधार वर्षा की संभावना व्यक्त की है। तमिलनाडु में भी तेज बारिश हो सकती है। माहे, पुद्दुचेरी और कराईकल में भी कल तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड और पश्चिम राजस्थान में भी कल गरज के साथ बिजली चमकने की संभावना है। विश्व बॉक्सिंग रैंकिंग में जैस्मीन लंबोरिया ने महिलाओं की 57 किलोग्राम भार वर्ग में नंबर एक स्थान हासिल कर लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। Prime Minister Narendra Modi today held talks with acting President of Venezuela, Delcy Rodriguez, in New Delhi. The two leaders reviewed the full spectrum of bilateral relations and explored new avenues of cooperation in energy, trade, investment, healthcare and automobiles, among others. In a social media post, Mr. Modi said they had extensive discussions on expanding cooperation in energy, critical minerals, technology, agriculture, health and people-to-people ties. He said that as a valued partner in Latin America, India's close cooperation with Venezuela holds immense importance for the Global South. He said both nations will continue to work together for the mutual benefit of the people of the two countries. Addressing media after the talks, Secretary East Rudrinder Tandon said Venezuela possesses one of the largest oil reserves in the world. He said today's discussions between the two sides focused on forging an energy partnership between the two countries, as Venezuelan energy sector is undergoing a fundamental transformation. Union Home Minister Amit Shah today said that Narendra Modi government ended the era of violence in the northeast and transformed the region from the hotspot of disputes to that of opportunities. After attending the 73rd plenary session of the Northeastern Council, NEC, Mr. Shah, in a social media post, said, "Today, NEC is serving as an institution for strategic planning for the development of region while fulfilling people's aspirations and promoting culture." In the NEC meeting, the Home Minister instructed CMs to shift the focus from law and order to shielding the rights of citizens as insurgency is no longer an issue.